को आखे अपना जिसना ही सो चुन कड़िये कीता आपो अपना पही देखा संडिये जा रहना नहीं ऐत जगता कायत गार्ब हंडिये मंदा किसे ना खिये।

Thank you.

ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए 9870 किलोहर्ट से तैखा सवाए तो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डी फ्रेडिश ते बुधी सकंदा आयो असमे प्रोग्राम जो आगाज थी चुको है विचूड़ कुछ नत रहे थोड़ी देर में अवाम भगत कवराम जन जो मिठड़ो आवाज सुनना तैखा

भगत कवराम जंजो मिठड़ो आवाज सुधरी रहा हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हे चो त दादा हुंदराज दुखायल खां तकरीर बुधूं उनवान है मुंजो पार वसे थो नेहर।

हाल था कन तसणी हाकारे कुंभर तुला जी लाडुली धी हुई जैंजी शादी सामेटे दम सा थी हुई पर संदस नीह जो नातो बिहार सा हो जेको संदस पेकियों में हूं चारींदो हो ही मेहार असुल बुखारे जे एक शाहूकार सौदागर जो पुत्र हो जो हिक लंगा अची तुले कुंभार जे गोठ पहुतो कुंभर जे जोड़ियल थामन जी साख बुधी संदस घर लंघे वियो घर लंघे वियो उते सुणी ते नजर पियस त मथे अकन छकन थी पियो पोत थावन गिनण जे बहाने हर रोज पियो वटिन ईंदो वेंदो हो महांगा वठी सस्ता करे विकणंदो हो नाणो खलास कयाई त तुले कुंभार वट नौकर बणियो नीह जी नावक हिक तरफी कान हुई सुहिणी सावरे वेही पर पेके नौकर मेहार खे विसारे न सघी उन्हीं पंहिंजे साहड़ जी सिक खेस सुमण की न ॾींदी हुई भला

जे सुहिणी रोज रात जो पंहिंजे मेहर सां मिलण लाइ दरियाह तरी पार वेंदी हुई। तरण लाइ हिकु दिलो किनारे जे बूणनि में लिकाए रखियो हुई। सुहिणीअ जी मेहर सां थींदड़ हिन लिक चोरीअ वारी मुलाकात जी सुणस नेठि वञी संदसि सस जे कने पई। हुन चङी हा होय घोड़ा कई। सुहिणीअ जी माउ पंहिंजे धीउ खे समझायो त बेली पेकनि जी पत रख त सुहिणी थी माउ खे चवे, ओ माउ मां मेहर बिना

आई चितु चौराए चरियो करे वियो कांधु करे चतुराई। तॾहिं थी माणस चवे को सुहिणी प्रीत जी रीत निभाइणु

जॾहिं दम वारनि ॾिठो त सुहिणी ईअं मुड़ंदी कान, तॾहिं सुहिणीअ जी निणान वज वठी दरिया जे किनारे ॿूड़नि में सुहिणीअ वारो लिकाए रखियल पको दिलो खणी हुते हिकु कचो दिलो रखी आई। अध राति जो सुहिणी जीअं दिलो खणी दरिया में घिरी, तीअं अॻिते हली कचो दिलो गरंदो गरंदो वियो संदसि हथनि मां खिसकंदो। हाणे त सुहिणी

उन्हीं जो पुकारूं ऐं सद अधरात जे सांत खे चीरींदा बिहार जे कन पिया हू समझी वियो त जो खैर कोन्हे दाह करे चयाईं।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि कुझु देशभक्ति गीत।

प्रोग्राम जे आखिर में वहां हबोवतनी गीत बुद्ध रहा ही आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है ये असन जे प्रोग्राम जो वक्त पूरा सिर वे वरी वहां सा मुलाकात थेंगी सुबह ने सुबह जो भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसे तक नींदा इजाजत सदाई कर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, सुबह के सात बजकर दस मिनट और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड। समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे राजेंद्र कचरू के गाए भजन।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने राजेंद्र कचरू के गाए भजन। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब श्रोता, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस मनपसंद कार्यक्रम, जी हाँ आपका अपना कार्यक्रम की तो भाई गुड मॉर्निंग, और आ चुकी है आपकी दोस्त सुषमा लेकर बहुत ही प्यारे प्यारे गीत और ढेर सारी बातें। तो भी सुबह सुबह की बात है, अगर गर्मियों में कहें तो इस वक्त अधिकतर हमारे साथी उठ चुके होंगे, क्योंकि अब तो लगता है कि सुबह जल्दी उठ के ही सारे काम निपटा लिए जाए, क्योंकि आज वैसे संडे है तो हो सकता है कि बहुत सारे साथी थोड़ा आलस में होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि चलो कोई नहीं आज तो दिन मिल रहा है, एक आराम से उठते हैं, अलसा रहे होंगे, सुस्ता रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि भाई समय से उठ जाएंगे तो गर्मी से होने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, चाहे घर के ही काम करने हो तो भी अगर समय से उठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और

जैसा आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे अगर आप सुबह उठ जाएंगे। तो एनर्जेटिक मीन्स कैसे भी ऊर्जावान दिखना और बनना दोनों है। बहुत सारे काम है, रविवार है, घर की सफाई से लेकर मेहमान नवाजी सब कुछ करना है। तो आलस को बाय बाय कहने और दिन को सुपर हिट बनाने के लिए आप रेडी हो जाएं और शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो कि है लीजिए आप सबके लिए हमारी तरफ से पेश। और ये भी हम कहेंगे कि आप जब सुबह सुबह आपकी सुबह होती है तो सबसे पहले आप घर में किसे देखना पसंद करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को या सबसे पहले आप भगवान को देखना पसंद करते हैं? वैसे कहा जाता है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी भगवान का, कहा क्या, हम उन्हें दर्जा देते हैं भगवान के समान का ही। तो अपने सुबह की शुरुआत बड़ों के चरण स्पर्श कर उन्हें नमन करके की जाए तो वही सारी जिंदगी सुधर जाती है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा मेल आईडी है ipradiodaily@gmail.com। तो आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत सुस्वागत, नमस्कार एक बार फिर से। और जो साथी नए जुड़े हैं उनका भी एक बार फिर

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में। और घर एक मंदिर, तो भी हर घर एक मंदिर ही होता है, क्योंकि देखिए हम वहां पर रहते हैं, जाते हैं, वो ये ऐसा घर जिसमें हम बहुत सारे सपने देखते हैं और उस घर को हम मंदिर बनाने के लिए पूरा योगदान देते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे हम सुबह प्रणाम करते हैं, लेकिन घर को मंदिर बनाने के लिए हमें अपना कर्म करना बहुत जरूरी है। हमारा काम हमारी प्रार्थना होती है और हर सुबह हम इस मंदिर को सजाने और संवारने के लिए दिन भर जुट जाते हैं मेहनत करने में। तो कर्म करने से पीछे न हटे और इस घर को खूबसूरत बनाने में कोई कमी न छूटे। जब भी आप अपने घर कर्म पथ पर चलें, इस घर को मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ें, तो जरूर ये ध्यान रखें कि घर का एक कतरा कतरा आपने कितनी मेहनत से बनाया है। और वैसे आलस भरी सुबह को अगर आप छोड़ देंगे तो और सोने पे सुहाना हो जाए, सुहागा हो जाएगा, क्योंकि देखिए आजकल ऐसे भी गर्मी है और इस अपने प्यारे से मंदिर रूपा घर को सजाने संवारने के लिए सिर्फ एक ही दिन तो बचता है, जो खास तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, इतना उनका पैक्ड शेड्यूल होता है, सुबह निकले एक एक मिनट एक एक सेकेंड पूरा कैलकुलेटेड होकर वो काम करते हैं। तो उनके लिए तो भाई आज का ही दिन है जो सुकून भरे पल वो अपने घर में इस मंदिर में ले सके और इसे सजाने संवारने में भी आज जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर सके। तो अपने काम को बहुत ही खूबसूरती के साथ करें, इस खूबसूरत सुबह को और ही अच्छे से बनाएं। और अगर आप घर को ईमानदारी से चलाने की कोशिश करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे, तो कहते ना कि हर घर एक मंदिर बनता है और हर सुबह एक उत्सव होती है। और अगला जो बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, ये भी आप सबके लिए मेरी तरफ से डेडिकेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आज सुबह के गीत आपको जरूर पसंद आएंगे। येशुदास जो है, येशुदास जी की आवाज में ये अगला बहुत ही खूबसूरत गीत है, हकीकत फिल्म से। और उम्मीद करती हूँ, माफ करिए, हैसियत फिल्म से गीत आप सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। सुबह सुबह घर एक मंदिर की बात चली है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा, आप कल्पना करिए, चिड़ियों की चहकती आवाज, ठंडी हवा की ताजगी सी आवाज, इतना अच्छा म्यूजिक सुबह सुबह अगर ऐसा सुनने को मिले, चाय की चुस्कियों के साथ, या फिर आप जो भी योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये गीत बहुत ही खूबसूरत है। और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

बहुत ही खूबसूरत गीत। और ये बिल्कुल सही है कि जब हम सुबह सुबह इस तरह से देखते हैं पंछी अपने बस कर्म में लग जाते हैं, चल पड़ते हैं अपनी दिनचर्या को निभाने के लिए, अपनी अपने लिए दाना चुगने के लिए, अपने बच्चों के लिए दाना अरेंज करने के लिए, और आसपास भी देखते हैं कि हर कोई अपने अपने काम में जुट जाता है। और वही मौसम की बात करें तो मौसम भी अपनी तरफ से ही जैसे जैसे खिलवाड़ हमारे साथ कर रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा कभी नरम तो कभी खुश कभी फुहार कभी, बस दिल्ली में तो ऐसा ही मौसम है। आप बताएं आपके यहाँ पे किस तरह का मौसम है। फिलहाल आज दिल्ली में थोड़ी सी हवाओं में ठंडक है, सुबह का मौसम तो ऐसा है ही, कल भी थोड़ी आंधी आई, हल्की सी बौछार हुई तो मौसम में थोड़ा सा फर्क हुआ, जो झुलझुलाती हुई गर्मी थी, लेकिन हाँ गर्मी अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर सुबह सुबह कहते ना इस खूबसूरत मौसम में दोस्तों का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। दिल्ली जैसे शहरों में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे निकल जाएं, बाइकिंग के लिए निकल जाएं, या फिर सुबह सुबह किसी पार्क में जाके जिमिंग कर लें, योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, दौड़ लगा लें या कुछ और गेम खेल लें। और हाँ, हम अपने आसपास जो देखते हैं तो भाई सुबह सुबह 5 बजे से ही मैं देखती हूँ कि जब मैं स्टूडियो की तरफ निकल रही होती हूँ सुबह 4:30-4 बजे, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे, यंग युवा, काफी सारे लोग क्रिकेट के जो शौकीन है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दूसरी गेम्स भी जाकर खेल रहे होते हैं। तो सभी कोशिश करते हैं कि धूप निकलने से पहले ही सुबह सुबह जल्दी जल्दी से अपनी प्रैक्टिस कर ली जाए और इससे सुबह सुबह के मौसम का मजा लिया जाए। और दोस्त साथ में हो तो भी दिन तो सुहाना बन ही जाता है, और खूबसूरत मौसम में साथ अगर दोस्त हो तो खाने पीने का भी बहुत मजा आता है। और उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि घड़ी जो है वो इशारा करे कि भाई 8 बजने वाले हैं, तो अब घर में आपके भी गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ न कुछ बन चुका होगा टेस्टी सा, हमें भी याद करते हुए आप कुछ खाइएगा या हमें भी भेज दीजिएगा संदेशों के जरिए। तो दोस्तों एक और अगला बहुत ही खूबसूरत गीत है आप सबके लिए मैंने प्यार किया फिल्म से, और उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्ती की बात हो रही है तो इतनी बात जरूर कहूंगी, दोस्त ही है जो हर हालात में हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। वो दोस्त ही क्या जो चेहरे पर अपने दोस्त के मुस्कान न ला पाए। तो दोस्ती का जो रिश्ता है वो सबसे बढ़कर और सबसे अच्छा, सबसे हसीन, सबसे खुशनुमा है, तो इस रिश्ते को हमेशा बनाकर रखें।

दोस्तों हम बात कर रहे थे कि दोस्ती का जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और देखिए मेरे साथ अब स्टूडियो में आ भी चुके हैं मेरे दोस्त, जो कि अगले कुछ घंटे तक आपके साथ रहेंगे। फिलहाल मैं यही कहूंगी कि समय तो कम है और आज है रविवार, तो जब भी आपको मौका मिले अपने दोस्तों के लिए कुछ समय जरूर निकालें और अपनी जिंदगी में कुछ हसीन पल जरूर शामिल करें, क्योंकि बस कुछ यादें ही होती हैं, कुछ ऐसे पल जिन्हें हम ताउम्र याद रखते हैं। बाकी चीजें, भाग दौड़, सब चीजें समय समय पर धुंधली पड़ जाती आती है, काम तो आती है, लेकिन हाँ दोस्ती का जो रिश्ता है उसके साथ जो एक एक पल हमने बिताया होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और फुर्सत के पलों में वो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर ले आता है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर वक्त बिताएं और खुश रहें, मस्त रहें, सुनते रहें हमारा ये प्यारा सा स्टेशन, जो कि 24 घंटे 7 दिन आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और छोड़े जा रही हूं आपको इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ सुरेश वाड़ेकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम, और अब सुनेंगे आप समाचार।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका कोने में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार

0: बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान के आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई है, जो इन्होंने शेयर की है ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेज, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवली।
3: बीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं।

0: दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट का ये कहना कि भारत शक्तिशाली अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नावलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार पत्र का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor.

0: Men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian in the final of the Singapore Open. Today, the Indian pair is yet to win the title since clinching the Thailand Open in May 2024. Earlier, Satwik Sairaj and Chirag defeated the world number one South Korean pair of Seo Jeong Jae and Kim Won Ho 21-19, 21-18 in the semi-finals yesterday. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. Political developments in Karnataka. CUET retest and TMC leader Abhishek Banerjee mobbed during visit to South. 24 Parganas are the front page stories in most dailies. The Statesman informs Amit Shah on a visit to West Bengal seeks close watch on radicalization centers on border. Newspapers report U.S. Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a critical anchor in Indo-Pacific region. Financial Express headlines, India helps maintain balance of power, while the Sunday Express says, no China hegemony. Hegseth flags co-production of Javelin anti-tank missile with India. The Tribune informs, Vinesh fails to make Asian Games cut, promises to return to the mat. Economic Times says, EV sales in fast lane, but Motor Town treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, draw titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ब्रिगेड फरहान नासिम ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनके बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ल्हांग अपने पांच रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला डिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला-ओ नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मुकामी जबानों में नशर करेगा।
2: वहीं रविवार राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में

0: था किसान और मध्यवर्गीय कुंठाओं से जूझता एक आम इंसान। लेकिन श्रोताओं, आज जब हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं तो बात केवल आधुनिकता की नहीं रह जाती, बल्कि हम उत्तर आधुनिकता के एक बेहद जटिल दौर से भी गुजर रहे हैं। उत्तर आधुनिकता ने संपूर्ण सत्य के दावों को खारिज कर दिया है। बाजारवाद, उपभोक्ता संस्कृति और इंटरनेट की आभासी दुनिया के इस दौर में मनुष्य के पहचान और उसके अस्तित्व के संकट के रूप में अनेक संकट सामने आ रहे हैं। आज सत्य एकांगी नहीं है, आज हाशिए के विमर्श, विशेषकर स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पूरी ताकत के साथ मुख्य धारा बन चुके हैं। तो श्रोताओं, इसी लंबी, जटिल और वैचारिक रूप से समृद्ध यात्रा, आज के रचनाक्रम के नए जो ट्रेंड्स हैं और भविष्य के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक बलराम जी, जिन्होंने अपने सुदीर्घ रचनाक्रम से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है। हमारे साथ हैं हमारे समय की प्रखर और चर्चित उपन्यासकार, कहानीकार व नाट्य आलोचक प्रज्ञा जी, और एक गहरा अकादमिक और शोधपरक दृष्टिकोण जोड़ने के लिए हमारे साथ हैं इमोंक में आचार्य अध्येता डॉक्टर राजवंती जी। बलराम जी, प्रज्ञा जी, राजवंती जी, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतेंदु युग से शुरू हुई आधुनिकता की इस यात्रा को आप आज के युग में कहां खड़ा हुआ पाती हैं? आप स्वयं समर्थ उपन्यासकार हैं, हिंदी उपन्यासों में आधुनिकता के किस स्वरूप को आप देखते हैं?
1: देखिए राकेश जी, अगर भारतेंदु युग से बात शुरू करें तो लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से लेकर, और अगर बहुत लंबे समय तक हम आगे तक आते हैं तो गीतांजलि श्री के रेत समाधि, और उसके बाद भी काफी पानी बह चुका है उपन्यास की पूरी धारा में, कथा की पूरी धारा में। उपन्यास आधुनिकता की शुरुआत से ही बहुत लोकप्रिय विधा रही है पाठकों के लिए, और उपन्यास की शुरुआत में जो आधुनिक विचार दृष्टि रही है उसके केंद्र में व्यक्ति है, उसके केंद्र में यथार्थ है, हमारा जो सामाजिक आर्थिक यथार्थ है उसके केंद्र में रहा है। इसीलिए ये विधा पाठक को बहुत ज्यादा अपनी लगती है, और आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न विचार सरणियों को उपन्यास उकेरता है, कल्पना के माध्यम से यथार्थ सामने आता है, नए क्षितिज खुलते हैं। और आज के 21वीं सदी के अगर मैं समय को देखूं, और एक मेजर जो लैंडमार्क अगर हम देखते हैं पूरे इस आधुनिक साहित्य का, अगर हम देखें कि उदारीकरण भूमंडलीकरण के दौर से लेकर और आज तक के इस समय को देखते हैं तो लगभग 40 वर्ष का समय हो गया है। और इस पूरे समय को अगर मैं कहूं कि सदी के आर पार के यथार्थ के तौर पर अगर हम लें तो भूमंडलीकरण के बाद बड़े बुनियादी परिवर्तन जो समाज में आए हैं हिंदी उपन्यास ने उसे उकेरा है। जिन ट्रेंड्स की बात आप कर रहे हैं उनको मैं बहुत अलग अलग रूपों में देखती हूँ। अगर हम आर्थिक सामाजिक दबावों को ही देखते हैं तो आप इस पूरे हमारे देश दुनिया में जिस तरह के बड़े आर्थिक घोटाले और आर्थिक संकट हैं, तो दूसरी तरफ जो हाशिए की आपने बात की उसमें मैं किसानी चेतना की भी बात करूंगी, तो वहाँ किस तरह से उनका उत्पीड़न बढ़ता गया है और उसे उपन्यास ने लक्षित किया है। 21वीं सदी के किसानी चेतना पर बहुत मजबूत उपन्यास सामने आते हैं। अगर हम देखते हैं पंकज सुबीर का अकाल में उत्सव, तो आप पाएंगे कि एक जगह प्रेमचंद गोदान लिख रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद के समय में वो कॉरपोरेट कल्चर और उस तरह का जो पूरा भूमि का अधिग्रहण, उस तरह की चीजें नहीं थी जिस तरह से पंकज सुबीर अपने अकाल में उत्सव को लेकर आते हैं। किसान आत्महत्याओं का पूरा दंश लेकर आते हैं, इसके साथ साथ संजीव का फांस हमें दिखाई देता है। उसी रूप में मैं मधु काकरिया का ढलती सांझ का सूरज देखती हूँ, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई जो किसानी चेतना, उसका एक वैकल्पिक स्वरूप भी दिखाया गया। और भी ऐसे कई उपन्यासों को हम देख सकते हैं। एक जो मुख्य बात मुझे लगती है 21वीं सदी में, मात्र उपन्यास नहीं, मैं पूरे लेखन के संदर्भ में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि स्त्री लेखिकाओं का एक मजबूत हस्तक्षेप हमें 21वीं सदी में दिखाई देता है। वो चाहे कथा है चाहे वो कविता है, पूरे साहित्य में एक बेहद मजबूत धमक के साथ हमें स्त्री लेखन के नए क्षितिज खुलते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ अगर हम उपन्यासों के और ट्रेंड्स पर बात करें तो अस्मिता बोध के विविध स्तर हमें कई उपन्यासों में दिखाई दिए हैं। आर्थिक पक्ष की ही अगर हम और बात करते हैं तो विभिन्न जो भ्रष्टाचार है और उसमें किस तरह से सत्ता प्रतिष्ठान है और उनके बरक्स एक वैकल्पिक स्थितियां खड़ी करने वाले उपन्यासों में अगर मैं लूं तो संतोष चौबे का सपनों की दुनिया में ब्लैक होल एक अच्छा उपन्यास हम उसमें

0: देख सकते हैं कैसे वो एक समूची निराशा के बाद एक आशा की तरफ उपन्यास जाता है। और इसी रूप में अगर अन्य और उपन्यासों को लिया जाए तो शंकर जी का कुरवाड़ी फाइल है, उसको देखा जाता है। हरीश राय का दूब उपन्यास या माटी राग उपन्यास भी यही कहानी इस रूप में कहते हैं। पर्यावरण की चिंता किस तरह से उपन्यासों में आई है, अनेकानेक विमर्श किस तरह से उपन्यासों में खड़े हो रहे हैं। 21वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो मुझे दिखाई देता है कि इतिहास को मैं मानती हूँ राकेश जी कि इतिहास कथा साहित्य में भी होता है, लेकिन उसका तरीका वो इतिहास के अनुशासन की तरह शुष्क और तथ्यात्मक नहीं है। वो एक रचनात्मक तरीके से साहित्य कैसे उपन्यास में आता है उसकी आप वानगी बहुत सारे उपन्यासों में देख सकते हैं कि कैसे शोध की दृष्टि से, और संजीव के तो सारे ही उपन्यास आप देखते हैं वो शोध के तौर पर हैं, चाहे वो सूत्रधार है उनका जो भिखारी ठाकुर पर आधारित है उपन्यास या अन्य कई उपन्यास है। एक ट्रेंड ये भी है, और एक दूसरा अगर हम ट्रेंड अगर उसकी बात करते हैं तो शोध के साथ साथ जो कस्बाई चेतना के उपन्यास है, हरि भटनागर का गज जमीन है या नीलेश रघुवंशी का अगर हम देखते हैं तो एक कस्बे के नोट्स हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं हिंदी उपन्यासों में। मिथकीय पौराणिक और ऐतिहासिक जो पात्रों के आधार पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, हाल फिलहाल में जहां आरा बहुत चर्चित हो रहा है इस समय राजीव शुक्ल जी का, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रहा है प्रज्ञा जी की स्त्री जो है वो कथा के केंद्र में आई है, और आधुनिकता की पहचान ये भी है कि जो हाशिए पे पड़े हुए विषय थे या फिर जो वर्ग थे वो केंद्र में आने शुरू हुए। तो मैं इसी बात से सूत्र लेते हुए राजवंती जी की ओर रुख कर रहा हूँ, और उनसे मेरा सवाल यह है कि साहित्य में लंबे समय तक स्त्रियों को केवल एक विषय या पात्र के रूप में देखा गया, महिला आत्मकथाओं ने इस परिदृश्य को कैसे बदला, स्त्री को रचनाकार व अपने जीवन की नियंता के रूप में कैसे स्थापित किया, तो इस बारे में आप बताइए।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है राकेश जी। जब हम महिलाओं की बात करते हैं और उनके केंद्र में होने की बात करते हैं तो एक चीज निकल के सामने आती है, प्राचीन काल मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक। प्राचीन काल में महिलाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, उसमें अगर वेदों की बात करते हैं तो 27 महिलाओं ने ऋग्वेद में अपनी ऋचाएं दी है। उसके बाद बहुत सी ऐसी संत महिलाएं हुई है, बहिणाबाई से लेकर लोरलबाई, तोरलबाई, मीराबाई से आते आते अभी वर्तमान में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं जो लेखन के साथ साथ सात्विकता को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। जब बात महिला आत्मकथाओं की आती है तो महिला आत्मकथाओं में महिलाओं ने सबसे पहले अपने आप को रखा, जैसे मुख्य धारा में वो उनको पात्र के रूप में रखा गया था। आत्मकथा विधा से उम्मीद की जाती है कि आत्मकथा विधा सत्य के बहुत करीब होती है। जब व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो संभावना होती है कि वह मुग्ध हो जाता है और उसमें आत्मश्लाघा की भी संभावना हमें नजर आती है। लेकिन उसमें सबसे पहले जब एक स्त्री रखती है तो वह अपने आप को रख रही होती है, उसे पुरुष दृष्टि से नहीं देखा जाता। जितना भी साहित्य रचा गया पुरुष ने महिलाओं पे लिखा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा, बहुत सी चीजें लिखी गई, लेकिन पुरुष ने अपनी संवेदना के आधार पे एक महिला के चरित्र को गढ़ा। उसमें हर रूप महिला का था, माँ का, पत्नी का, बहन का, प्रेमिका का, एक त्यागमय रूप जो है एक पुरुष ने दिखाया है। जैसे अभी आपने प्रेमचंद जी का नाम लिया, प्रभा खेतान से लेकर अगर अभी हम मनु भंडारी, रमणिका गुप्ता, मैत्री पुष्पा, पद्मा सचदेव और चंद्रकिरण सोनरेक्षा, और अगर उधर देखेंगे तो कौशल्या बैसंतरी और सुशीला ठाकुर, तो ये जो आत्मकथाएं हैं इन्होंने क्या किया, एक बदलाव ये समाज में लेके आई, और उस बदलाव में इन्होंने सिर्फ नहीं अपने आप को रखा बल्कि पूरे समाज को रखा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी मूल्यों को महिलाओं ने रखा। मूल रूप से कहा जाता है कि स्त्री आत्मकथाओं देह पर आधारित। बहुत से सवाल उठे जब स्त्री ने अपने निजी संबंधों को जब समाज के सामने रखा तो एक आक्रोश व्यक्त हुआ, ये हमारा निजी मसला होता है, स्त्री को ये संवेदनात्मक मुद्दा होता है। लेकिन जब घरेलू हिंसा और संवेदनात्मक हिंसा यानी कि भावनात्मक हिंसा का सामना जो स्त्री कर रही है, यह होता है कि हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति स्वयं झेलता है उसकी एक अपनी अभिव्यक्ति होती है। और जब महिला आत्मकथाओं ने अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने रखा तो स्वाभाविक रूप से वह सत्य था, भले ही हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और इसी सत्यता को महिला आत्मकथाकारों ने रखा, उसने स्पष्ट किया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ, मेरा एक अपना वजूद है, मेरी अपनी भावनाएं हैं, मुझे मानव समझा जाए। और जैसे पुरानी परंपराओं के नाम पर जो बंदिशें थी उनका महिला आत्मकथाकारों ने खुलकर विरोध किया। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान ने जिस रिश्ते में भी रही लेकिन उसने इतनी बोल्डनेस के आधार पे अपने रिश्ते को स्वीकृति, भले उस

0: नहीं मिली, लेकिन जो जीवन उसने जिया उसने लिखा, उसे छुपाया नहीं। इसी प्रकार से पद्मा सचदेव ने भले उसने प्रेम विवाह किया और उस व्यक्ति से, वो कहती है कि 17 साल की उम्र में मैं एकदम बावली हो गई थी, मैं प्रेम में पागल हो गई थी, आसक्ति मुझे हो गई थी, मैंने भोगा उस दुख को, लेकिन मैंने अपना नया जीवन शुरू किया और किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को ढाला। और आप देखेंगे कि पद्मा सचदेव को बाद में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसी प्रकार से मनु भंडारी का जो आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, उनकी आत्मकथा में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी प्रकार का उसे हम रोना धोना नहीं कह सकते हैं। एक पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने देश की बच्चियों को शिक्षित किया और समाज के सामने एक मिसाल कायम की कि शिक्षिका होते हुए भी किस प्रकार से उन्होंने जो भी दंश झेला स्पष्ट उन्होंने लिखा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्ण अग्निहोत्री ने कोई कितने भी सवाल उठाए लेकिन कृष्ण अग्निहोत्री ने जो जिया वो सच लिखा। रूपिका गुप्ता जी ने जो जीवन जिया हादसे में उन्होंने स्पष्ट लिखा, उन्होंने किसी प्रकार की परवाह नहीं की। लोगों ने कहा कि घर टूट रहे हैं लेकिन जिस दृष्टि से उनको देखा गया उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दिनेश नंदिनी डालमिया ने भी अपने जीवन को मुझे माफ करना में लिखा कि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित शह देने के लिए मैंने डालमिया जी से शादी की। उम्र में मेरा काफी अंतर था, वो मेरी कविताएं पढ़ते थे और मुझे नहीं पता वो मुझे प्रेम करते थे या नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज को बखूबी स्वीकार किया। तो महिला आत्मकथाकारों ने अपनी कहानियों को भी स्वीकार किया है, साथ साथ में उन्होंने अपने वजूद को भी गढ़ा है, उससे समाज प्रेरित ही हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: इसको ये मेरा मानना है।
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की राजवंती जी, क्योंकि स्त्री एक मात्र देह नहीं है बल्कि वो चेतना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और स्त्री से जुड़े हुए सारे जो प्रश्न होते हैं वो सिर्फ निजी नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
0: जी जी राकेश,
1: मैं अब रुख करना चाहूंगा वरिष्ठ साहित्यकार बलराम जी की ओर। बलराम जी न सिर्फ हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं बल्कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सबका काम भी आप देखते हैं, उनसे आने वाले साहित्य पर भी आपकी गहरी नजर रहती है। तो मैं आपसे बलराम जी ये जानना चाहूंगा कि जो स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं उनमें आधुनिकता का क्या स्वरूप है साहित्य का?
2: राकेश जी, अभी हमने प्रज्ञा जी से हिंदी के उपन्यासों पर बात की और उन्होंने स्त्रियों के उपन्यासों पर भी बात की और पुरुषों के, खासतौर से संजीव के किसानों पर केंद्रित उपन्यास उस पर बात की। और राजवंती जी ने अलग तरीके से स्त्री लेखन, तो ऐसा लग रहा है कि हम स्त्री लेखन को केंद्र में ले आए हैं, ये सच भी है
1: जी।
2: आज की तारीख में साहित्य के केंद्र में स्त्री लेखन ही है और होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में दलित लेखन भी
1: जी।
2: स्त्री को बोलने की आजादी थी देश में, लेकिन लिखने की और सार्वजनिक रूप से अपना दुख अपनी तकलीफ कहने की आजादी नहीं थी और स्त्रियों ने अपने लेखन से उसे अभिव्यक्त किया है। लेकिन कहानी अगर यहीं तक रुक जाती कि वो अपना दुख लिख के, अपनी सच्चाई लिख के रह जाएंगी, तो बात शायद स्त्री के लेखक बनने की, उसे साहित्यकार की मान्यता मिलने की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो स्त्रियों ने इस बीच उस बात को नकारा कि हम पुरुषों की तरह से पूरे समाज की पीड़ा तकलीफ को लिखेंगे, स्त्रियों की बात भी उसमें शामिल होगी। पहले जैसे पुरुष लिखते थे तो स्त्रियों की बात भी लिखते थे, मगर वो कितनी सच होती थी, या तो देवी बना दिया या राक्षसी बना दिया। स्त्री को स्त्री के रूप में देखने का एक नजरिया जो चाहिए होता था वो स्त्री लेखन के साहित्य में आने की वजह से हम देख पा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है, पहले तो दलितों में आत्मकथाएं 30-40 वर्ष पहले मराठी में दलितों ने अपनी तकलीफ, अपनी यातना लिखना शुरू किया और उसके बाद हिंदी में और भारतीय भाषाओं में स्त्रियों ने अपनी सच्चाई, अपने जीवन की बातें सही सही लिखना शुरू किया। परेशानी भी पुरुषों को हुई, लेकिन अब जहां तक मुझे लग रहा है कि स्त्रियों को उनके दुख तकलीफ के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। और इसके लिए आप देखें, अभी अभी साहित्य अकादमी ने संस्मरण की किताब को पुरस्कार दिया
0: जी।
2: साहित्य अकादमी में आप देखिए, या तो कविता को पुरस्कार मिलता था या उपन्यास को मिलता था। इक्के दुक्के आलोचक नामवर सिंह और रामविलास जी जैसे बड़े बड़े लोग थे आलोचना में, बाकी केंद्र में कविता थी, शुरू से थी और अभी भी कविता ही केंद्र में है। लेकिन कविता के साथ आज उपन्यास भारत नहीं, दुनिया के लेवल पे उपन्यास ने अपने आप को काव्य और महाकाव्य के सामने खड़ा कर दिया है और कविता शायद उस तरह से अब नहीं है
1: जी।
2: अब केंद्र में उपन्यास है। संस्मरण को साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया, वो भी स्त्री के संस्मरण को। तो ये स्त्री लेखन ने अपना दबाव, अपना प्रभाव, अपनी महत्ता बताई है कि हम हैं। उस पर विवाद भी हुए। अब हम समय कम है तो हम लौटते हैं, स्त्री लेखन दलित लेखन की बात नहीं करते
1: जी।
2: स्त्रियों को भी वही होना है जो वास्तव में लेखक को होना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
2: स्त्री भी लेखक होना चाहती है, स्त्री लेखक नहीं होना चाहती। दलित लेखक, दलित दलित दलित चिल्ला रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ, मैंने दो अंक निकाले दलितों पर, मैंने विरोध किया कि आप दलितों के द्वारा दलितों के लिए और वही पढ़ेंगे वही लिखेंगे, गलत है
1: जी।
2: आप साहित्य की सत्ता में आप भागीदारी चाहते हैं, जैसे राजनीति समाज में, तो लेखक को अगर लेखक होना है तो अंग्रेजी का एक लेखक पंकज, अंग्रेजी का उपन्यास है दी एंड ऑफ सफरिंग्स
1: जी जी जी,
2: उस उपन्यास को आप पढ़िए
1: जी।
2: तो चाहे तो आत्मकथा कह लें, चाहे तो उपन्यास कह लें, चाहे धार्मिक किताब कह लें, चाहे फिलोसफी की किताब कह दें, चाहे यात्रा वृत्तांत
1: जी।
2: तो ये नहीं, वो एक रचना ऐसी है,
1: बड़ा परिवर्तन आया है जी, बड़ा परिवर्तन आया है सर। ये आपने जो बात कही कि जो विधाओं का जो एक मिश्रण हो रहा है, तो अब विशेष तौर पे आप जब चर्चा कर रहे थे तो कथेतर की मुझे समझ आ रही थी कि कथेतर एक केंद्र में आ रहा है। तो मैं प्रज्ञा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी भी एक कथेतर किताब आई है, यात्रा संस्मरण और संस्मरणों की किताब आपकी आई है, कुछ मजेने कुछ रास्ते। तो आपसे सवाल ये मेरा है कि पिछले कुछ समय से हिंदी साहित्य में नॉन फिक्शन यानी कथेतर साहित्य का एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हुआ है, तो सवाल ये कि क्या अब साहित्य को छोड़ के लोग सिर्फ आप क्या यथार्थ को पढ़ना चाहते हैं?
0: राकेश जी, अभी डॉक्टर राजवंती ने और आदरणीय बलराम जी दोनों ने ही कथेतर पर बात की है, संस्मरणों के हवाले से, आत्मकथा के हवाले से, जीवनी के हवाले से, और अभी आप कथेतर की बात कर रहे हैं जिसे एक समय में अकाल्पनिक गद्य वृत्त भी कहा गया और आप बीती के रूप में जिस तरह से आया है। मैं ये कहूंगी कि कथेतर के क्षेत्र में आज बहुत सारे कथाकार हैं और 21वीं सदी इस रूप में मायने रखेगी कि लगभग सभी वरिष्ठ हो चाहे और हो, सारे ही कथाकार कथेतर के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली सदी में कथेतर की रचनाएं हमें नहीं मिलती हैं, पिछली सदी में भी हमें कथेतर पर कई रचनाएं मिलती हैं। नासरा जी ने मर्जीना के देश में लिखा जो बहुत चर्चित रहा, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि एक लोकप्रिय विधा के रूप में यह आ रही है। लेकिन फिर भी कथा और कथेतर का अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो यथार्थ को मैं वो सेतु मानती हूँ जो कथा में भी है और जो कथेतर में भी है। एक जगह व्यापक वस्तुगत यथार्थ है और एक जगह निजी यथार्थ किस तरह से वस्तु परकता की ओर जा रहा है। मैं एक चीज और मानती हूँ कि कथेतर में एक लेखक क्यों आ रहा है, एक कथाकार क्यों आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक ही विधा में काम करते करते एक ऐसा बिंदु आता है कि जहाँ कोई रचनाकार एक मानसिक थकान भी महसूस करता है, तो विविध विधाओं में आवाजाही का क्रम, और हम ये साहित्य की शुरुआत से देख रहे हैं। आपने भारतेंदु का नाम लिया था, चाहे भारतेंदु को देख लीजिए, चाहे आप प्रेमचंद को देख लीजिए, चाहे आप अन्य लेखकों को देख लीजिए, वो विविध विधाओं में आवाजाही करते हुए अपनी उस मानसिक थकान को उतारते हैं और फिर अपनी मुख्य विधा में फिर से लौटते हैं। अभी शिवना का आपने नाम लिया, शिवना का एक कथेतर का पूरा सत्र का संचालन मैं कर रही थी जिसमें तीन लेखिकाएं मेरे साथ थी, मनीषा कुलश्रेष्ठ थी, शिखा वार्ष्णेय थी और वंदना अवस्थी दुबे थी, और ये तीनों लोग संस्मरण लिखते हैं और यात्रा संस्मरण लिखते हैं। शिखा वार्ष्णेय की किताब तो लंदन की जो उनकी डायरी है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ की अलग अलग जगहों के बारे में बताती हैं। वंदना अवस्थी दुबे चर्चित हैं, वो रेल संस्मरण लिखती हैं। पर मेरा एक सवाल ये वहाँ भी था और मैं आज यहाँ भी उठा रही हूँ कि एक जो हम महादेवी या उस तरह के हम पुराने संस्मरणों को देखते थे तो जीवन से एक लंबा जुड़ाव संस्मरण का जो पात्र था उसका रहता था, लेकिन आज के जब हम कुछ संस्मरण जैसे ये रेल संस्मरण है और आप खुद देखते हैं आज का जो पूरा समाज बदल गया है, रेल यात्राएं वैसी रेल यात्राएं नहीं होती कि हम एक दूसरे से बड़े अनौपचारिक हो जाएं। आज का वो समय नहीं रहा कि हम खाना का डिब्बे शेयर कर रहे हैं या हम अपनी व्यक्तिगत बातचीत शेयर कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ तात्कालिक ऑब्जर्वेशंस को ही संस्मरण कहना, इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है, इसलिए वो संस्मरण मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी कथेतर गद्य की किताबें हाल फिलहाल में जो मैंने पढ़ी भी हैं, जो पिछले साल बड़ी मकबूल हुई, मधु काकरिया की मेरी ढाका डायरी, एक इतिहास है अपने आप में, मकम्मल इतिहास है, और उस ढाका डायरी में ढाका में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी अपनी जो है किस तरह की तकलीफें हैं, जो स्त्रियां हैं चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है,
3: है, उनकी किस तरह की तकलीफें हैं, वहाँ की पूरी राजनीति किस तरह से है, तो उसको वो बहुत अच्छी तरह उठाती है। इसी तरह से सूरज पालीवाल जी जो बड़े आलोचक हैं, मेरे नक्शे के मुताबिक शिक्षा के दरीचे खोलती हुई किताब है कि गांव का एक बच्चा कैसे पहुंचता है और कैसे शिक्षा के बड़े

0: पंचलाइन मुझे लगती है यही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बस इस पूरी चर्चा में एक अंतिम प्रश्न कि आधुनिक बदलाव आए हैं, वो आधुनिक तकनीक में भी बदलाव आए हैं, अब किताबें जो है नया पाठक किंडल और ऑडियो बुक्स में भी जा रहा है, तो आपसे बहुत संक्षेप में दो एक पंक्ति में आप मुझे बताइए कि आप क्या भविष्य देखते हैं, ये आधुनिक तकनीक में जो बदलाव आ रहा है इससे साहित्य प्रभावित होगा, तो आप मुझसे बताइए संक्षेप में।
2: प्रभाव तो पड़ता है, तकनीक बदलती है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, और आप दोनों ने बहुत सारे लोगों की चर्चा भी कथेतर में था लेकिन केंद्र में नहीं था या चर्चा में नहीं था, प्रासंगिकता नहीं था, आज चर्चा में कथेतर गद्य में भी संसमा आ गया है, स्थापित हो गया है।
1: चर्चा बहुत शानदार विचार उत्तेजक रही है और इस परिचर्चा का समाहार यही है कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के तमाम बदलावों और बाजारवाद के शोर और माध्यमों के इस डिजिटल रूपांतरण के बावजूद साहित्य की मूल आत्मा वही रहेगी, मनुष्यता की खोज, संवेदना का विस्तार और हाशिए के वर्गों की आवाज को बुलंद करना।
3: हिंदी साहित्य का आधुनिक स्वरूप, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम, वरिष्ठ लेखिका डॉ. जयवंती जाखड़, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉ. राकेश। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां, प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति।
4: 24 मई 2026 को सुर साहित्य परिषद के तत्वाधान में एक भव्य साहित्यिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन साहित्यिक प्रेमियों नावांकुर रचनाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ। कार्यक्रम द्वारका नई दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम की संयोजिका सुर साहित्य परिषद की कोषाध्यक्ष डॉ. अनुराधा पांडे रही। इस साहित्यिक कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार प्रोफेसर हरीश नवल तथा वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सुधा नवल विशेष रूप से उपस्थित रही। दोनों साहित्यकारों ने अपने विचारों एवं अनुभवों के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रचनाकारों को साहित्य की विविध विधाओं और रचनात्मक लेखन की बारीकियों से परिचय कराया। प्रोफेसर हरीश नवल ने कविता का उद्भव, कालखंड के अनुसार कविता के बदलते प्रारूप और समाज में कविता के महत्व पर अपने महत्वपूर्ण विचार सभी रचनाकारों के साथ साझा किए। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित रचनाकारों के प्रश्न भी एक एक कर शामिल किए गए और दोनों ही वरिष्ठ साहित्यकारों ने सबके संतुष्टि परक उत्तर भी प्रदान किए। कार्यक्रम में सुर साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. संजय जैन, उपाध्यक्ष उर्वी उदल, सचिव ज्ञानेंद्र प्रयागी, सदस्य आदित्य अस्थाना, कवित्री एकता सिंह उपस्थित रहीं। सुर साहित्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि परिषद का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के प्रति नई पीढ़ी में रुचि विकसित करना तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। वही 26 मई को ऑडिटोरियम दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में साहित्य उत्सव जश्न अदब द्वारा न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय श्री गिरीश काठपालिया की नज्मों व गजलों का संग्रह लकीरों के गुंजन पुस्तक का लोकार्पण समारोह किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय रहे। अध्यक्षता पद्म श्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर रहे। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी श्री पवन कुमार रहे। सानिध्य प्रख्यात कवि एवं शायर कुंवर रणजीत सिंह चौहान रहे। मंच का संचालन प्रख्यात कवि श्री दिनेश रघुवंशी ने किया। वहीं दिल्ली विधानसभा सचिवालय के अधीन विधायकी अध्ययन ब्यूरो के तत्वाधान में त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना का शुभारंभ किया गया। इसके प्रवेशांक फरवरी अप्रैल 2026 का लोकार्पण 28 मई 2026 को दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में श्री विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित भव्य समारोह में श्री ओम बिरला तथा श्री किरेन रिजिजू के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। विधान चेतना का उद्देश्य संसदीय प्रक्रियाओं, विधायकी कार्य, संवैधानिक मुद्दों एवं शासन प्रशासन से संबंधित मौलिक शोध, विश्लेषण, लेख को प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करना, दिल्ली विधानसभा तथा उसके सचिवालय की विभिन्न गतिविधियों, विश्वसनीय एवं नियमित जानकारी जनता, विधायकों, शोधकर्ताओं एवं इच्छुक पाठकों तक पहुँचाना तथा देश के संसदीय इतिहास से जुड़े दुर्लभ, रोचक एवं प्रेरणादायी तथ्यों, घटनाओं एवं व्यक्तित्वों को प्रकाश में लाकर युवा पीढ़ी एवं आम पाठकों में संसदीय परम्परा के प्रति गौरव एवं प्रेरणा का संचार करना है। इस अवसर पर देश भर के रचनाकारों, लेखक, शोधकर्ता, पत्रकार, शिक्षाविद मौजूद रहे। वहीं 28 मई 2026 को निर्माण विहार दिल्ली में नव सरोकार फाउंडेशन के तत्वाधान में पद्म श्री पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी की 21वीं पुण्यतिथि पर नव सरोकार फाउंडेशन के संस्थापक श्री प्रवीण व्यास के सानिध्य में भव्य कविता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती सीमा कौशिक मुक्त ने किया। इस अवसर पर सर्व श्री राजेश भास्कर, डॉक्टर महेंद्र शर्मा मधुकर, विवेक कविश्वर, अशोक मधु, अजय अक्ष, संजीव निगमानाम, भगत सिंह वर्मा, तुलिका सिंह, दीपा

0: मा उजाला, सीमा शर्मा, मंजरी, राजेंद्र, राज निगम, इंदु निगम, सीमा रंगा, इंदिरा, दीपिका वल्दिया समेत अनेक लोगों ने काव्य पाठ किया तथा सभी कवि कवित्रियों ने एक से एक बढ़कर कविता की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रोतागण ताली बजाने पर मजबूर हो गए। वही 28 मई को साहित्य सृजन कुटुम्ब द्वारा आयोजित शब्दावली मैत्री काव्य गोष्ठी का आयोजन श्रीमती संतोष संप्रदी के तत्वाधान में वेदांता रेस्टोरेंट मुनिरकर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवि सर्वश्री प्रदीप भट्ट, सुषमा भंडारी, कुसुम लता पुंडोरा, वाजिद मेरठी, कृष्ण शर्मा दामिनी, एनसी खंडेलवाल, गुस्ताख हिन्दुस्तानी, रविन्द्र भूषण, प्रेम सागर प्रेम, रजनी बाला सहज, सुनीता पुनिया, पूजा भारद्वाज, दिनेश तिवारी, शालू शर्मा, रचना निर्मल, राजेश सुदील, संजय कुमार गिरी, अमृता अमृत समेत अनेक कवि कवित्रियों ने काव्य पाठ किया। वही 29 मई को उमंग संगोष्ठी का चौथा तल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वयम और वैश्विक हिंदी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में सुप्रसिद्ध कवि लेखक समीक्षक श्री नरेश शांडिल्य के 3 गद्य संग्रह पर चर्चा हुई। लेख संग्रह, शब्द संकल्प, समीक्षा संग्रह, पन्ने जो नजरों से गुजरे, शोध ग्रंथ, नाटकों में गीत, सार्थकता और प्रभाव पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। सानिध्य साहित्यकार श्री बाल स्वरूप राहिर का रहा। मुख्य वक्ता कवि लेखक समीक्षक डॉक्टर अनिल जोशी रहे। वक्तागणों में वरिष्ठ साहित्यकार श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, कवित्री एवं कथाकार श्रीमती अलका सिंह, प्रसिद्ध नाट्य अभिनेता प्रोफेसर प्रमोद शास्त्री रहे। प्रस्तावना एवं बीज वक्तव्य श्री अनिल वर्मा मीत का रहा। आलेख पाठ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शशिकांत का रहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल ने किया।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिकी, ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे अतिथि।
3: हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह डोगरा। आप पत्रकार हैं, लेखक हैं और समाज के विभिन्न हिस्से जो हैं उनमें लगातार सक्रिय हैं। ऐसे बहुत सारे काम आप करते हैं जिनसे दूसरे प्रेरित होते हैं। तो सुरेंद्र जी से आज इनकी पूरी यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने कहा कि आप पत्रकार हैं और लेखक हैं, तो सबसे पहले जब हम किसी भी पत्रकार के बारे में सुनते हैं या लेखक के बारे में जानना चाहते हैं, एक सवाल मन में आता है कि भारत में किस हिस्से में आपका जन्म हुआ और शुरुआती जो पढ़ाई थी वो कैसी थी?
4: नीलम जी, मेरा जन्म तो दिल्ली में आनंद पर्वत जगह है, वहां पर हुआ और मैं लेकिन मूल रूप से हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई भी जो है वो दिल्ली में ही, प्राइमरी स्कूल, ऊपर रामचंद्र स्कूल, अगर आपको आनंद पर्वत का पता हो दिल्ली में, और फिर आगे 10वीं 12वीं की क्लासेस जो है वो हम क्योंकि नांगली शिफ्ट कर रहे थे तो पश्चिम बिहार भी थी, पश्चिम बिहार से वहां से मेरी पढ़ाई हुई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। बीएड जो है वो मैंने रोहतक से किया है।
3: जी, तो बीएड किया तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा था। तो पत्रकारिता में कैसे आए फिर?
4: देखिए, पत्रकारिता की तो बात ये कहें कि थोड़ा सा ना बड़े भाई साहब का मेरे जीवन पे काफी प्रभाव रहा है अगर इस बात को कहा जाए तो, क्योंकि उनको ना पढ़ने की बड़ी रुचि थी
3: जी।
4: और बाकी उनको बहुत क्रेडिट इसलिए भी जाता है क्योंकि जब छोटे होते हैं तो भाई बहनों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जाता ही है उनको, और एक अंग्रेजी पे भी उनका बहुत वो था फोकस, बहुत अच्छी अंग्रेजी थी उनकी और वो मेरे को भी उसी तरह से मेरे को नर्चर करते थे और मैं बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ बड़े भाई साहब का बड़ा इम्पैक्ट रहा, बल्कि छोटे भाई का भी, क्योंकि उसको फोटोग्राफी का शौक था। बड़े वाले भाई साहब जो है वो काफी, उन्होंने लॉ के ऊपर किताबें भी लिखी और वो लॉयर हुए हमारे फैमिली में, तो उनका इम्पैक्ट जो है मेरे को लगता है पढ़ने पर जो ज्यादा करें, तो उनकी वजह से जो है लिखने में रुचि बनी। और फिर पत्रकारिता की बात करें तो वैसे सच्चाई तो यह है कि छठी क्लास के अंदर वो भाई पढ़े भाई साहब की वजह से ही मुझे जो है किसी अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल दिवाली पे लिखा था शायद, वो इस तरह से मौका मिला। लेकिन उस समय तो ये कह सकते हैं कि जस्ट एक बिगनिंग थी या ये समझ लो बचपना था वो तो, लेकिन गंभीरता जो है वो आई जब मैं शादी हो चुकी थी मेरी और 93 में मेरी मैरिज हुई, 94-95 के अंदर मुझे थोड़ा सा इस तरफ रुझान हुआ पत्रकारिता की तरफ
3: जी।
4: फिर काफी अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए और फिर तो जो है पंजाबी सी से जैसे पहचान वाली बात थी
1: जी।
4: तो हम संवाद सूचक के तौर पे हमें जो है वहां पर, लेकिन मेरे को ना शुरू से ही कुछ ज्यादा बेहतर देने की

0: समाज सूचक में तो 5-7-10 लाइनें की रिपोर्टिंग होती थी। साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली से मुझे अपॉइंट किया हुआ था, वो पार्ट टाइम जॉब थी
1: जी।
0: लेकिन मेरे को ये रहता था कि मैं कुछ और बेहतर लिखूं, तो फीचर पेज का पता लगा तो लेख लिखने लगे। राजेश निरंजन, जो कि हरिभूमि के लिए भी मैं काम करता था, स्कूल से छुट्टी होती थी, नांगलोई में मॉडर्न चाइल्ड स्कूल में काम करता था, वहां से छुट्टी होती थी और मैं जो है वहां मुल्तानगर में ऑफिस होता था हरिनगर का, C101 आज भी याद है मेरे को। तो नीलम जी, वो जो एक लम्हा रहा ना, तो राजेश निरंजन जी हमारे हिमाचल से थे, बाई चांस हमीरपुर से ही, उन्होंने भी मेरे को ना काफी कुछ, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग से आर्टिकल और फीचर आर्टिकल लिखने में, क्योंकि इसमें मुझे शुरुआती रिपोर्टिंग में मुझे रामरतन शर्मा जो पंजाब केसरी थे उन्होंने मेरे को थोड़ा मदद किया शुरुआती दौर में। एक रोशन चौधरी जी थे, वो भी बिलासपुर से हैं, और वो बल्कि अश्विनी जी का जो है एडिटोरियल जो है वो प्रूफ रीड किया करते थे। तो मुझे कहने का मतलब कुल मिला के अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, और मैंने ना हर चीज पे गंभीरता, जबकि मैं फुल टाइम जॉब करता था, लेकिन मैं अपनी पूरी शिद्दत से पत्रकारिता करता था, लोग मुझे फुल टाइम पत्रकार समझते थे मैम।
1: तो लगभग 3 दशकों से ज्यादा का आपका पत्रकारिता का अनुभव है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई मैं वो जानना चाहूंगी आपसे, कि सबसे पहला असाइनमेंट जो था वो आपने बताया कि पंजाब केसरी से पहचान आपको मिली और धीरे धीरे आप आगे बढ़ के चले गए। आज जो है पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप हम देखते हैं, सोशल मीडिया भी है और बहुत सारे चैनल्स भी हैं, फिर जो टीवी चैनल है उनकी अपनी वेबसाइट भी है, तो जिसमें लेखन का कार्य होता है। आप ऐसे में एक नैतिक पत्रकारिता जो है, इस कॉन्सेप्ट को क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं?
0: देखिए, मैं तो शुरू से ही इस चीज का, क्योंकि मैंने देखिए कि मैं एक बार किसी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, में नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, शायद उन्हें हर्ट कर जाए, बट द थिंग इज कि देखिए क्या होता है, जो कोई भी, मैं तो ये बात बोलता हूं, बात पत्रकारिता की नहीं है, कोई भी आदमी जो भी काम करता है उसे अपने काम के लिए पूरी पागलपन से काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी काम में घुसोगे नहीं अच्छे से, तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड ये मेरा जीवन का जो है एक, मतलब ये समझ लो लक्ष्य रहा कि मुझे उत्कृष्ट देना है, चाहे कैसे भी देना है। इसमें मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, सुनीता डोगरा का, बच्चों का भी बहुत योगदान रहा है। तो मतलब मुझे ये रहा कि यार कुछ ना कुछ अच्छा करना है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो आपने, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं इस तरह से कोरिलेट करूंगा कि पत्रकारिता तो देखिए ऐसा है, पूरा अध्ययन है, रिसर्च है, इसमें तो जितना कर लो वो कम है
1: जी।
0: तो उसके लिए पहले तो हमें लाइब्रेरियां छाननी होती थी, लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से, इवन अब ये जो अपना अमेरिकन लाइब्रेरी या रशियन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के प्रति इसलिए बहुत ज्यादा रुझान भी है, क्योंकि देखिए और आप देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी जो मैं धरोहर समझता हूं वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही है, और वो डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी से बड़ा कोई स्रोत हो ही नहीं सकता
1: जी।
0: तो इसलिए पत्रकारिता के अंदर जो, और जो नैतिक मूल्यों की आपने बात करी, तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार जो है वो किसी भी, और साहित्यकार, ये किसी भी देश की धरोहर होते हैं। अगर ये ढंग से कुछ भी कार्य करते हैं तो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं
1: जी।
0: और मैं भी अपनी तरफ से उसी कंट्रीब्यूशन पे लगा हुआ हूं
1: जी। आप हिमालयनी मैगजीन जो है उसके दिल्ली ब्यूरो प्रमुख रहे हैं, तो ऐसे में 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो यही कि भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने में मीडिया की क्या भूमिका आप समझते हैं, दूसरा ये कि ब्यूरो प्रमुख के तौर पर कैसी भूमिका आपकी रही, क्या जिम्मेदारियां थी, क्या चुनौतियां थी?
0: थी नहीं, मैं अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 2019 से मैं जुड़ा था। और हिमालयी पत्रिका कोई आज की नहीं है, पिछले लगभग 28 वर्षों से निरंतर मासिक पत्रिका निकलती है और हिंदी की है वो
1: जी।
0: काठमांडू नेपाल से निकलती है, हालांकि उनको भी बड़ी चुनौतियां भी रही, लेकिन उसका भी एक बड़ा जबरदस्त वाला ऐतिहासिक जो है वो एक आधार है, वो ये है कि वो जो उनके पिता थे, जो हमारे सचिनानंद जी हैं, उनके पिता थे कृष्ण जी, वो 3 सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने पीएचडी की हुई थी। बाईचांस ये प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी जी, वो वहां गए हुए थे नेपाल में, और बाईचांस उन दोनों की भेंट हुई, जब उनसे बातचीत हुई तो वो उस समय पत्र निकालते थे जो कोई त्रैमासिक टाइप में
1: जी।
0: तो जब वो अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि खुद साहित्य कवि थे, तो उन्होंने उनको मोटिवेट करा कि आप पत्रिका क्यों निकालते और आप इसको थोड़ा सा व्यापक करिए, और आप हिंदी का कार्य कर रहे हैं नेपाल में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसे वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इसे पत्रिका का शेप दीजिए। एंड दैट वाज द माइलस्टोन ऑफ आवर मैगजीन। तो ये जो बात थी, तो और वो जहां तक मेरे जुड़ने की बात है, तो 2018 के अंदर मैं पहले उनसे मुलाकात हुई मेरी, और मेरठ के अंदर एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर वीके पंडित, वो साहित्य पे जो है साहित्य सम्मेलन कराते हैं मेरठ के अंदर
1: जी।
0: तो वहां उनसे मुलाकात हुई थी, और 2019 में मुझे बाईचांस 2018 के लास्ट में वहां पर जाना हुआ, और एक किसी आयोजन के अंदर हम वहां पर मिले। 1 जनवरी 2019 से मैं निरंतर जो है उनके लिए दिल्ली से ब्यूरो प्रमुख के तौर पर उन्हें काफी मतलब जो कहीं चाहे किसी कहें या पुस्तक समीक्षा की बात हो या कोई किसी खास हस्ती का इंडिया से किसी खास हस्ती के ऊपर जो है इंटरव्यू हो है ना और या कोई सामाजिक सरोकार रखने वाला कोई लेख हो तो इस तरह का मेरा योगदान उनको नियमित तौर पे मासिक तौर पे मिलता रहता है। और इतना ही नहीं, ये तो हिंदी की बात हुई, उनकी वेबसाइट भी है उस पर, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी में भी लिखने का बहुत रुझान रहता है तो वैश्विक स्तर पर अगर आपने अपनी पहचान बनानी है तो अंग्रेजी भी आपको लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए जाननी चाहिए और आपकी उस तरह की पहचान। तो और यही कारण रहा कि मुझे हेमालिनी से जो है क्योंकि उनका वैसे भी वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा नाम है, हिंदी का कोई ऐसा साहित्यकार लेखक ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा जो हिमालयनी पत्रिका को नहीं जानता हो, तो मुझे भी बड़ा गौरव महसूस होता है कि मैं ऐसी बड़ी पत्रिका के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
1: जी, तो क्या भूमिका मानते हैं मीडिया की दो देशों को नजदीक लाने में?
0: ये तो एक बहुत अहम प्रश्न आपका है
1: जी।
0: और ये असल में मुझे लगता है कि ये बात हिन्दुस्तान और नेपाल की नहीं है, मेरा एक ना एजेंडा है लाइफ के अंदर और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत सफलता भी मिली है, वो ये है कि मीडिया कैन ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड
1: जी।
0: तो लेकिन बात मुद्दा यही है कि वो मीडिया कर्मी उसको परोसते कैसे हैं। देखिए दो एंगल होते हैं हर चीज के, दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: जैसे सिक्के के दो पहलू है, हेड एंड टेल। अब दिक्कत यह है कि आज जो है ना, अब जैसे मैं क्योंकि जब वो जो दंगे हुए अभी पिछले दिनों मैं वहां गया हुआ था एज ए गेस्ट टीचर, मैं वहां पर इन्वाइट किया हुआ था।
1: कहां की बात?
0: थोड़ा नेपाल में
1: जी।
0: तो मैंने वो सारा मंजर देखा है कि वहां पर जैन जी को जो जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया या वहां जो इतना नुकसान हुआ, मारकाट हुई, मैं सच्ची बताऊं मेरे आंखों सामने हुई है वो सारी चीजें। हथौड़ा में था, बागमती प्रोविंस में ही आता है काठमांडू भी, ठीक है, और बल्कि काठमांडू फिर जाना मेरे को बिल्कुल मना कर दिया जिन लोगों के पास में रुका हुआ था, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल स्कूल था
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि उसमें सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा जो है इस तरह से मारकाट हुई, क्योंकि गंभीरता जो है ना आज भी मैं जिस स्कूल में रुका हुआ था या मैं गया जिन्होंने मेरे को वहां बुलाया हुआ था गेस्ट टीचर के बतौर, वहां पर खुद 5 अखबार डेली आते हैं, एक इंग्लिश का बाकी नेपाली के। तो पत्रकारिता में और मैंने बहुत, और मैं आपको एक बात और बता दूं, वहां के मीडिया कर्मी बहुत सिंसियर भी हैं
1: जी,
0: बहुत गंभीर है। वहां के साहित्यकारों की बात करें तो वो एक विषय अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता का आज जो अस्तित्व है वो हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छा नहीं रह गया है। तो नेपाल जो है वो छोटा सा देश है, उसको अंडरएस्टिमेट भी किया जाता है, तो वहां पर ना और जो इन्वॉल्वमेंट है वर्ल्ड की हो गई है खासतौर पर, वो वहां थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। और अब देखते हैं कि अभी नए बालेन शाह जैसे बने हैं प्रधानमंत्री हुआ तो सब कुछ चेंज आए, लेकिन हाँ क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा अहम है उसको बताना बहुत जरूरी है कि पत्रकारिता का क्या भूमिका हो सकती है भारत नेपाल के संबंधों की। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भूमिका है और कई बड़े बड़े नाम हैं पत्रकारिता का, जैसा मैंने ये हिमालिनी के जो प्रमुख थे जिन्होंने स्थापना करी उनके बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे वहां पर जो है पत्र भी हैं, जो काठमांडू पोस्ट है वहां पर, हिमालयन टाइम्स है, ये ऐसे अखबार हैं इनके। अगर आप, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं तो क्योंकि 2 महीने रहना वहां पर, 2 महीना 2 दिन में रुका, तो मैं काठमांडू पोस्ट तो इसीलिए जानबूझकर पढ़ता था कि अंग्रेजी का था, नेपाली मैंने काफी हद तक सीख ली तो नेपाली को भी पढ़ता था। और आप कल्पना नहीं करोगे हमारा कोई हिन्दुस्तान का शायद ही कोई अखबार का डेली का अखबार हो, दावे के साथ कह सकता हूं, जो बहुभाषी हो, हमारे गोरखा पत्र अखबार आता डेली का, उसमें हिंदी अंग्रेजी उर्दू नेपाली, आप सोचिए वो कैसे कंपाइल करते होंगे। मेरी बल्कि बात हुई उनसे जो उनके एडिटर थे, मैं तो देख के दंग रह गया। और हमारे संस्कृत का उस पर श्लोक लिखा हुआ है
1: जी,
0: हेडलाइन पे ऊपर, मतलब जो जो फ्रंट पेज के ऊपर, तो बड़ा अपना पंछा महसूस होता है। तो नेपाली के बारे में तो जितना बोला जाए पॉजिटिव उतना बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में उनके प्रति भावना है और हर भारतीय के प्रति होती है। तो नेपाल भारत के बहुत सारे लोग अच्छा काम करे, अशोक वैद करके हैं जो कि बीरगंज में है, ऑल इंडिया रेडियो से वो जुड़े हुए वहां के जो हुई है, तो कुल मिला के वहां के जो पत्रकार और जो लेखक है साहित्यकार है उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है और वो बहुत अच्छा रोल अदा ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी लोगों का काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना, क्योंकि वो कुछ धर्म से भी मिलना जुलना है ना, और हालांकि वहां मुस्लिम कम्युनिटी भी है लेकिन वो भी बहुत हम्बल्ड है और बहुत अच्छे से आत्मीयता है लोगों के अंदर। तो पत्रकारों की एक अपना अलग भूमिका बन जाती है। बाकी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, मेरी एक फिल्म है लाइब्रेरी करके।
1: मैं तो ये आपसे पूछने ही वाली थी कि पत्रकार रहते हुए शब्दों से रिश्ता था तो आप लेखक बन गए, लेखक से आप लाइब्रेरी तक पहुंचे, फिर उसके बाद फिल्म कैसे जुड़ गए। आप डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और बहुत अच्छे विषय आपने चुने अपने फिल्म्स के लिए और समाज में कुछ योगदान करने का भी विचार उसके पीछे रहा, तो ये कैसी शुरुआत हुई?
0: नहीं, मुझे लगता है कि ना जैसे आप निरंतर किसी भी काम को करते हैं ना तो कुछ अपने आप जो है आपके जो है दिमाग की बत्तियां खुलती हैं। उसका कारण वही जैसे मैंने बोला ना, अच्छे लोग मिलते चले गए। और दूसरी बात ये भी है, वैसे बचपन में ना हमारी माता जी को बहुत फिल्मों का शौक था और हमें तो पता ही नहीं होता था। हम जैसे बताया ना अनपढ़ पैदा हुए तो हर फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज होती थी हमारी, जबकि बहुत कोई हम संपन्न परिवार से नहीं है, बावजूद उसके माँ को ये होता था कि भाई हमने पहला शो देखना है, उसमें ब्लैक होती थी टिकटें, लेकिन हम फिल्म देखने जाते थे, चाहे वो राजेश खन्ना हो, देवानंद हो, जो पुरानी फिल्में। तो फिल्मों का शौक तो उस वजह से बना बचपन में, उसके बाद दूरदर्शन पर देखते थे
1: जी
0: ना, तो फिल्मों का रुझान तो था ही, और पुरानी फिल्मों का तो मैं पूरा दीवाना हूं गानों का। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ जो फिल्म मेकिंग के लिए आया वो आया संदीप मारवा, जो मारवा स्टूडियो वाले हैं, मेरा उनसे संपर्क हुआ
1: जी।
0: और मैं उस दौर पे था कि जब मैं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और फुल टाइम जर्नलिज्म कर रहा था, तो मुझे लगा कि ना विजुअलाइजेशन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी महत्वता मैंने तब और ज्यादा महसूस करी कि जैसे मैं किताब लिखी मैंने 2017 के अंदर, तो पहली किताब जो मेरी डेब्यू बुक आई, उससे पहले भी मैंने कुछ और लोगों के लिए लिखी, तो जितना समझती तो उतना काम किया। लेकिन मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था जैसे अब अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो जो अंग्रेजी नहीं समझता तो भाई वो किताब उसके लिए बेकार है। सेम केस हिंदी की भी, आज भी ऐसे कोई बुजुर्ग आ या ऐसी जगह में आप चले जाते हो जहां पर कि हिंदी भी नहीं जानता कोई, तो फिर आपके पास कौन सी लैंग्वेज है? तो मैं फिल्म को यूनिवर्सल लैंग्वेज समझता हूं।
1: लेखक सुरेंद्र सिंह डोगरा से हमारी रोचक बातचीत जारी है, लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने कर दिया है इशारा कि अब हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, अगले सप्ताह भी ये बातचीत जारी रखेंगे। इस इंटरव्यू का अगला भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह। अब कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी के साथ मुझे यानी नीलम अलकाने को दीजिए अनुमति हमारे अतिथि कार्यक्रम से। नमस्कार।

और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मिडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश है प्रोग्राम सुबगाही। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं अजीब कर के गए हुए शब्द।

सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप ये शब्द सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।

इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 31 मई है और आज ही के दिन 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया और आज ही के दिन 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1921 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था, जबकि 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासित करने के बाद भारत में उन्होंने शरण ली थी और 1964 में बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्रॉम अंतिम बार चली थी। 2007 में आज ही के दिन सेप ब्लैटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे और 2010 में आज ही के दिन भारत में मान्यता प्राप्त प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने का कानून बनाया गया था। और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, तो इस क्रम में तन्वी सबसे पहले बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिश्वास को आज हम याद कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। हिंदी फिल्मों के गीत संगीत के स्वर्ण युग के साथ ही अनिल बिश्वास रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय कलात्मक और मधुर बनाया बल्कि अनेक गायक गायिकाओं को तराश कर हीरे जवाहरात की तरह प्रस्तुत किया। इसमें तलत महमूद, मुकेश, लता मंगेशकर, सुरैया के नाम प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। अनिल बिश्वास शास्त्रीय संगीत के निष्णात होने के साथ साथ लोक संगीत के अच्छे जानकार थे। उनकी धुनों में जो संगीत है वो अब भी हमारी विरासत बना हुआ है, तो उनकी फिल्म का जो मेरा साया फिल्म है जिसमें उन्होंने संगीत दिया था उसका एक गाना सुनते हैं।

हिंदी सिने संगीत के पितामह कहे जाने वाले दादा अनिल विश्वास की सबसे बड़ी खासियत थी उनका ज्ञान और उनका समर्पण। उन्होंने ऐसा कोई गाना नहीं बनाया जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। अनिल विश्वास की संगीत यात्रा पर कुबेर दत्त की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी आई है। अनिल दा ही वो संगीतकार हैं जिन्होंने तलत महमूद को विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज की लर्जिश ही उनकी दौलत है। और आज ही पुण्यतिथि है अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास की। इन्हें साहित्य अकादमी, एशियाई पोएट्री अवार्ड तथा कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। कमला दास ने वर्ष 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के दावेदारों की सूची में भी जगह बनाई थी। कमला सुरैया के नाम से भी जानी जाती रही हैं। इसके अलावा आज ही पुण्यतिथि है लघु कथा लेखक, मलयाली भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक जॉन अब्राहम की। फिल्मों के अतिरिक्त भी अपने जीवन शैली के लिए भी जाने जाते थे। जॉन अब्राहम ने तमिल फिल्म अग्राहरतिल कजुथे से अपनी छाप छोड़ी थी। वर्ष 1986 में जॉन अब्राहम ने अपने समूह के लिए अम्मा अरियन का निर्माण शुरू किया। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस फिल्म के जरिए वे फिल्म सोसाइटी आंदोलन को एक ऐसी पारदर्शी संस्था में बदलना चाहते थे जो पूरी तरह से अपने दर्शकों के प्रति उत्तरदायी हो। इसी कारण से उन्हें अम्मा अरियन के निर्माण के खर्च के लिए चार्ली चैपलिन की मशहूर फिल्म किड के प्रदर्शन पर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध समाज सुधारक और हिंदी के लेखक संत राम डी ए की। संत राम का जन्म पंजाब में होशियारपुर के बस्ती गांव में 1886 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा बजवाड़ा के हाई स्कूल में हुई थी। 1909 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए की परीक्षा पास की थी। तभी से वे संत राम बीए के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत राम बीए अपने समय के प्रमुख हिंदी गद्य लेखक थे। सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं उनके निबंधों को स्थान देती थी। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनकी आत्मकथा

और हमारे श्रोता पहचाने गए होंगे, ये प्रसिद्ध पार्श्व गायक के रहे हैं। उनका पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत है और उन्हें उनके संक्षिप्त नाम के से अधिक जाना जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों के प्रमुख गायक रहे हैं। के ने अपने दोस्तों के साथ एक रॉक बैंड का भी गठन किया था। मशहूर गायक किशोर कुमार और संगीत निर्देशक आर डी प्रधान ने के को बहुत प्रभावित किया था।

विख्यात फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने केके को बॉलीवुड में गाने का पहला मौका दिया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपना कार्यकाल फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलियां से शुरू किया था। केके 31 मई 2022 की आधी रात को कोलकाता के नजरुल मंच पर परफॉर्म कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। केके कभी भी एक गायक नहीं बनना चाहते थे, उनका बचपन से सपना डॉक्टर बनने का था।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हकानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिये ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिये को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ओंग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नष्ट किया जाएगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिये ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिये को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिये ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिये को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिये अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और

प्रोग्राम हुस्न गजल। आज के प्रोग्राम में समाप्त कीजिए कमल हंसपाल की आवाज में दाग दहलवी और डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम। बादजां आप सुनेंगे जुनैद से आगा बिस्मिल और मखमूर दहलवी का कलाम।

0: जुनैद की गई हुई इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश है प्रोग्राम रूबरू।
1: रूबरू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग फनून, अलग अलग उलूम के माहिरीन को जहमत देते हैं, जिसमें दुनियाए अदब की नामवर शख्सियात शामिल होती हैं, इल्म फन के चिराग रोशन करने वाले वो जहन शामिल होते हैं जिनकी ताबिंदगी से हमारी कायनात रोशन है। आज उर्दू की एक ऐसी ही नाबगा शख्सियत हमारे साथ है जिसने इतने काम किए हैं कि अदब के हवाले से किसी भी कीमत पर उसे फरामोश नहीं किया जा सकता, और ये शख्सियत है मोहतरम नंद किशोर विक्रम साहब की। हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया जी।
1: नंद किशोर विक्रम साहब, आपने एक लंबा अरसा अदब का, तारीख का और तहजीब के बदलने का, आप उसके चश्मदीद गवाह रहे हैं। आपकी पैदाइश 1929 की रावलपिंडी की है, जब गैर मुनकसिम हिंदुस्तान हुआ करता था, तब से इस दुनिया के गवाह हैं। ये जो दुनिया अदब की दुनिया कहलाती है, तहजीब की दुनिया कहलाती है, तो आजादी के वक्त, जिस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 20 साल से कुछ कम रही होगी, 18 साल रही होगी, तो आपके हाफजे में वो वक्त कहीं मौजूद है?
2: देखिए, वो वक्त महसूस ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम कभी भी नहीं भूलते। अगर आप तकसीम में जो फसादात हुए हैं वो इतने दर्दनाक, अफसोसनाक थे कि उन्हें बुलाने से भी बुलाया नहीं जा सकता। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने वहां भी फसादात देखे। देश पाकिस्तान बन गया रावलपिंडी में, और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान में तकरीबन कुछ दिन पहले आ गया था और देहरादून आ गया था, मेरे बहनोई थे, मुझे भेज दिया गया था कि महसूस जगह चला जाऊं। उन दिनों जो है मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अम्बाला से दिया था और इम्तिहान दिया, उन दिनों भी कर्फ्यू लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से जाते थे, और वहां से फिर हम इम्तिहान दे के देहरादून जाते थे, और गाड़ी में अम्बाला के रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा कई आदमियों को लोगों ने ढूंढ ढूंढ के हलाक कर दिया। यही नहीं, जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो कुछ जो बलवाई थे वो आगे और लोगों की तलाशी लेने लगे, देखने लगे कौन है, कैसा है। मेरे साथ जो लड़का था वो बन्नू का रहने वाला पठान था, काफी लंबा चौड़ा था, तो उन्होंने सोचा ये मुसलमान होगा, सलवार पहनी हुई थी उसने, तो उसको उन्होंने कहा, तो वो तो कहने लगा भाई मैं हिंदू हूँ। मुझे कहने लगे, मैंने कहा भाई देखो मेरे हाथ पे ये ओम लिखा हुआ है। तो खैर फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद एक बेचारा बड़ा मासूम सा, मरियल सा

0: 50 55 साल का बुड्ढा गरीब आदमी, वो गाड़ी में दुबका में बैठा था, उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि शायद वो हमें अगर यकीन ना करते तो तलवार से हमें भी इस तरह मारकर गाड़ी से नीचे फेंक देते। और ये चीजें आज भी मुझे सुनाई देती हैं और मैं सोचता हूँ शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो मैंने दोनों जगह देखा है, बर्बरियत थी, वैशीपन था और कोई किसी का नहीं था। अफवाहें बहुत फैलती थी, पाकिस्तान में इतने मारे गए, वहां फैलती थी, हिंदुस्तान में इतने मारे गए। नतीजा ये होता था, यहां से भी गाड़ी कट के जाती थी, वहां से भी कट के जाती। तो इंसान जो है सही मानों में वही है कि इंसान नहीं रहा था, वैशी रह गए थे और कोई किसी का सगा नहीं था। हाँ, एक बात मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि किसी पड़ोसी ने, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था, किसी अपने पड़ोसी को नहीं मारा। मुसलमान ने पड़ोसी हिंदू को नहीं मारा, चाहे वो हिंदुस्तान था या पाकिस्तान था। तो दोनों ने पड़ोसियों की रिलेशनशिप कायम रखी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये चीज चल रही है और ये सादात जो है मुझे बहुत हर्ट करते हैं। और मैंने जितनी कहानियां लिखी हैं उनमें बहुत सी कहानियों में सादात का जिक्र है और तकसीम का जिक्र है।
1: नंदकिशोर विक्रम साहब, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अनजाने में आपके कुछ ऐसे जख्मों को कुरेदा जिनसे खुद आपको तकलीफ तो हुई ही थी, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं जाती तौर पर मुझे लगता है कि वो भी उस दर्द को, उस कर्क को जिससे वो नाआशना थे उससे वाकिफ हुए होंगे जिस तरह से आपने उस मंजर को बयान किया। और ये एक ऐसा तारीखी अलमिया है जिसे बड़े सगीर तो क्या पूरी दुनिया भी नहीं भूल सकती, जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, मारे जाना, कत्ल वारदगरी, मंटो के अफसाने हों, उस वक्त का अदब हो, दूसरे अफसाना नगारों के हों। आपने भी जिक्र किया, आपने अपने अफसानों में जिस तरह से इनको बयान किया है, बहुत अफसोसनाक मंजर है। खुदा न करे वो मंजर किसी और आंख को कभी भी देखना पड़े। बस हमारी यही दुआ है और मैं आपकी तकलीफ को, आपके कर्म को समझ सकता हूँ।
0: देखिए, ऐसा है कि हिजरत तो हजारों साल से हो रही है। हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले हिजरत की, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो है हम लोगों ने की है, जो 1 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करके वापस आई। और वो आज तक वो जो नस्ल थी, खासकर बूढ़े लोग जो वहां 20-25 साल के थे, अब 80-90 के होंगे, वो लोग अब लगभग खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आज भी जो लोग जिंदा हैं वो याद करते हैं, अपने गांव को याद करते हैं, अपने कस्बे को याद करते हैं, अपनी जाय पैदाइश को याद करते हैं। और उनको आज भी असरत है कि एक बार हम जाके उस इलाके को देख गए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई देख नहीं सकता। मैंने कहानी भी लिखी थी एक पाकिस्तानी की मौत, तो उसमें भी एक बुड्ढा है जो सारी जिंदगी जो है यही सोचता है कि अपने गांव जाऊं। तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को लिखता है, यहां भी लिखता है, उसकी बहुत लंबी फाइल बन जाती है, लेकिन उसे कोई बुलाता नहीं। और उसमें जो अफसाना निगार है वो खुद कहता है कि मैं उससे कहता हूं कि आप फिक्र ना कीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, जल्दी को रास्ता निकल आएगा। तो कई बार मुलाकातें होती हैं और ये जिक्र होता है, यानी आखिर वो मरने वाला है। तो वो अफसाना निगार कहता है कि देखो, अब मुलाकात हो रही है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। वो कहते हैं क्यों टिफल तसली देते हो, और वो ये कैसे मर जाता है। तो मरने के बाद वो अफसाना निगार कहता है कि मुझे समझ नहीं आता ये आदमी हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी, क्योंकि इसका जिस्म जो था हिंदुस्तान में था और इसकी आत्मा जो रूह जो थी वो पाकिस्तान में थी।
1: बहुत उम्दा, बहुत।
0: तो ये इस तरह की कहानियां मैंने लिखी हैं और लोगों को, ये एक नहीं, पाकिस्तान में भी जो लोग बैठे हैं वो लोग भी जो है कई बार कहते हैं यार हम आए। अभी दालर के भाई ने मुझे कहा यार मैं होशियारपुर देखना चाहता हूँ। तो और भी बहुत से लोग मिलते हैं जो लाहौर में हम रख गए, अभी मौका मिले तो हम अपना होशियारपुर देखें, गुरदासपुर देखें, जालंधर देखें। उन लोगों को मौका नहीं मिलता, उनको मिलता है वो आते हैं। आपको मालूम ही है जॉन एलिया जब आए थे
1: जी जी,
0: और उन्होंने सजदा किया था वहां जाके,
1: जमीन को बोसा दिया।
0: तो इतना लोगों को प्यार है। और जॉन एलिया के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वो मगरब की तरफ मुंह करके नहीं बैठते थे, मशरक की तरफ मुंह करके बैठते थे कि मेरा अमरोहा वहां है। लोग काबे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, अमरोहा की तरफ मुंह करके बैठते थे मेरा अमरोहा। तो आदमी को अपने वतन के जहां से वो निकाल दिया गया या किसी वजह से आया, तो उससे जो है वो लोग भूले रहे हैं,
1: अपनी मिट्टी
0: से वाबस्तगी जो है वो खत्म नहीं होती, उसकी खुशबू, उसका लम्स जो है वो महसूस करते रहते हैं, चाहे उनसे दूरी क्यों ना हो।

0: कहीं हो दुनिया के किसी
1: खिते हमारे एक दोस्त थे श्यालकोट के, वो कहते थे यार मुझे अगर कोई श्यालकोट ले जाए मैं उसका सारा खर्चा बर्दाश्त करूंगा। तो यहाँ तक उसकी ख्वाहिश थी। तो इस तरह लोगों की ख्वाहिश है कि हम अपना इलाका देखें।
0: आपके बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे देवेंद्र इस्सर साहब
1: जी,
0: वो भी शायद आपके आसपास के ही किसी इलाके से।
1: देवेंद्र इस्सर से तो मेरी दोस्ती लगभग 70 साल की है
0: जी।
1: देवेंद्र इस्सर इंटर में थे, मैं 9th में था जब हमारी दोस्ती हुई, और ये दोस्ती काफी देर चली। हमने हर काम मिल के किया है। हमने एक पर्चा वहां से निकाला था कानपुर से
0: जी,
1: इत्तेका
0: जी
1: तरक्की सन तहरीक का पर्चा, वो एक ही शुमारा निकला। उसके बाद देवेंद्र सर 1 जनवरी 1950 को पकड़े गए तो वर्षाला बंद हो गया। उसके बाद वो 20-25 दिन बाद रिहा हुए तो वो कानपुर से दिल्ली आ गए और फिर वो यहाँ पढ़ाने लगे स्कूलों में प्राइवेट, तो बाद में सरकारी नौकरी कर ली और कुछ अच्छा बाद हम भी यहीं आ गए। फिर हमारी
0: तो आपकी मुलाकातें आप दोनों हजरात की पाकिस्तान से थी या आप हिन्दुस्तान आने के?
1: नहीं, हम लोग मैं बताऊँ, मैं 9th-10th में था, वो इंटर में थे, उनके बड़े भाई और मेरे मामू दोनों इकट्ठा कारोबार करते थे दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते थे। तो उनके थ्रू हम लोग मिले और ऐसे मिले कि मौत तक उनका साथ रहा हमारा। जब भी मौका मिलता था हम उनके पास जाते थे, वो हमारे घर आते थे। बल्कि उनके रिश्तेदार मुझे ज्यादा जानते हैं और कई वाकयात देवेंद्र सर मुझसे पूछते थे अपने बारे में।
0: उनका जो नॉवेल है खुशबू बनकर लौटेंगे, उसमें भी कुछ जाती हवाले और
1: सारे जाते ही है
0: पूरी तरह से।
1: आप पढ़िए तो आपको महसूस होगा
0: जी
1: कि वो सारी उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी बीवी की लाइफ है। इसी तरह उनका एक कुछ और अफसाने भी उन्होंने लिखे, 2 अफसाने, वो भी इसी तरह ही है जो उनकी अपनी जिंदगी। बीवी ने कहा घर से निकल जाओ तो सारा वाकया जबानी भी बताते थे, अफसाना भी लिखा उन्होंने।
0: वहां से लौटने के बाद यहाँ बहुत अहम ओहदों पर रहे, सरकारी नौकरी में रहे, आपने आजकल जैसे मौके जरीदे की इदारत भी फरमाई, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की हैसियत से भी रहे। तो आजकल की अब हम बात अगर करें तो बहुत मातबर रिसाला था और आज भी है
1: जी।
0: तो आपके तजुर्बात उस वक्त के कोई यादगार लम्हा या
1: बात हो? आजकल जो है ना हिन्दुस्तान का सबसे मकबूल तरीन रिसाला कहा जाए तो
0: नहीं,
1: और उसमें छपना जो है उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। जिसका अफसाना छप जाता था वो समझता था मैं अब एस्टेब्लिश्ड राइटर हो गया हूँ
0: जी।
1: तो आदमी की कोशिश होती थी और जोश मिली आबादी के आने के बाद उसकी और वैल्यू ज्यादा हो गई। शुरू में ये था कि अदबी पढ़ता है, अदब का कोई आदमी आना चाहिए। और उसके बाद 3 पार्टीशन के बाद 47 के बाद जो पर्चा निकला उसमें जोश साहब के साथ 3 असिस्टेंट एडिटर थे
0: जी।
1: एक थे अर्श मलजानी, एक थे बलवंत सिंह और तीसरे थे जगन्नाथ आजाद।
0: ये तीनों अदब के बहुत
1: बड़ा नाम था। तो बलवंत सिंह ज्यादा देर नहीं रुके, बलवंत सिंह इलाहाबाद चले गए, वहां उन्होंने होटल वाला खोल दिया और अपना काम शुरू किया। और आजाद साहब जो है PIB वगैरह में चले गए। और जोश साहब के चले जाने के बाद आशम सानी साहब को नेचुरली जो है वो जगह
0: की जिम्मेदारी
1: वो बन गए। तो वो आज साहब जो है एडिटर थे, शहबाज हुसैन असिस्टेंट एडिटर और मैं सब एडिटर की हैसियत से 64 में वहां आया था, फिर असिस्टेंट एडिटर हो गया। लेकिन वहां तजर्बा बहुत हुआ। एक तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि इतने लोगों से रूबरू मिलना भी बहुत बड़ी बात,
0: पैदा होना और
1: क्योंकि ये देखना और बात होता है, उनकी बातें सुनना, उनके पास बैठना। अब जोश मिली आबादी थे, जोश मिल सैनी आते थे, अब बिस्मिल सैजी आते थे, किशन चंद्र आते थे, सारे जितने लिखने वाले बड़े बड़े नाम है वो राजेंद्र सिंह बेदी आते थे, इसमें चुपता ही भरा, सारे तो इनको देखने का मौका भी मिलता था। तो ये अच्छा लगता था कि हम इस जगह पर आजकल मिले हैं और आज भी लोग आजकल के नाम से ही। अब जो है आजकल की थोड़ा सा ये बदल गया, अब वो सरकारी लेवल तक हो गया। अब ये नहीं देखा जाता अदब में इसकी क्या पोजीशन है। अब ये है कि जो दफ्तर में सीनियर आया है या जो है वही चल रहा है।
0: ये जो आपके तजर्बात रहे इन्होंने आपको आलमी उर्दू अदब की इदारत में काफी मदद की होगी।
1: जिस तरह से मदद ये हुई है कि मुझे पता है पर्चा निकालने के बाद लोग बंद कर देते हैं, मैंने भी 5 शुमारे या 6 निकाल के नई कहानी को बंद किया। तो ये मैंने बहुत सोच के निकाला कि ऐसा पर्चा हो दूसरे पर्चों से मुख्तलिफ हो
0: जी
1: और बंद नहीं होगा चाहे कुछ भी हो। और मैं बताऊं आपको, मुझे इश्तेहार दिया शर्मा वालों ने, बैक साइड पे इश्तेहार भी दिया है, इसी वजह से उन्होंने कहा यार ये एक नेक काम कर रहा है। तो 3-4 इशू में शर्मा का इश्तेहार,
0: आपके कामों के तो सब कायल हैं और
1: शर्मा वाले इश्तेहार नहीं देते, पैसे जो भी दिए इश्तेहार छापा।

0: सिर्फ इस पति में मैंने पहली बार ये सोची है कि मैं बंद नहीं होने दूंगा जब तक मेरा हाथ पांव काम कर रहे हैं, मेरा सहन काम कर रहा है, दबाव और जिस्म काम कर रहा है, तो मैं ये पर्चा बंद नहीं होने दूंगा। जैसे भी हो मैं इसे निकालूंगा।
1: खुदा आपको आपके अर्दों में कामयाब।
0: इस वजह से मैं इसे कायम रखे हुए हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं किसी को पैसे भी दे के कह सकता हूँ यार तू मेरी तरफ से निकाल के दिखा, लेकिन वो दो तीन पर्चे निकाल के पैसे खा पी जाएगा। कोई इसमें जुनून है, सोधाई पन्ना है, आप निकालते हैं जब तक आपको लगन ना हो, दीवानगी ना हो, जुनून ना हो, पर्चा नहीं निकलता। तो इस पर्चे में बहुत सी चीजें मैंने ऐसी, एक तो जल्द वाला किया, क्योंकि आमतौर पर पर्चे जो साइज होता है वो लोग पढ़ के फेंक देते हैं, ये किताबी डिमाई साइज का है तो ये लोग संभाल के रखते हैं, जल्द होती है। अच्छा, इसमें अदीबों को मैंने अल्फाबेटिकली किया है रोहित तहजी के लिहाज से, क्योंकि आमतौर पर शिकायत की जाती है कि यार मेरा नाम नीचे आ गया उसका ऊपर आ गया। तो बहुत से अदीबों ने आजकल के जमाने में, एक साहब ने तो मुझे बुला के पूछा था कि भाई इसका नाम ऊपर क्यों दिया है। तो इन सब बातों को सोचते हुए मैंने रुख तहजी के लिहाज से पर्चा जो है वो निकाला ताकि किसी को शिकायत ना हो। अब उसमें अहमद नदीम कासमी हमेशा ऊपर रहेंगे और वही जागा नीचे जाएंगे
1: जी।
0: तो इस तरह जो है
1: ये सिलसिला आपका जारी है और खुदा करे जारी रहे। जब से मैं ये रिसाला देखता रहा हूँ आपका, मुझे अंदाजा है कि इसमें आप दुनिया के तमाम गोशों से जो उर्दू के लिखने वाले हैं उनकी तख्लीकात को, उनकी तहरीरों को जमा करते हैं, और आपके रिसाले के पढ़ने वाले सरहद के पार भी बहुत हैं, पाकिस्तान में भी काफी बड़ी तादाद में आप भेजते हैं, तो जो लोगों के रिस्पांस आते हैं, जो तासुरात मिलते हैं, उनसे भी यकीनन आपकी हौसला अफजाई मैं कह लूं इसे, या जो कुछ, चूंकि आप अपने जज्बे के तहत काम करते हैं जैसा कि आपने अभी फरमाया, ये अदब की दुनिया सिमटती हुई लगती है, चूंकि जो छपे हुए लफ्ज हैं शायद अब उनकी तौकीर में कहीं कोई कमी आ रही है, चूंकि लोग अब नेट के जरिए और दूसरे वसायल से पढ़ने के आदी हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है?
0: नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग आज भी किताबें जो है खरीद के पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मजा नहीं आता वो इलेक्ट्रॉनिक जो है, सारे वेबसाइट पे पढ़ते आ गए हैं, लेकिन उन पर्चों को वेबसाइट पर पढ़ा नहीं जाता उस तरह। ये तो आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, जब जी चाह एक चार समय पढ़ ले थे, तो इसलिए जो इसकी प्रिंट मीडिया की अहमियत खत्म नहीं हो सकती।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, और हम भी दुआ करते हैं कि उसकी अहमियत खत्म ना हो। आपकी अहमियत का और जो आपकी वकी नजर है और जिस तरह से आपने लगन और जुनून के साथ काम किया है, उसका एतराफ करते हुए कई इदारों ने आपको इनामात और एजाजात से नवाजा है। अभी शायद हाल का जो सबसे हाल का एजाज है वो दोहा कतर अवार्ड है, जहां तक मुझे याद आता है। तो इनामात और एजाजात इंसान के कामों के लिए किस हद तक इंसेंटिव का काम करते हैं, या उसमें कुछ अलग तरह के कुछ नेगेटिविटी भी होती है, या उसको बिल्कुल हमें बहुत मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए?
0: देखिए, हर चीज की वैल्यू जो है टाइम के लिहाज से होती है
1: जी।
0: जैसे आपका पहला मजमू छपे, आप उसे बांटने में
1: जोश और खरोश से
0: लोगों को जाके देते हो, दूसरा होता है तो थोड़ा पीठ कम हो जाती है। ऐसे ही अवार्ड जब मिलते हैं, एक दो मिलते हैं ठीक लगता है, लेकिन जब भी मिलता है अवार्ड तो अच्छा ही लगता है।
1: अच्छा लगता
0: है। दो हफ्ते से भी मिला, लाइफ अचीवमेंट मुझे तुर्की से मिला है, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता से भी मिला है, अभी एक तामंच वालों का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, तो गालिब अकेडमी का भी मिला है, इस तरह सारे ही लगभग मिले हैं, उर्दू अकेडमी का भी है, गालिब इंस्टीट्यूट का भी है।
1: हम दुआ करते हैं कि आपको और ज्यादा इनामात और एजाजात मिले, खुदा करे, और बहुत सारी खुशियां तख्लीक के जरिए भी आप तक पहुंचती हैं, और आप जो अपने कारीन के लिए पेश करते हैं उनकी जो खुशियां होती हैं वो भी आपके खजाने में शामिल हो जाती हैं। हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। आपकी कई किताबें मंजरे आम पर आ चुकी हैं, यादों के खंडर 1980 में ही आई, 19वां अध्याय आया, ये आपकी एक तरह की तजियाती खुद नविश्त है, आवारा गर्द आपके अफसानों का मजमुआ है, फिर आधा सच, मसब्बत तस्करे, और जो ताजा तरीन किताब है आपकी, मैं उसके हवाले से भी आपसे दो चार बातें करना चाह रहा था, वो है भूले बिसरे मुजाहिदीन, जो भी पिछले साल शाया हुई
0: है। दरअसल मेरा जो है आजादी के मूवमेंट से थोड़ा बहुत हिस्सा रहा है, क्योंकि मेरे घर से मेरे मामू जो थे वो जेल चले गए थे 42 में, तो उससे थोड़ा असर तो पड़ता ही है। मैं उनके साथ रहता था, उनके साथ लोग आते थे मिलने वाले, जो ज्यादातर जो है डिजिटल हमारे हिंद के होते थे, एनआरआई होते थे, कांग्रेस के होते थे, तो इस तरह के लोगों से मिलना जुलना वहां रहा।

0: मैंने देखा कि लोग बड़ी मेहनत भी करते थे, तो वहां पे हमारे कॉमरेड अजीज थे, वो इलेक्शन में खड़े हुए हार गए, लेकिन उस आदमी ने बड़ा काम किया।
1: वहां पे से आपकी मुराद, माफ कीजिएगा, मैं
0: वहां से हमारा रावलपिंडी
1: जी।
0: तो रावलपिंडी में इस तरह के लोग थे और सभा सारा भरा हुआ था, जहां इतने लोग थे, मतलब फ्रीडम फाइटर मुजाहिदीन आजादी कि और किसी सूबे में शायद ना हो, अगर सूबे के लिहाज से देखा जाए
1: जी।
0: तो उन लोगों को मैंने सोचा कि इतने लोग थे, उनका कोई नाम भी नहीं लेता,
1: जो गैर मुंतसिम हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने जंग लड़ी,
0: बहुत बड़े। अब एक अब्दुल रहीम पोपल नहीं थे कॉमरेड, वो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, आचार्य नंदन देव के साथी थे, मजे की बात है वो मुफ्ती भी थे, मगर लोगों को फतवे भी देते थे
1: जी,
0: और सोशलिस्ट भी थे, और उनका इतना था कि रूस और अफगानिस्तान में किसी को लेटर लिख देते थे तो वीजा की जरूरत नहीं होती थी, वो चिट्ठी दिखाता था ये मुफ्ती साहब की चिट्ठी है, तो वो चले जाते थे। खान अब्दुल फार खान से पहले वो सुभाष साहब के सबसे बड़े लीडर थे और सोशलिस्टों में बड़ा नाम था उनका। तो इस तरह के लोगों को लोग भूल गए। अब सही गांधी को तो सारे जानते हैं
1: जी,
0: लेकिन बलोची गांधी, अब्दुल समद, अच्छा सही को कोई नहीं जानता, वो उनसे भी ज्यादा जो है उन्होंने काम किया, अखबार भी निकाले, सब कुछ किया। तो उन लोगों को लोगों ने भुला दिया। तो मैंने तकरीबन 50-55 आदमी जो थे
1: मुजाहिदीन
0: आजादी, तो बहुत आया लेकिन उनके हालात मिलते नहीं, तो जो मिले वो मैंने बुरे विश्व मुजाहिदीन के नाम से छापी है। और ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये किताब आए, मेरी जिंदगी में दो किताबों की दिली ख्वाहिश है जो मैंने चाहे कि आए, एक उड़ीसा दया कि वो मेरा, मैं कुछ भी ना लिखूं तो उड़ीसा दया जो पढ़ेगा तो मेरे बारे में उसे सब कुछ पता लग जाएगा। तो इस तरह लोग थे
1: जी।
0: तो हमने ये किया कि ये काम अलग है, पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन मुझे करना पड़ा। वैसे मैंने किताब भेजी है वहां पे, तो एक पब्लिशर क्या तो रहे छापेंगे, छपे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मुझे बहुत अच्छी लगी है ये किताब,
1: बहुत उम्दा गुफ्तगु रही, बहुत वक्त दिया आपने, और जिस तरह तफसील से आपने तमाम अपने अदबी हवालों और अपनी सियासी सरगर्मियां और एक जंग आजादी के दौरान जो कुछ आपने देखा और महसूस किया, उस हवाले से जितनी आपने बेतकल्लुफ और अफसोसनाक भी कह सकता हूं जो मंजर वहां के थे, उन्हें आपने हमारे साथ शेयर किया, हमारे सुनने वालों के साथ साझा किया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नवाजिश,
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रूबरू, ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी हैं।

ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। सामिन अब से चंद ही लम्हों के बाद वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी पेश करेंगे मन की बात।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे

0: जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किड बैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
0: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
10: नमस्कार सर। नमस्कार।
11: नमस्कार सर।
9: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
10: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
9: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
10: नमस्ते।

0: सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10.1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं।

0: खुश थे कि हाँ चलो ठीक है आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के

बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए
लगा

लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची।

0: फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी से मन की बात। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है मन की बात प्रोग्राम का उर्दू तर्जुमा।
3: मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे लोग कौमी मफाद और समाजी भलाई के लिए ऐसी शानदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जब इनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक नई तरगीब मिलती है। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एथलेटिक्स में मुल्क की एक ऐसी ही कामयाबी से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबला मुनक्कद हुआ जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 कौमी रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने मुख्तलिफ जुमरों में नए रिकॉर्ड कायम किए। मैं सबसे पहले इन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, एक मुकाबला जिसका पूरे मुल्क में बहुत जिक्र हो रहा है वो है 100 मीटर रेस यानी 100 मीटर की दौड़। सिर्फ 2 दिन के अंदर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 मरतबा टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कारनामा अंजाम दिया है वह है गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा कि इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से गुफ्तगू की जाए।
0: अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार। सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय

0: रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूं अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा, तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: मनीष जी?
1: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूं तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेस बता दे।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरनरवीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर है, कंपटीशन के बाहर है तो हम दोस्त है, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरे प्यारे हिम्मतों, इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, इस मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए और अगर धूप में निकलना जरूरी हो तो एहतियात के साथ निकलें। इस सिलसिले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जारी करदा हिदायत को भी जरूर याद रखें। साथियों, हमारे यहां गर्मी का मुकाबला करने का एक तरीका कई दफा बावर्ची खाने में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खानों और मशरूबात का अंदाज भी बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगती है, और कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी मशरूबात का दौर। देसी मशरूबात से आप भी वाकिफ हैं, अगर आप शुमाली हिंदुस्तान जाएं तो आपको आम पन्ना मिलेगा, कच्चे आम का मजा और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ तकरीबन हर खाने की साथी बन जाती है। बिहार, झारखंड और मशरकी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोकण और गोवा में कोकम शरबत और सोन कढ़ी। जनूबी हिंदुस्तान में पानकम, نیرمور اور سمبارم، جبکہ اوڈیشہ میں بیلپنا صرف مشروبات نہیں بلکہ مقامی ثقافت اور روایت کا حصہ ہیں۔ ان سب میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اور ایک بات پر ضرور غور کیجیے گا، ان میں سے زیادہ تر چیزیں ہماری رسوئی سے نکلی ہیں، ہمارے کھیت کھلیان سے نکلی ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی بڑی برانڈنگ نہیں بلکہ نسلوں کا تجربہ اور دانائی اس میں شامل ہے۔ آپ بھی گرمیوں میں ان دیسی مشروبات کا بھرپور لطف اٹھائیے۔ ساتھیوں، گرمیوں کے ساتھ ہی گھر میں ایک اور چیز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہے آم۔ شاید ہی ہندوستان میں کوئی ایسا گھر ہو جہاں گرمیوں میں آم کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ہر علاقے کا اپنا آم، اپنا ذائقہ اور اپنی خوشبو۔ مہاراشٹر اور کوکن کا ہاپوس، الفانسو، گجرات کا کیسر، یہ تو آم رس کی جان ہے۔ اتر پردیش کا دشہری اور میری کاشی کا لنگڑا۔ ویسے لنگڑا آم کی خاص بات ہوتی ہے، پکنے کے بعد بھی اس کا رنگ اکثر سبزی رہتا ہے۔ بہار کا زردالو اپنی خوشبو کے لیے مشہور ہے۔ چوسا، مالدہ، ہر نام کے ساتھ لوگوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جنوبی ہندوستان جائیے تو بنگن پلی، توتا پوری، نیلم، ملگووا، بنگال کا ہمساگر اور اڑیسہ و آندھرا پردیش کا سون ریکھا، یعنی جگہ بدلتی ہے، آم کا روپ رنگ اور اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور ساتھیوں، آم کا یہ سفر گاؤں سے عالمی منڈیوں تک پہنچ رہا ہے۔ آج من کی بات کے ذریعے میں آم کی کاشت سے وابستہ اپنے کسان بھائی بہنوں کی تعریف کروں گا۔ آپ ملک کی زرعی معیشت کے لیے ایک آم کسان نہیں، بہت خاص ہیں۔ ایسے ہی چھائے رہیے۔ ساتھیوں، گرمیوں کے ان دنوں میں ویسے تو چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن میں ایک ایسی کلاس کی بات کروں گا جس میں آپ کا داخلہ لینے کا من کرے گا۔ ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا اسکول جہاں بچے بھی آتے ہوں، نوجوان بھی اور بزرگ بھی، جہاں کوئی فیس نہ ہو، نہ کوئی بڑی عمارت، کوئی کلاس روم بھی نہ ہو، اور سب سے دلچسپ بات وہاں کلاس دریا میں لگتی ہو۔ ساتھیوں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی کوشش ہے۔ کیرلم کے آلوا میں ساگی والا شیریل نامی ایک شخص ایسا ہی ایک سوئمنگ کلب چلا رہا ہے۔ اب تک 15,000 سے زائد لوگ یہاں تیراکی سیکھ چکے ہیں۔ ساجی جی نے معذور بچوں کو بھی تیراکی سکھائی ہے۔ اس کوشش کے پیچھے ایک دردناک واقعہ بھی چھپا ہے۔ چند سال پہلے ایک کشتی حادثے میں کئی طلبہ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس واقعے نے ساجی جی کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ان بچوں کو تیرنا آتا ہوتا تو شاید کئی جانیں بچ جاتی۔ بس یہیں سے شروع ہوئی ان کی یہ مہم۔ ساتھیو، ساجی ورا شیریل جی کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ خدمت کے لیے ہمیشہ بڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ضروری ہوتا ہے ایک اچھا ارادہ اور مسلسل کوشش۔ اسی جذبے کے پل پر ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، گزشتہ دنوں مجھے یورپ کے نیدرلینڈ جانے کا موقع ملا۔ وہاں میں کئی میٹنگوں میں شریک ہوا۔ اسی دوران ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ہر ہندوستانی کو فخر سے بھر دیا۔ نیدرلینڈ میں منعقد خصوصی تقریب میں چولا دور کی قدیم تانبے کی تختیاں بھارت کو واپس سونپی گئیں۔ اس تقریب میں نیدرلینڈز کے وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ ان تانبے کی تختیوں کی واپسی پر مجھے ملک اور بیرون ملک سے مسلسل پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں تمل برادری میں بھی اس حوالے سے خاصا جوش ہے۔ ساتھیوں، ان تانبے کی تختیوں کے بارے میں لوگوں میں کافی تجسس بھی ہے، اس لیے آج میں اس سے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ مشترک کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں 21 بڑی اور 3 چھوٹی تانبے کی تختیاں شامل ہیں۔ یہ بنیادی طور پر راجا راجندر چولا اول کی جانب سے اپنے والد راجا راج راجا چولا کے ایک وعدے کو پورا کرنے سے متعلق ہیں۔ ان میں آنی منگلم نامی گاؤں کو ایک بودھ وہار کے طور پر عطیہ کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ ان تختیوں میں چولا خاندان کی کامیابیوں کا بھی تفصیلی بیان موجود ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چولا سلطنت کی بحری طاقت کتنی مضبوط تھی۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں بھی اہم معلومات حاصل ہوتی ہے۔ چولا سلطنت کی عظیم تاریخ اور ثقافت پر ہم سب کو فخر ہے۔ ساتھیوں، ہماری حکومت بھارت کی ایسی قیمتی تاریخی وراثت کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گیان بھارتم ابھیان کے تحت

छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक अहम दरियाफ्त हुई है। यहाँ 3 नायाब तांबे की तख्तियां मिली हैं। ये पांडुवंशी खानदान के हुक्मरा महर्षि बाला अर्जुन के दौरे हुकूमत से वाबस्ता मानी जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नवेश्ताई जात 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी के हैं, यानी तकरीबन 1400 से 1500 साल पुराने। ये तांबे की तख्तियां कदीम ब्राह्मी रस्म खत और पाली जबान में लिखी गई हैं। इनसे उस दौर की हुकूमती इंतजामिया, मजहब और सकाफत के बारे में अहम मालूमात हासिल होती हैं। साथियों, हिंदुस्तानियों में फलकियात यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमेशा खासी दिलचस्पी रही है। हमारे मुल्क में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज यानी रसदगाहें मौजूद हैं। यहां हैरतअंगेज रियाजती दरियाफ्ती हुई हैं। समंदरी सफर हो, पंचांग हो या हमारे त्यौहार, इन सबका ताल्लुक आसमान और सितारों से रहा है। हमारे यहां फलकियात ने हर नस्ल में तजस्सुस पैदा किया है, इसे तहकीक और दरियाफ्त की तरफ रागिब किया है और आज के नौजवानों में भी इसके लिए काफी जोश नजर आता है। आजकल आप भी देखते होंगे कि मुल्क भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से मकबूल हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी सरगर्मियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में मालूमात मिली। यहां मुशायदाती सेशन मुनक्किद किए जाते हैं। इस इदारे ने देही इलाकों में फलकियात को मकबूल बनाने का एक मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नामी एक टीम ने 30 घंटे पर मुश्तमिल एक नहायत मुनफरिद कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात के वक्त सितारों को देखना बजात खुद एक हैरत अंगेज तजर्बा है। एस्ट्रो केरला नामी इदारा रात के मुशाहिदाती कैंप और वर्कशॉप्स का इनेकाद करता है। यहां नौजवान दूरबीन बनाना और सितारों के नक्शे इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गीर के जंगलात से लेकर कच्छ के रण तक मुताबिद फलकियाती तकरीबात मुनक्किद की हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी फलकियात के कदीम तरीन इदारों में से एक है। यहां मुशाहिदाती सहूलियात के साथ किताबें, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सहूलत भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा, जो तलबा की क्यादत में कायम एक कौमी नेटवर्क है और मुल्क भर के फलकियात और फलकी तबियात के क्लबों को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी दिलचस्पियों के लिए वक्त निकालना और मुसलसल कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि किसी फलकियाती क्लब से जरूर वाबस्ता हों और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम का भी जरूर दौरा करें। साथियों, जो लोग मन की बात प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो गुज़श्ता दिनों बहुत ज़ेरे बहस रही। इसमें कुछ लोग इंतहाई सब्र और एहतियात से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इस कामयाबी में भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस ने अहम किरदार अदा किया। ये वाकया उत्तर प्रदेश का है, जहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे वक्त भी नमामि गंगे मुहिम के तहत तैयार की गई यह एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत एहतियात के साथ डॉल्फिन को बाहर निकाला गया, उसका मायना और इलाज किया गया और फिर उसे महफूज तरीके से राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। इस तरह से कहें कि एक जिंदगी दोबारा अपने घर वापस लौट गई। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस वाकई मुनफरिद है। इसे चलते फिरते अस्पताल की तरफ तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को महफूज रखने के खसूसी इंतजाम हैं, ऑक्सीजन की सहूलत है, खसूसी स्ट्रेचर और बचाव के जदीद आलात मौजूद हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन जख्मी हो जाए, नहर में फंस जाए या दरिया से कट जाए तो फौरी तौर पर उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो सिर्फ एक जानवर या एक नस्ल को नहीं बचाते, बल्कि गंगा की हयातियाती तनव, पूरे दरियाई माहौलियाती निजाम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुदरत की एक अनमोल मीरास को भी महफूज बनाते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, आप में से बहुत से लोगों की यादें दरियाओं, तालाबों या कुओं के पानी से जरूर जुड़ी होंगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे पर खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें पूरी जिंदगी दिल में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी यादों को महफूज रखने की एक मुतासिर कुंदास्तान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी की हालत देखकर बहुत अफसरदा होते थे, क्योंकि जिस नदी

0: को उन्होंने बचपन में साफ सुथरा और जिंदा देखा था वह गुजरने के साथ प्लास्टिक और कचरे से आलूदा हो चुकी थी। गंदगी बढ़ती जा रही थी। जनाब आकाश ने फैसला किया कि वो सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत कुछ बदलने का आजम। ये नौजवान दरिया में उतरते थे, आधी घास निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक ही दिन में 50 से 60 किलोग्राम तक कचरा निकाला गया। आहिस्ता आहिस्ता मनोरमा नदी का वो हिस्सा दोबारा साफ नजर आने लगा। इस काम ने आसपास के लोगों की तवज्जो भी अपनी जानी मबजूल कराई और सफाई के बारे में अवामी शऊर में इजाफा हुआ। साथियों, ऐसी ही एक मुतासिर कुन कहानी गोवा से सामने आई है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी एक रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन मुआशरे के लिए काम करने का उनका जज्बा आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तालाब इलाके में पानी की किल्लत बहुत परेशान करती थी। उन्होंने इस मसले के हल के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे में अहम किरदार अदा किया। इससे कई घरों तक पानी पहुंच सका। जिन खानदानों को रोज पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी राहत साबित हुई। साथ ही गुज़िश्ता महीने मुझे एक बहुत अच्छा तजर्बा हासिल हुआ। इसका ताल्लुक मन की बात से भी है, इसलिए आज मैं इसका जिक्र आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। तकरीबन 3 दहाइयां पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ नौजवान तलबा भी उनके साथ मौजूद थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी तकरीबन 15 स्कूल चलाती हैं। उन्हें चेन्नई का जयगोपाल गाडोया हिंदू विद्यालय खासतौर पर नुमाया है। उनकी उबुल वतनी का जज्बा हर हिंदुस्तानी के लिए बाइसे तहरीक है। उन्होंने मन की बात से मुतासिर होकर मुल्क के फौजों के लिए ताउन का अज़्म किया। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम स्कूलों के तलबा को भी तरगीब दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह हमारे बहादुर फौजों के लिए रोजाना 1 रूपया अतिया करें, यानी एक साल में हर तालिबीन की तरफ से 365 रूपये जमा हुए। इन छोटे छोटे अतिया से तकरीबन 40 लाख रूपये जमा हो गए। गिरिजा मजी ने इस पूरी रकम का चेक मुझे पेश किया। उनसे गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि मादरे वतन भारत के लिए उनकी मोहब्बत और वाबस्तगी कितनी गहरी है। गुज़िश्ता साल ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने क्याम के 50 साल मुकम्मल किए हैं। मुल्क में तालीम और सकाफती विरसे के फरोग में इस स्कूल नेटवर्क का किरदार वाकई काबिल तारीफ है। मैं इससे वाबस्ता तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उन तलबा की भी खसूसी सताइश करता हूं जिन्होंने अपने बहादुर फौजों के लिए यह ताउन पेश किया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तहरीक देता है। कई दफा ऐसे कामों की ज्यादा तशहीर नहीं होती, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं तो ये यकीन और मजबूत हो जाता है कि मुल्क अपने लोगों की ताकत से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने इर्द गिर्द होने वाली ऐसे मुस्बित कोशिशों को जरूर देखें। जो लोग माशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनसे सीखिए और अगर मुमकिन हो तो खुद भी किसी नेक काम का हिस्सा बनिए। अगले महीने मन की बात में मजीद ऐसी ही मुतासिर कुन कहानियों के साथ मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात का उर्दू तर्जुमा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। एटमी तवानाई की बैन अलावा एजेंसी IAEA ने यूक्रेन के जेपरोजिया न्यूक्लियाई बिजली प्लांट पर हुए ड्रोन हमले पर तश्वीश जाहिर की है। आलमी इदारे सेहत WHO के सरबराह ने कांगो में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद करने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। कोलंबिया में 8 सदारती इंतखाबात होंगे। और बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बुहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने जारी मौसम गर्मा के दौरान मुल्क के लोगों से बेहद एहतियात बरतने और इस बारे में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी रहनुमा खतूत पर अमल करने की अपील की। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान आज वजीर अजम मोदी ने कहा कि लोग बाहर धूप में निकलते वक्त पीने का पानी साथ रखें और एहतियात बरतें। वजीर अजम ने मशवरा दिया कि लोग आम पन्ना, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, संबरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे मौसम गर्मा के रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल करें, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी से बचने के लिए रिवायती अंदाज में बनाए जाते हैं। आम का हवाला देते हुए वजीर अजम ने कहा कि हर खित्ते के अपने आम होते हैं, उनका अपना जायका और अपनी किस्म होती है। वजीर अजम ने आम के मुख्तलिफ अकसाम का जिक्र किया, जिनमें काशी का लंगड़ा, महाराष्ट्र का अल्फांसो, गुजरात का केसर और मगरबी बंगाल का हिमसागर शामिल हैं। म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बौद्ध गया पहुंचे और महाबोधि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम लैंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरी न दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेन्द्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राबतों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एटमी तवानाई की बैन अलावा एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने यूक्रेन के जेपरोजिया न्यूक्लियाई बिजली प्लांट की टरबाइन इमारत पर कल हुए ड्रोन हमले पर तश्वीश जाहिर की है। IAEA ने कहा है कि उसे प्लांट की जानिब से इत्तला मिली कि दिन में टरबाइन इमारत को ड्रोन हमले का निशाना

0: एटमी तवानाई की बैन अलाक्वामी एजेंसी IAEA ने यूक्रेन के जेपरोजिया न्यूक्लियाई बिजली प्लांट पर हुए ड्रोन हमले पर तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारे नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम, मिले सुर मेरा तुम्हारा।

राजमहल फिल्म का दो गाना अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना, और अगली पेशकश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यह नगमा हमने रोटी फिल्म से लिया है।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का नगमा भी आपने सुना। मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है दादू दयाल द्रौपद।
1: नानक और संत कबीर ने हिन्दुस्तानी जहन को इत्तेहाद युगान्वित का जो दर्श दिया उसका तासीर पूरे हिन्दुस्तान की तहजीब में तहरीर हुआ। मुश्तरका तहजीबी और रूहानी अकदार की लाजिम शान रवायत कई सदियों से हिन्दुस्तान में परवान चढ़ती रही और इत्तेहाद इत्तेफाक के नजरियात हिन्दुस्तानी अवाम का मिजाज बन गए। 12वीं सदी से यह तहरीक शुरू हुई और बाद के जमाने में इसे गैर मामूली उरूज हासिल हुआ। हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूफी संतों के इन अकबाल और नजरियात को फरोग देने के लिए दूसरे संत और सूफी वजूद में आए। 16वीं सदी में ऐसे कई अहम संतों और सूफियों के तारीख साज नाम मौजूद हैं। 16वीं सदी के इन बुजुर्गों में दादू दयाल का नाम खसूसियत के साथ काबिल जिक्र है। दादू दयाल मारवाड़ के एक देहात नारायणा में पैदा हुए। आबाई पेशे के एतबार से वो नदाफ थे। उनका पहला नाम महाबली था और अपनी पहली बीवी के मरने के बाद उन्होंने दुनियावी मशागिल तर्क कर दिए थे और संत कबीर के सिलसिले के एक संत कमाल के शागिर्द बन गए थे। दादू दयाल ने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा राजपुताना में गुजारा और वो अजमेर और दिल्ली के अलावा दीगर मकामात पर भी गए। कहा जाता है कि उन्होंने अकबर से भी मुलाकात की थी। सन 1603 में नारायणा में ही उनका इंतकाल हुआ। दादू दयाल ने रूहानी वहदत के पैगाम को अपने अशार के जरिए आम किया। उनकी शेरी तसनीफात 5000 अशार पर मुश्तमिल है। तमाम अशार मुख्तलिफ मजहबी मसाइल से मुतालिक है। उनकी जबान ब्रज भाषा और राजस्थानी की मखलूत बोलियों की है। बाज अशार पंजाबी में है और कई अशार रेख्ता और बिगड़ी हुई फारसी में भी है। दादू दयाल अगरचे बाकायदा तालीम याफ्ता न थे लेकिन कबीर की तरह उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम सूफी संतों की सोहबत से इल्म हासिल किया था और अपने अशार में रूहानी तसव्वुरात को इंतहाई आलिमाना अंदाज में पेश किया था। अपने एक शेर में उन्होंने माबूद की तारीफ करते हुए कहा है, वो एक है जमाल का खूबसूरत जलवा हैरत अंगेज है, जाने सरशारी पीना ताज्जुब खेज है। दादू दयाल मजहब को तासुब का सबब नहीं समझते थे बल्कि मजहब के दरमियान बुनियादी सदाकतों के मुतलाशी थे। अपने एक दोहे में उन्होंने कहा है, दादू उसके वजूद का हौज दिल के अंदर है और वहीं मैं अपना पूरा वजू करता हूं, अल्लाह के सामने वजू करके मैं अपनी नमाज अदा करता हूं। दादू दयाल के मजहबी ख्यालात उनके दोहों से नुमाया है। उन्होंने अपने वजूद को मस्जिद से और अपने जिस्म को तस्बीह से ताबीर किया है। दादू ने अपने पेशवों से ज्यादा तसव्वुफ की मालूमात का इजहार किया। उन्होंने अपने मुर्शिद कमाल से तसव्वुफ की बाकायदा तालीम हासिल की थी।

0: अलका याग्निकर कुमार सानू की आवाजों में साजन फिल्म के इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
2: सभी को मेरा नमस्कार।
1: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
2: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक है उनमें क्या प्रगति हुई है उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है। हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का और जो हमारी ANM बहने बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं तो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्टनेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो इतनी समस्या रहती है उसमें काफी कमी आई है। तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है। 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ है, PM जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
2: हाँ, तो पहले मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं। और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे। अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए एनसीडीज हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं। और
1: अभी आयु वर्ग
2: मुझे खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ आ गया, उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स ऑथराइज हुए हैं। और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है। और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे PM जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, PVTGs, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो। और वहां पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहां पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO है, वहां पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन, आधार, मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं,
2: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, उसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 1-44-16, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है, उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो डाल के हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके NHM के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे MMR कम करने की बात हो या under 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा UVIN पोर्टल है, तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है, तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर दे तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए, तो ये रिमाइंडर भी जाता है।

0: डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल से एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं, टीबी का निक्षय पोर्टल है। तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाहें कि मरीज तो एक है, उसको तीन प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो दो महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है, तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है, तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो एनपीएनसीडी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और तीन प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस पीएमजे के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा एफएसएसआई के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं जिसमें योगा, जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में, आशा बहने उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग हलेंग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबौद्धि मंदिर में पूजा की। एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी यानी IAEA ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर बिजली प्लांट पर हुए ड्रोन हमले पर तशवीश जाहिर की है। आलमी इदारे सेहत WHO के सरबराह ने कांगो में एबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद करने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। कोलंबिया में आज सदारती इंतखाबात होंगे और क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: और ध्रुव चटर्जी ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है। शंकर जयकिशन साहब ने संगीत दिया है और 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी क्या है और इस फिल्म में गिरवीना कुमारी, गुरुदत्त महमूद साहब

शुदा खोटे का कैसा किरदार है, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों, इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने डॉक्टर शंकर चौधरी का किरदार निभाया है, वहीं मीना कुमारी जी ने गौरी का रोल प्ले किया है। महमूद साहब प्रकाश का अभिनय किया है और शोभा खोटे ने राधा का किरदार निभाया है। और इस फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो डॉक्टर शंकर चौधरी अपने विधवा मां रुक्मिणी और छोटी बहन मंजू के साथ बॉम्बे में एक शानदार लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली में जी रहे होते हैं। उनकी मां चाहती है कि उनकी शादी यानी डॉक्टर शंकर चौधरी यानी गुरुदत्त साहब की शादी अम्बाला स्थित एडवोकेट मधुसूदन की बेटी माया से हो जाए, भले ही दोनों में से किसी ने उसे देखा न हो। शंकर इस शादी के लिए सहमत भी हो जाता है और शादी हो भी जाती है, लेकिन इसके बाद अचानक दुल्हन जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है शादी की और उसके बाद अचानक वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न आते हैं आपको हम बताएंगे। उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक और प्यारा सा नगमा।

तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी खो नहीं जाना है, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहना है और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत भी कराना है। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं और जो हमें पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप इस कार्यक्रम में और क्या इंक्लूड करना चाहते हैं और क्या जोड़ना चाहते हैं, आपकी क्या सुझाव हैं या शिकायत है, कुछ भी, वो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। और हमारा ईमेल पता है ipradiodelhi@gmail.com और हमारे पास आपके मेल आने शुरू भी हो गए हैं। एक ये मेल आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का, और इन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत फिल्म सांझ और सवेरा की कहानी सुनकर बेहद ही अच्छा लग रहा है। और जो आप जानकारी दे रहे हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में बता रहे हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया है। इस फिल्म की कहानी और सारे गीत हम आपके द्वारा सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब इस कहानी के बारे में बात करते हैं कि फिर इस कहानी में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो दुल्हन है यानी मीना कुमारी जी, वो अचानक डिवोर्स हो जाती हैं और उनकी देखभाल के लिए उनके चचेरे भाई प्रकाश और मधुसूदन आते हैं और इसके बाद वो ठीक भी हो जाती है। अगले दिन वह शंकर के साथ उनके घर जाती हैं और पहली रात वो उसे बताती हैं कि चूंकि वो एक पवित्र उपवास कर रहे हैं, इसलिए वह किसी भी तरह का जो होता है कि शादी के बाद गोल्डन नाइट यानी जो कहते हैं ना कि सुहाग रात, उसको वो नहीं मनाना चाहती हैं। शंकर मान भी जाते हैं और उनके साथ अगले दिन भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं और फिर से शादी करते हैं। इसके बाद क्या होता है इस फिल्म में, ये हम आपको बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

दोस्तों सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फ्रेम से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ और आज की हमारी फिल्म है सांझ और सवेरा। इस फिल्म की कहानी हम आपको इस गाने से पहले बता रहे थे तो आगे बढ़ते हैं। और इस कहानी में एक दिन ये होता है कि शंकर प्रकाश और माया दोनों को खोजने के लिए घर आता है, उन्हें ढूंढता है लेकिन उनका पता नहीं लगा पाता है। और उसके अगले दिन उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला दरअसल मधुसूदन की बेटी नहीं है और हो सकता है कि वो प्रकाश के साथ कहीं भाग गई हो, जो उसका भाई भी नहीं है, प्रेमी भी नहीं है, तो आखिर कौन है। और फिर कुछ इस तरह से इस फिल्म में नाटकीय मोड़ आते हैं, घटनाएं घटती हैं कि दर्शक उनमें से उलझ सा जाता है। और इसी खोज के बाद शंकर और उनके परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि इस फिल्म के जो कहानी का परिणाम है, कंक्लूजन है, वो हम आपको बता दें, नहीं तो फिल्म देखने का आनंद नहीं रहेगा। इसलिए इस कहानी की जो प्रमुख बातें हैं वो तो हमने बता दिया, लेकिन इस कहानी का परिणाम यानी अंत में इस फिल्म में क्या होता है वो हम आपको नहीं बताने वाले। उसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं, क्योंकि 1964 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाने जाने वाली मीना कुमारी ने एक समर्पित त्याग करने वाली पत्नी का किरदार बेहद ही सरलता, सहजता और भावुकता के साथ निभाया है। और वहीं दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त साहब की आखिरी फिल्मों में से एक ये फिल्म थी सांझ और सवेरा। उनका अभिनय भी सदा की तरह बेहद ही प्रभावशाली और गरिमामयी है। इसी बीच आपके कुछ मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। तो एक मैसेज आया है अनिल मोहन पीटीआई संसद मार्ग से और इन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, हमारी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अनिल मोहन जी। इसके अलावा ओम प्रकाश राय साहब का भी एक मैसेज आया है, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से। और इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून, और इस फिल्म के सभी गाने बेहद दिल को छू जाते हैं, आपके शानदार प्रस्तुति है, और हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी बहुत बहुत आभार और आपको भी धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक और मैसेज छत्तीसगढ़ से आया है, जिला बालोद से, देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमा बाई का ये मैसेज आया है। और इसके अलावा रोहित वशिष्ठ का मैसेज आया है, खजाना गेट अमृतसर से। आप सब लोगों के मैं नाम जल्दी जल्दी से ले लेता हूं। और ये हमारे नियमित श्रोता हैं, देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामरिया, राधिका और प्रभा देवी का। और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और इन्होंने एक रेडियो श्रोता संघ बना रखा है, कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए और आकाशवाणी से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उनका आनंद उठाइए और समाचार भी सुनते रहिए। देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आकाशवाणी के माध्यम से आपको जानने को मिलता है। और अभी तो हमारी आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा भी पूरी हो चुकी है और ये 90 वर्ष की यात्रा अनवरत रूप से आगे भी जारी रहेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए और जन जन की वाणी है ये आकाशवाणी और इसके कार्यक्रम सुनते रहिए।
आगे बढ़ते हैं आपको इसी फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फ्रेम से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ और आपके संदेश लगातार ईमेल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ संदेश और ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, राजस्थान भोपालगढ़ धर्मेंद्र कपिल पूजा परिहार इनका मैसेज आया है और इन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ की है। इसके अलावा हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और एक ही फिल्म से कार्यक्रम की बहुत ही शानदार प्रस्तुति है आपकी और बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इन्होंने ये लिखा हुआ है। और दोस्तों एक और गाना मैं आपको इस फिल्म से सुनवाना चाहता हूं क्योंकि ये एक टाइटल सॉन्ग है और अच्छी बात यह है कि अब हमारे इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अभी अच्छी बात है या नहीं है ये तो हमारे श्रोता बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या है ना कि समय के साथ चलना होता है और हर एक कार्यक्रम हर एक प्रोग्राम हमारे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है। तो अब अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी कार्यक्रम में आपके साथ इसी चैनल में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: पहला इस बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी उत्ते अपने प्रोग्राम मन की बात विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिया देशवासियों नूं गंभीर गर्मी के मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की। लेफ्टिनेंट जनरल एमएस राजा सुब्रमण्यम ने अज देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज के अगले मुखी वजों अपना अहुदा संभाल लिया। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रहवाड़े लिए पेट्रोल डीजल के हवाई इंजन उत्ते बरामदी महसूल च छूट की है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल च अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मौजूदा गंभीर गर्मी के मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की। आकाशवाणी उत्ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच उन्होंने लोगों को घर तो बाहर निकलने से पहले वक्त-वक्त पानी पीने अते सूरज तो बचाव करने लई सुरक्षा मापदंड अपनाने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मिस्टी सत्तू शरबत बेल पन्ना के शरबत पीना गर्मी तो राहत बनाने लाभदायक ने। उन्होंने कहा कि यह पीने वाले पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और पीढ़ियों के तजर्बे को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिमी बंगाल के हिमसागर अंब बारे गल करदे कहा कि हर इलाके के अंब का स्वाद वक्रा होता है। श्री मोदी ने अंब की खेती में शामिल किसानों के योगदान की भी शलाघा की। उन्होंने कहा कि अंब की यह यात्रा हम पिंड को विश्व बाजार तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि किसान खेतीबाड़ी के अर्थचारे लिए बहुत खास है।
1: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रही है।
0: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल काल दी प्राचीन तांबे दी तख्तियां भारत में वापस दिखाई ने। इस पर दुनिया भर के तमिल भाईचारे च उत्साह पैदा होया है। उन्होंने कहा कि तख्तियां चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों नाल इसके संबंधों को दर्शाउंदियां ने।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कुम्हार विचों गंगा डॉल्फिन में बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिता। उन्होंने कहा कि नमामि गंगा मुहिम तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने एक अहम भूमिका निभाई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एमएस राजा सुब्रमण्यम ने अज किसान के विचारों और कार्रवाई की नवीनता फौजी समर्था के विकास को अगे वधाई। देश के नए सीडीएस जो अहुदा संभालने के बाद मीडिया को संबोधन करते हैं जनरल सुब्रमण्यम ने कहा कि हथियारबंद बलों, सेना, अकादमिक संस्थान, स्टार्टअप और खोज प्रणाली दरमियान वधेरे सहयोग आधुनिकीकरण लई सहाई होगा। उन्होंने फौजियों, मलाहों और हवाई योद्धा की बहादुरी के पेशेवाराना योगता की भी शलाघा की। सबका फौजियों और वीर नारियों की भलाई लिए हथियारबंद बलों की वचनबद्धता को दोहरादे उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि हथियारबंद बल समर्पण, सम्मान और पेशेवाराना ढंग देश की सेवा करते रहेंगे। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज समुद्री फौज के 7वें मुखी वजो कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की थान ली। एडमिरल स्वामीनाथन ने दसवा के चुनौतीपूर्ण और दिल यकीनी के बावजूद समुद्री फौज सरगर्म तौर पर तैनात है। उन्होंने कहा कि समुद्री फौज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसमें सब तो उच्चे पद्धर की युद्ध समर्था नाश किया जाएगा। इस मौके अहुदा छड़ रहे जल सेना मुखी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि देश की समुद्री फौज की अगुवाई करना उन्होंने माण वाली गल रही है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।

0: for the text generally at the rate AIRRNG Jalandhar. So the Facebook page is RNG-AIR Jalandhar. The YouTube to Sada channel is at the rate AIR Jalandhar. केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रहवारे में पेट्रोल डीजल और हवाबाजी ईंधन के बरामदी महसूल खोज की थी। इस कदम का मकसद पश्चिमी एशिया संकट से पैदा हुई अनिश्चितता दरमियान पेट्रोलियम उत्पादों की लोड़ी घरेलू उपलब्धता को यकीनी बनाना है। वित्त मंत्रालय वालों जारी नोटिफिकेशन अनुसार पेट्रोल की बरामद उत्ते प्रति लीटर 1.5 रुपए ड्यूटी लगी गई जबकि डीजल की बरामद उत्ते 13.5 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी तय की गई। हवाई ईंधन उत्ते बरामदी महसूल 9.5 रुपए प्रति लीटर होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बरामदी महसूल जिस विच खास वाधू आबकारी ड्यूटी और सड़क से बुनियादी ढांचा टैक्स शामिल ने इस साल 2 मार्च में लागू किए गए सन। कच्चे तेल पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन दौस्त कौंतरी कीमतों के आधार पर हर पंद्रहवारे इन्हों की समीक्षा की जाती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत में पेट्रोल और डीजल के मौजूदा आबकारी महसूल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता अहिल्या बाई होलकर की जन्म वर्षगांठ मौके उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट राही उन्होंने कहा कि देश अहिल्या बाई होलकर की विलक्षण सूझबूझ दया भावना से लोक भलाई प्रति अटुट समर्थन लिए हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहिल्या बाई होलकर का जीवन सुशासन देशभक्ति और सभ्याचारक विरासत के मान का प्रेरणादायक ऐसा उन्होंने हमेशा हिम्मत दृढ़ता और फर्ज निभाने की भावना अगवाई की। दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन नेड़े कल शाम 4 मंजिला व्यापारक इमारत ढह गई। 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स मुताबिक 11 पीड़ितों में जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रामा सेंटर से दाखिल करवाया गया। इन्होंने 3 मृतक ऐलान दिया गया है और 5 मरीजों की हालत स्थिर है। 3 व्यक्तियों को इलाज मगरों छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अजिहिया सारिया अनाधिकारित इमारतों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवी ते नवयानवीं ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 1 महीने की 29 तरीक में देश के 15,000 छतों उत्ते सोलर पैनल लगाए गए सन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तहत 1 दिन च सोलर पैनल लगाने का रिकॉर्ड है। सब तो वह पैनल महाराष्ट्र च लगाए गए और गुजरात तो बाद महाराष्ट्र देश का दूजा सूबा बन गया है जिथे हुण तक 6 लाख तो वध छतों उत्ते सोलर पैनल लगाए जा चुके ने। मौसम विभाग ने अज ते कल लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के वक्त वक्त हिस्सों च गरज चमक नाल तेज हवा चलन संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे पंजाब और हरियाणा च कई थावां ते गरज चमक ते तेज हवावां नाल हल्की तो दरमियानी बारिश हुई है जिस नाल तापमान च गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी तो कुछ राहत मिली है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल के मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस नाल होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम च शामी 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबर एक बार फिर सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम च राष्ट्रीय संबोधन करदिया देशवासियों ने गंभीर गर्मी के मौसम दौरान बेहद सावधानी बरतन और सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस बाला सुब्रमण्यम देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन ने समुद्री फौज के अगले मुखी वजह अपना अहदा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रहवारे में पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन उत्ते बरामदी महसूल च खोज की है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल च अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस नाल होगा। इसके नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेश खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 बजे से होगा। श्रोतिया सूचित किया जाता है कि आकाशवाणी का शामी 7:30 बजे तो 7:40 बजे तक प्रसारित होने वाला खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन 1 जून 2026 तो 21 जून तक शामी 7 बजे तो 7:10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकाम

0: को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर के ताबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रियायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम के मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भारतीय मुसलह अफवाज मुल्क के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है, साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुजाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना कर रही है। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मुकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक अहम दरियाफ्त के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वहां छठी और सातवीं सदी के पांडुवंशी खानदानी सिलसिले के महर्षि बलार्जुन से वाबस्ता ताबे की तीन कामयाब तख्तियां पाई गई हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: वज़ीरे आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तذکرہ किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम ताबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग खासतौर पर इस बारे में जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहां तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीना चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रवायती अंदाज से बनाए जाते हैं।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: आम का तस्करा करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर बेशतर बात होती है, वजीर आजम ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफर अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुंच रहा है।

0: अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरिंदर वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस्वीन शंकर, देवमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तस्करा किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाजे फिक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और अवाम की फलाह बहबूद के तई गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। जनूबी दिल्ली में कल शाम साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक कमर्शियल इमारत के ढह जाने से 3 अफराद की मौत हो गई और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 जख्मी अफराद को इलाज के लिए लाया गया, इनमें से 3 को मुर्दा करार दिया गया। इधर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज जनूबी दिल्ली में उस मुकाम पर गई जहां ये वाकया पेश आया था। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की ताबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम के मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भारतीय मुसल्ला अफवाज मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय

0: सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो मंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों

0: की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल में सेलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: गुरिंदरवीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने भीड़ के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है, इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, राजनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है, हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडनु मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकनैक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है 2:30 और 15 सेकंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार आदाब, हाजिर है एक बार फिर आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। और हमारे आज के

कलाकार हैं बॉलीवुड की एक बेहद प्रसिद्ध और सफल संगीतकार जोड़ी आनंद मिलन। असल जिंदगी में आनंद श्रीवास्तव और मिलन श्रीवास्तव सगे भाई हैं और साथ ही वो 1960 के दशक के मशहूर संगीत निर्देशक चित्रगुप्त के बेटे भी हैं।

जी हाँ, जुड़ चुके हैं आप अपने मन पसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। तो ट्यून किया है आपने जब अपना मन पसंद चैनल, तो फटाफट भेजिए अपनी ईमेल हमारे ईमेल के जरिए। हमारा पता है आकाशवाणी दिल्ली IPRadioDelhi@gmail.com और भेजिए अपनी प्रतिक्रिया अपनी ईमेल के जरिए।

जी हाँ, दिल से दिल मिल चुका है हमारा आपका, क्योंकि हमारा आपका है पुराना ये नाता ये रिश्ता, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर और कार्यक्रम है आपका हमारा फेवरेट एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं आनंद मिलन। तो गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार में, जिसे प्रस्तुत कर रही है आपकी अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी। हमारे आज के कलाकार हैं आनंद मिलन, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल संगीतकार जोड़ियों में से एक है। इस जोड़ी में आनंद श्रीवास्तव का जन्म 21 दिसंबर 1958 और

और मिलन श्रीवास्तव का जन्म 31 मई 1959 को हुआ था। इस जोड़ी ने 90 के दशक में 200 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया। जी हाँ, 200 से अधिक फिल्मों के लिए और कई ब्लॉकबस्टर गाने बनाए। तो ऐसा ही एक गीत, नंबर वन गीत यहाँ सुनना तो बनता है ना दोस्तों, क्योंकि क्योंकि क्योंकि

भाई जुड़ चुके हैं आप अपने नंबर वन फेवरेट चैनल इंद्रप्रस्थ से और इस खूबसूरत से नंबर वन गीत को सुन रहे हैं आप अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से और कार्यक्रम का नाम एक ही कलाकार और ऐसे नंबर वन गीत को अपने खूबसूरत संगीत से सजाया आनंद मिलन की जोड़ी ने जो है हमारे आज के कलाकार।

साथियों, अगर बात करें उनके शुरुआती जीवन के बारे में तो आनंद मिलन का जन्म संगीत के एक संपन्न परिवार में मुंबई में हुआ था। यद्यपि उनके पिता चाहते थे कि उनके बेटे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं, लेकिन घर में जब संगीत में माहौल हो तो मन तो संगीत में ही रमता है ना भाई, और उसी ओर दोनों भाइयों को भी प्रेरित किया। आनंद गिटार बजाने में माहिर थे तो मिलन पियानो बजाने में कुशल, और फिर वही हुआ, संगीत की ऐसी अविरल रसधार बही जो बहती ही चली गई।

वही एक से एक बढ़कर सुपर डुपर हिट संगीत करने वाले देने वाले ऐसे मशहूर फनकार जोड़ी ने फिल्म 1984 में अब आएगा मजा से संगीतकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करी। अपने शुरुआती दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा अपने पिता के भी सहायक के तौर पर उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। 1988 में मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक से इनको बहुत बड़ी सफलता मिली, या यूं कहें कि जिसने इस जोड़ी को रातों रात स्टार बना दिया। भाई इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद फिल्मों की लाइन ही लग गई। दिल बेटा संगीत, आई मिलन की बेला, धनवान लव, आई मिलन की रात और भी कई फिल्मों के लिए, लोकप्रिय फिल्मों के लिए इन्होंने संगीत दिया।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

वही हमारा तो यही सपना है कि हमारे श्रोताओं को खुश रखना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने पापा का नाम भी रोशन करना। तो हो सकता है कि हमारे श्रोता ये सुनकर खुश हो गए होंगे कि सबसे पहला नाम आज किसका आने वाला है। तो भाई ईमेल आपकी आ चुकी है आज के कार्यक्रम में एक ही कलाकार में। तो सबसे पहली ईमेल जो मैं आज लेने वाली हूँ वो एक ही कलाकार में आई है, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा की, कपिल चिंपा, पूजा परिहार की, जो लिखते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आज आपने बेहतरीन संगीतकार आनंद मिलिंद के बारे में बेहतरीन जानकारी दी जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती है। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति आपने दी, आपने बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही। तो धन्यवाद साथी आपका कि आपने इतने अच्छे से कार्यक्रम को सुना। अगला ईमेल आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, जो लिखते हैं आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक ही कलाकार प्रोग्राम गाना बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं अखियों से गोली मारे डिस्काउ। तो भाई धन्यवाद, आपने एक ही गाना सुना लगता है भाई, आगे भी बहुत से गाने सुनवाए। अगली ईमेल आई है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की, नमस्कार जी, प्रोग्राम एक ही कलाकार में गीत व जानकारी पसंद आ रही है, शानदार प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी आपका भी धन्यवाद। और अगली ईमेल है आरजे सरजी आदाब, तो भाई सरजी नहीं मैडम जी हैं आज प्रोग्राम में, और नाम है मेरा तृप्ति जौहरी, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन, फरहान फारिया और ताहिरा की। अगली ईमेल मैं लेना चाहूंगी देव शंकर तामुरिया जी, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली देवी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो ये भाई लिखते हैं आज एक ही कलाकार में संगीतकार आनंद मिलिंद को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इस संगीतकार जोड़ी को हम फिल्म कयामत से कयामत तक से जानते हैं जी। तो कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से आप साथियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी भाई, प्रसिद्धि ही इन्हें यहाँ से मिली। तो

तो आपकी जानकारी सुनकर पढ़कर अच्छा लगा। और अगली जो ईमेल आई है ये संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुड़ाया, जालंधर, पंजाब से। पर आपने संदेश में कुछ नहीं लिखा, तो संदेश भी अगर आप लिखकर भेजते तो हमें अच्छा लगता। इसके साथ ही हमें अगली जो ईमेल आई है, खुश रहो खुशियां बांटो, ये भाई खुशियां बांटने वाले हमारे साथी हैं, गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो भाई जब आप कार्यक्रम सुनते हैं तो कार्यक्रम के साथ अपनी जानकारी, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। और कोई भी गीत लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कोई भी गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम है एक ही कलाकार, तो उसी कलाकार के हम आपको गीत सुनवाते हैं। तो ये है अगली ईमेल, नमस्कार वडिंग खेड़ा से पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और अगली ईमेल जो हमें आई है ये है निसार अली जी की, नमस्कार आरजे जी, आपको प्लीज किसी भी गीत में शामिल करें। तो देखिए शामिल कर ली, दनारी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। तो ऐसी दुआ हम आपके लिए भी करते हैं। तो प्रोग्राम चल रहा है एक ही कलाकार, इस कार्यक्रम में आपको गीत सुनकर, संगीत सुनकर कैसा लग रहा है और कार्यक्रम सुनकर कैसा लग रहा है, बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो सुनकर हमें अच्छा लगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए विदा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे भेंट, तब तक के लिए अलविदा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएफ

0: इंडियन रेलवे गजारी के तरकीन वर्ड्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चौला दौर के तांबे की तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि भारतीय मुसल्ला फौज मुल्क के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद है। एडमिरल कृष्णा

स्वामीनाथन ने बैरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। भारत और नेपाल ने नेपाल के मनांग जिले में एक अस्पताल की इमारत का संग बुनियाद रखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है। साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुजाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राहुल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक अहम दरियाफ्त के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वहां छठी और सातवीं सदी के पांडव वंशी खानदानी सिलसिले के महर्षि बाला रंजन से वाबस्ता तांबे की तीन कमयाब तख्तियां पाई गई हैं। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तस्करा किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम तांबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग खासतौर पर इस बारे में जोश और खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। वजीर आजम ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहां तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीना चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, चंद्रम, कुकुम शरबत और सोल कड़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं। आम का तस्करा करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर बेशतर बात होती है, वजीर आजम ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं और अपने अकसाम हैं और अपना अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफर अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुंच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनाकिदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में चार नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरेंद्र वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें यह दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा के एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचा लिया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तस्करा किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि मुसल्ला फौज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो मुल्क के इख्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता है। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सुब्रमण्य ने कहा कि अंदाज फिक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बैरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया सलाहियत बढ़ाने और जदीद तर्ज पर आगे बढ़ने की समत गामजन है। एडमिरल स्वामीनाथन ने यकीन दिलाया कि उनकी अवलीन तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगी कि बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तैयारी और मुकाबला करने की सलाहियत के आला तरीन मेयारात बरकरार रखे जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और आवाम की फलाह बहबूद के तहत गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को

0: 700 रूफ टॉप शमसी पैनल कायम किए। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस तरह गुजरात के बाद महाराष्ट्र मुल्क में ऐसी दूसरी रियासत बन गई है जो 6 लाख से ज्यादा रूफ टॉप शमसी पैनल नस्ब कर चुकी है। जम्मू डिवीजन के मौसम गर्मा के जोन में आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है जो 1 जून से 15 जुलाई तक होगी। जम्मू कश्मीर की तालीम, सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईटू ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होने और तलबा और तदरीसी अमले की खैरवाफियत को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल गिरासी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियाई बिजली प्लांट की टर्बाइन इमारत पर कल हुए ड्रोन हमले पर तश्वीश जाहिर की है। IAEA ने कहा है कि उसे प्लांट की जानिब से इत्तला मिली है कि दिन में टर्बाइन इमारत को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया जिससे प्लांट की एक दीवार में मुबैना तौर पर शिगाव पड़ गया। एजेंसी ने कहा कि मौके पर मौजूद उसकी टीम ने नुकसान का जायजा लेने के लिए अहाते में दाखिल होने की दरखास्त की। भारत और नेपाल ने आज नेपाल के सूबे गंडकी के जिला मनांग की नेसोन देही बल्दिया में एक नए अस्पताल की इमारत का मुश्तरका तौर पर संघ बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के लिए भारत तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख नेपाली रूपये फराहम करेगा। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के नायब सरबराह डॉ राकेश पांडे और नेसोन देही बल्दिया के चेयरमैन धान बहादुर गुरुंग ने मुश्तरका तौर पर संघ बुनियाद रखा। इस मंसूबे से इलाके में सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी और मकामी आबादी को मयारी तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अहमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई का एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। क्रिकेट में आज IPL 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है। साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुजाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामिन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं अनिल विश्वास की मौसीकी से सजे हुए, क्योंकि आज उनका यौम वफात है। अनिल विश्वास 7 जुलाई 1914 को ईस्ट बंगाल में पैदा हुए। बचपन से ही मौसीकी का शौक था। इब्तिदा में आपने ड्रामों में अदाकारी भी की और मौसीकी भी तरतीब दी, फिर धीरे धीरे ये शौक परवान चढ़ता गया और फिर 1932 में आपने मुंबई का रुख किया और वहां फिर मुख्तलिफ फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी। उन्हीं की फिल्मों की कुछ नगमे आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।

मुंबई आने के बाद उन्होंने इब्तदा में मास्टरकार के असिस्टेंट के तौर पर काम किया और उसके बाद फिर महबूब खान के साथ मिलकर कई फिल्में उन्होंने बनाई, हम तुम और वो, एक ही रास्ता, बहन और अखिलाबाई। ये फिल्में ऐसी थी जिन्होंने मौसीकी के नए अंदाज को खूब अपनाया और लोगों ने उसे पसंद भी किया।

Batman के साथ अनिल विश्वास ने कई फिल्में की जिनमें एक फिल्म थी औरत, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज भी दी थी और वो नगमा काफी मकबूल हुआ था।

0: भरम काफे रे बराती चलो भरम काफे
1: भरम काफे
0: चलो भरम काफे रे बराती गाह करता थे गाह करता थे
2: अनिल विश्वास की मौसीकी सजी फिल्मों का जब जब तस्करा होगा तब तब एक फिल्म का नाम जरूर आएगा और वो फिल्म थी पहली नजर, जिसमें एक कलाई तौर पर मुकेश ने अपनी आवाज में एक नगमा गाया था जिसे सुनकर केएल चहल ने कहा था कि ये आवाज बहुत मशहूर होगी, बहुत नुमाया होगी।

कथा फैज साहब ने जिस अनिल के लिए कहा है वो कोई और नहीं बल्कि लाफानी मौसीकार अनिल विश्वास है। वही अनिल विश्वास जिनकी धुनों का सामयिन के दिलो दिमाग पर छाया जादू आज 60-70 बरस बाद भी उतरने का नाम

0: अभी उत्तराखंड उन्हें कलकत्ते के एक नामी ग्रामीण थिएटर रंगमहल में काम मिल गया। वहां उन्होंने 3 बरस तक नाटकों में काम किया, एक्टिंग की और गाने गाए। फिर एक दिन अचानक वो रंगमहल को अलविदा कहकर मुंबई की माया नगरी पहुंच गए।
1: फिर मैं वहां से हिंदुस्तान म्यूजिक कंपनी में चला, हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्शन वैरायटी सिंडिकेट लिमिटेड इसका नाम पूरा नाम, और हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। वहां से और 2 बहुत बड़े कलाकार वहां निकले हैं, श्री कुंदलाल सहगल और श्री एस जी बर्मन, हम लोग सब इकट्ठे काम करते थे वहां पे। ऐसे में एक दिन वहां पे हिरोबोस नाम का एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर आया। उस वक्त मैं किसी को वहां पे गाना सिखा रहा था, तो पूछने लगे ये गाना किसका है। मैंने कहा मेरा है। लिखा किसने है? मैंने कहा वो भी मैंने लिखा है। ट्यून किसने किया? मैंने ट्यून किया है। गाएगा कौन कौन? मैंने कहा मैं गाऊंगा और ये लड़की गाएगी, ये है डुएट है। और वो पहला रिकॉर्ड था जिसके साथ में थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा, फॉर द फर्स्ट टाइम सरोद वायलिन पियानो और ऑर्गन, ये 4 चीज। और दूसरी तरफ बांसुरी, ये पन्नालाल घोष जी, वो सर पहली मरतबा उसने बांसुरी बजाए थे उस रिकॉर्ड के लिए। तो सुन के आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि बेटे बम्बई चलोगे? तो मैं कुछ सोचने से पहले कि बम्बई क्या है, बम्बई जाऊंगा कि नहीं, बम्बई जाना चाहिए कि नहीं, हमारे मेरी नौकरी है, यहां पे काम कर रहा हूं वहां काम करने से पहले मैं कहती हूँ जरूर चलूंगा, आप ले चलेंगे तो। और यू उन्होंने अपना मुझे असिस्टेंट बना के हिरणबोस साहब 1934 दिसंबर में मुझे लेके बम्बई चले आए।
0: अनिल विश्वास बम्बई पहुंचे तो सबसे पहले नौकरी मिली ईस्टर्न आर्ट फिल्म कंपनी में। पगार तय हुई 250 रूपये महीना। यहाँ उन दिनों एक फिल्म बन रही थी भारत की बेटी, इसके एक गाने की धुन अनिल विश्वास ने बनाई। गाना था तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि हर खासवाम की जबान पर चढ़ गया और अनिल विश्वास की एक पहचान बन गया। मगर एक तन्हा म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से पर्दे पर उनका नाम आया धर्म की देवी में। इसके बाद अनिल विश्वास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यके बाद दीगरे कंपनी की 8 फिल्मों में म्यूजिक दिया। इंडस्ट्री में उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं रह गया। नतीजतन उन्हें उस वक्त की एक बड़ी फिल्म कंपनी सागर मूवी टोन से बुलावा आ गया। पगार 250 से बढ़कर एकदम 550। बहरहाल जब ये वहाँ पहुँचे कंपनी की एक एम्बिशियस फिल्म बन रही थी मनमोहन। अनिल विश्वास को इसके एक ही गाने की धुन बनाने का मौका मिला, मगर ये गाना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान की मानिंद मकबूल हुआ। गाने के बोल हैं तुम ही ने मुझको प्रेम

0: सागर की अगली फिल्म जागीरदार का मुकम्मल म्यूजिक अनिल विश्वास को सौंपा गया। दरअसल ये पहली फिल्म थी जिसने उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर शोहरत दिलवाई। इस फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती महबूब से हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर सामने आए। अनिल और महबूब की इस दोस्ती ने कुछ बेहद यादगार फिल्में नाजरीन को दी। इनमें एक फिल्म थी औरत, जिसकी बुनियाद में पर्ल एस बक का नोबेल इनाम याफ्ता नॉवेल द गुड अर्थ की कहानी थी। आमतौर पर इसके सभी गाने मकबूल हुए, मगर अनिल विश्वास की अपनी आवाज में एक गाना खास है। औरत के बाद आई एक मकबूल तरीन फिल्म रोटी,
1: जिसमें महबूब हो गया था बीमार। उसको एक नर्सिंग होम में लेके गया था, मगर हम लोग क्या करते थे, अपने आप में खाने का डब्बा उठा के लेके जाते थे, महबूब के साथ में बैठ के खाना खाएंगे। वो बेचारा सोया हुआ है, उसको एक सूखा हुआ था वो टोस्ट मिलता था और थोड़ा सा वो सूप मिलता था। हम लोग खाना खा रहे थे और वो हमें बैठ बैठ के बोलता था, खाओ भैया खाओ, तुम्हारी तकदीर है सर, जिस रोटी के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, हमको देखो क्या मिल रहा है, सूखा हुआ टोस्ट और ये। तो एकदम से मैंने कहा कि महबूब तेरे दिमाग में कोई इसके ऊपर कोई बात आती नहीं है। कहते क्या बात, मैंने रोटी। कहते क्या रोटी क्या, मतलब रोटी तो पिक्चर बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिसके लिए हम लोग सब मर रहे हैं उसको एक पिक्चर बना तू। हाँ रोटी भी कैसी पिक्चर बनेगी, कौन सी भी कैसी पिक्चर बनेगी। तो मेरा तो कम्युनिस्ट का बैकग्राउंड था, तो मैं तो अपना वो सोशलिज्म पे आ गया, उसको समझाया, तो इसका एक खाका बना के लिया। फिर अपना बजाज मिर्जा और देसाई साहब, ये लोग सब थे उसका जो हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट का, कहते उनको उनके सामने हम रखेंगे। तो हम चार पांच पेज के उसका एक खाका बना के लेके आया, लोगों को पसंद आया था और वो रोटी पिक्चर

0: दिन के बाद महबूब और अनिल की दोस्ती में दरार आ गई।
1: ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त, ये चार दिन की रफाकत भी कम नहीं है दोस्त। उम्र भर कौन भला साथ किया करता है, कहने का मतलब ये कि रोटी के साथ में मेरा नाता तो नस्ली स्टूडियो से नहीं, मैं उससे भी खत्म हो गया। वो ऐसे कि उस वक्त टाटा के जो लोग थे वो लोग फिनांस कर रहे थे और उन लोग को वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो कुछ इस बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ दो और दो चार नहीं होते समझे, तो कहने लगे कि बस बंद करो इसे। मेरे रूप में वो कॉन्फिडेंस था, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही गया था, सब लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और फिर मैंने ये सोच के महबूब से कहा, ये मैं साफ करना चाहता हूँ इस बात को, ये सोच के महबूब से कहा था कि महबूब मुझे एक नौकरी मिल रही है, जब तक तू पिक्चर शुरू नहीं करे तब तक मुझे यहाँ पे एक दो पिक्चर बनाने दे, उसमें क्या होगा सबके घर में चूल्हा जलेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, आई वॉज मैरिड मैन एट दैट टाइम, तो मुझे डर लग गया कि मैं फिर अपने अपने घर को क्या खिलाऊंगा। तो महबूब मिनट भर के लिए चुप हो गया और फिर हंस दिया, हंसते हंस के कहा कि ठीक है तू ज्यादा काम कर ले, मैंने कहा तू जिस दिन बुलाएगा और शॉट के अगर गाने के रिकॉर्डिंग के बीच में अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं गाना छोड़ के चलाऊंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ, कभी कोई बात नहीं तू चला जा।
0: सन 1942 में अनिल विश्वास बॉम्बे टाकीज आ गए। ये कंपनी उस वक्त बसंत फिल्म की तैयारी कर रही थी। अनिल विश्वास ने इसके नगमों को दिल अफरोज धुनों में ढाला। पेश है एक नगमा।

0: बॉम्बे टाकीज की अगली फिल्म थी सन 1943 में बनी किस्मत, जिसकी मौसीकी अनिल विश्वास ने तैयार की। इसका एक नगमा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये कैसा अजब इत्तेफाक है कि जुलाई सन 1914 में अनिल की पैदाइश हुई तो उसके साथ ही पहली जंगे अजीम का आगाज हुआ। जब उन्होंने किस्मत फिल्म का ये इनकलाबी नगमा मौसीकी में ढाला तो दूसरी जंगे अजीम अपने उरूज पर थी। पेश खिदमत है रगों में लहू की रफ्तार तेज कर देने वाला हुब्बुल वतनी से लबरेज ये नगमा।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो

दो फिल्मों के बाद अनिल विश्वास ने बॉम्बे टाकीज की चार और फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनके नाम है हमारी बात, आंख में चोली, ज्वार भाटा और मिलन। इनमें ज्वार भाटा इसलिए काबिल जिक्र है कि दिलीप कुमार ने अपना फिल्मी सफर इसी से शुरू किया था। इसका एक दिल को छू लेने वाला नगमा है सांझ की बेला पंछी अकेला।

ऑफिस छोड़ने के बाद अनिल विश्वास फिर नौकरी के बंधन में नहीं बंधे। जब तक बंबई में रहे उन्होंने फ्रीलांसिंग की। इस दौर की पहली फिल्म है पहली नजर, जिसमें उन्होंने मुकेश को ब्रेक दिया और एक ही फिल्म से मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री पर छा गए।

अनोखा प्यार फिल्म का अनिल विश्वास के करियर में एक अलग मुकाम है, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसमें उन्होंने मीना कपूर को पहली बार बतौर प्लेबैक सिंगर पेश किया और आगे चलकर उनकी जिंदगी में ही दाखिल हो गई। इस लिहाज से फिल्म का ये गाना बेहद मौजू है।

फिल्म का लता और मुकेश की आवाज में एक सदाबहार दो गाना है, जीवन सपना टूट गया। सामईन को बता दें कि अनिल विश्वास ने ये गाना किसी और फिल्म के लिए सैगल और नूरजहां को जहन में रख के तैयार किया था, लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से ये फिल्म नहीं बन सकी, तो इस बेमिसाल कंपोजिशन का इस्तेमाल बिलाखिर अनोखा प्यार में हुआ।

विश्वास ने जैसे पहली नजर में मुकेश को और अनोखा प्यार में मीना कपूर को ब्रेक दिया, उसी तरह आरजू ने तलत महमूद को ब्रेक दिया और उनसे ये गाना गवाया।

0: फ्रीलांसिंग शुरू करने के बाद अनिल विश्वास ने बहुत फिल्में की, मगर यके बाद दीगरे नए लोगों के साथ काम करते करते उनके दिल में वो पुरानी ख्वाहिश फिर से जागने लगी कि कोई महबूब जैसा हमनवा मिले जिसके साथ बैठकर दोस्ती और समझदारी का मजा लिया जा सके, और उन्हें अब्बास मिल गए।
1: पिक्चर तो मैं बहुत करता रहा, उसके बाद कुछ चली कुछ नहीं चली, कुछ बनी कुछ नहीं बनी, मगर ऐसे लोगों के साथ काम करते करते करते मेरे मन में वो पुरानी ख्वाहिश फिर जागने लगी कि कोई मेरा ऐसा हम नवा मिले जैसे महबूब था, जिसके साथ बैठ के वो मजा मिले दोस्ती का और समझदारी का। ऐसे में मुझे अब्बास मिला, और फिर अब्बास के साथ काम करते हुए मुझे इतना मजा आया। उसके साथ में मैंने 3 बहुत कामयाब पिक्चरें बनाई, एक राही, एक परदेसी, एक 4 दिल 4।

अनिल विश्वास ने वैरायटी प्रोडक्शंस के नाम से अपनी फिल्म कंपनी कायम की, जिसके बैनर तले 5 फिल्में बनाई गई। इनमें एक फिल्म हमदर्द है, जिसे उनके बेमिसाल संगीत के लिए आज 60 साल बाद भी याद किया जाता है। इसके एक गाने में उन्होंने मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजें लेकर 12 मासे का खूबसूरत इस्तेमाल किया था।

बंगाली फिल्म नौका डूबी के म्यूजिक डायरेक्टर भी अनिल विश्वास थे, जिसका पूरा म्यूजिक रविन्द्र संगीत की बुनियाद पर तैयार किया गया। हिंदी में भी उन्होंने वारिस फिल्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत

हिंदी सिनेमा के एक बड़े अदाकार तो थे ही, अनिल विश्वास के जिगरी दोस्त भी थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन पर प्रोड्यूसर बनने की धुन सवार थी और उन्होंने राजवंशी प्रोडक्शंस के बैनर से छोटी छोटी बातें बनाई, तो जाहिर है कि उसमें म्यूजिक अनिल विश्वास का ही होना था। पेशे खिदमत है मीना कपूर की दिलकश आवाज में इस फिल्म का एक यादगार नगमा।

छोटी छोटी बातें के बाद अनिल विश्वास फिल्मी दुनिया को और मुंबई को अलविदा कहकर दिल्ली आ गए। सन 1963 की 1 मार्च को बतौर ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। इस ओहदे पर काम करते हुए उन्होंने तकरीबन 60 लाफानी कम्पोजिशन तैयार की, जिनमें से बेशतर आज भी ऑल इंडिया रेडियो के खजाने में महफूज है।

झुके झुके मैनो ये लट बल खाना।

0: जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, मुस्कुराते थे हिमेश रेशमिया। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में सुनी कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से जय नगमा फिल्म है कंगन।
1: झूठ

दिल से मिले दिल, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मौसीकार थे बप्पी लाहिरी। और साउंड जब सुनी गोरा और काला, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।

ठुकरा दे वो इस दुनिया।

आंख मिल जाए है सजनिया से।

0: ऑल इंडिया रेडियो दास सिलाई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुम्हारे कीते आज दा प्रोग्राम खेन के हाजिर हाँ। क्या हाल चाल है तुम्हारे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो। ते चलो शुरू करें दे हाँ प्रोग्राम।
1: मैं प्रमोद चोपड़ा पानीपत तो तुम्हारा सभा का आज स्वागत करदा। अज काव्य पाठ सराइकी दे विच साडे कोल जिहड़े मेहमान आए हैं उन सब को पहले श्री सुंदर लाल छाबड़ा जी बल्लभगढ़ तो प्रारंभ ते सराइकी कविता बड़े ही अच्छे ढंग नाल करेंगे ते मैं उन्हां को निवेदन करेंगा कि वह अपनी कविता सुनावन पेश करें।
2: तो मैं हूं तुम अपनी कविता सुनावन देना पे आऊंगा। शीर्षक है सुपने का शहर। शहरा तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। शहरा तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। चारों पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे।
1: वाह क्या बात।
2: चारा पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे। ना रात नूं सुनणेंदे हैं ते ना दिन नूं सुनणेंदे हैं, हर वेले भजदे पैन। ना रात नूं सुनणेंदे हैं ना दिन नूं सुनणेंदे हैं, हर वेले भजदे पैन। बस पैसा पैसा ते पैसा, छोटा जई हाथी बने अपना, छोटा जई हाथी बने अपना। जीवे तीवे जिथा तक अपनी छतवी कोई, बस पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पता कोई, कोई सुनने ना भी कोनी। छोटा जई घर थी बने अपना, जीवे तीवे जिथा छतवी अपनी कोई, पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पता कोनी, कोई सुनने ना भी नहीं। बिच्ची उत्ते चाके चा देखो, बिच्ची उत्ते चाके चा देखो, इना लगदा है जिवें कंक्रीट दा जंगल उग पोया होए। बिच्ची उत्ते चाके चो देखो, इना लगदा है जिवें कंक्रीट दा जंगल उग पोया होए। बस दूर तो ही, बस दूर तो ही हाय हैलो, किथे आना पई किथो आना पई। दिन सप्ताह महीने तवेले वेले सारा बीत वेंदे हैं, दिन सप्ताह महीने तवेले वेले सारा बीत वेंदे हैं। एक दूजे को मिले मिठे झपना पाते, तिहा दा हाल वणेंदे। बस एक गल बहु सोहनी लगदी है इथा, बावा सिमी सिमी रेत ते भज्जा समंदर दे उत्ते।
1: क्या बात।
2: करना हुआ या हुए कोई संगी साथी जीवन साथी, ठंडी ठंडी हवावां ते होवे उठदी लहरां दा शोर।
1: शोर
2: वसुआ बीच मड बीच रॉक बीच जू बीच, या हुए मैरिन ड्राइव। बैंदा कोई शीर्ष ते कोई बैंदा धरती ते, ऐ वल मशहूर है। शहरा तो शहर मुंबई शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई शहर मुंबई।
1: बहुत बढ़िया जी,
2: धन्यवाद।
1: मुंबई की पूरी कहानी इन्होंने अपनी कविता दे विच छाबड़ा जी ने दस दिती है, बहुत कमाल कीती है, बहुत अच्छा लगे। तुहाडी लेखनी बहुत ही शानदार है। मैं इसी कड़ी विच निवेदन करदा पिया बहन सोनिया दोहा जी को, आप बड़े ही अच्छे लेखक हैं, कवित्री हैं, उपन्यास भी लिखे इन्होंने, कई काव्य संग्रह लिखन, पता नहीं कितने अवार्ड के विजेता भी हैं। बहन सोनिया जी
3: शुक्रिया। एक सूफियाना नज़्म पेश करा दी पई हां।
2: स्वागत है।

0: Cara.
1: Oh, meu Deus.
0: Oh.

हाँ जेड़ा देश दे तोटे करन दे चारक दे उना दे वास्ते फांसी द तख्त हाजर है उना दे वास्ते फांसी द तख्त हाजर है जिथा दखांदे हो के दूजे मुल्कां दिशे ते पिया तू तपदा है के दूजे मुल्कां दिशे ते पिया तू तपदा है के बन के दुश्मन द कुत्ता तुसा को पटदा है के बन

तू सोची मेरा देश ए महान क्यों है, कभी तू सोची मेरा

0: தங்கத்திலே ஆம் நாக்கள் தங்கத்திலே ஆம் நாக்கள் தங்கத்திலே ஆம்
1: बहुत सोनी कविता है थोड़ी कथा ना कर बहुत बहुत
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दोबारा इस कड़ी अपने छाबड़ा साहब को दोबारा निवेदन करेगा कि आप एक और कविता पेश करो सुंदर लाल जी छाबड़ा
1: जी। हूं मैं तुहानू जी कविता सुना देना पाया हूं। कविता का शीर्षक है हूं मैं ना लिखसा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिखसा वत सोचिया है ना लिखसा ते क्या करे सा। वत सोचिया है ना लिखसा ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रासन ते क्या करे सा। मैं ते तू, तू ते मैं।

0: मैं ते तू, तू ते मैं, केड़े केड़े सपने डिठे हन। मैं ते तू, तू ते मैं, केड़े केड़े सपने डिठे हन। कड़ी दरिया किनारे बै, पानी विच पैर घत, छप छप छप छप ताई कीती है। कड़ी दरिया किनारे बै, पानी विच पैर घत, छप छप छप छप ताए कीती है। तमाए पानी दी बुक्का भर तेरे ते पाती है। तमाए पानी दी बुक्का भर तेरे ते पाती है। खेत मुनेरा ते बैके, खेत मुनेरा ते बैके, सुपने असा बुनन हन। खेत मुनेरा ते बैके, सुपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है, ते हेक सिलाई मेरी है।
1: बहुत सोना, वाह।
0: खेत मुनेरा ते बैके, सपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है, ते हेक सिलाई मेरी है।
2: क्या बात।
0: ओ सोना सोना बाल है अपना, ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा, ते हाथ चाके भजदा आउंदा। ओ सोना सोना बाल है अपना, निके निके पैर वधेंदा, ते हाथ चाके भजदा आउंदा। तू ते मैं ते तू, तू ते मैं ते तू, झप्पी पाके हाना लाके, कोल मिलाके खिलदे हसे। तू ते मैं ते तू, झप्पी पाके हाना लाके, कोल मिलाके खिलदे हसे। ते हुण कित्थां गई ओ तेली खिल, ते हुण कित्थां गई ओ खिल, ओ झप्पी ओ सपने ते ओ तेरी सिलाई। ते कित्थां गई हो ओ तेरी खिल, ओ झप्पी ओ सपने ओ तेरी सिलाई। मैं बैके हुआ मुंडेरा ते, मैं बैके हुआ मुंडेरा ते, ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी सोचदा हां। मैं बैके हूं मुंडेरा ते, ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी, ते सोचदा हां हुण मैं ना लिखसा, हुण मैं ना लिखसा, हुण सुंदर ना लिखसी, हुण सुंदर ना लिखसी।
1: पर लिखदे रहो
0: जी,
2: आपका लिखदे रहो,
0: तुहाडा आशीर्वाद असीं ते लिखदे रहो, चाहिदा आशीर्वाद वड्डे लोकां दा।
2: वाह जी वाह, बहुत वधिया
0: जी।
2: ते मैं फिर दोबारा दरखास्त करदा पिया बहन जी सोमिया दुआ जी को, एक मोहब्बत की कविता उन्होंने आखे अस पेश करे सू
1: जी।
2: ते निवेदन है
1: दो नज़मा पेश करें दी भैया
0: जी। स्वागत
1: एक तरन्नुम विच
0: जी।
1: तिलस्मी खावा विच तेरे होमर दा एहसास रिया।
2: बहुत बढ़िया।
1: तिलस्मी खावा विच तेरे होवण दा एहसास रिया, मैं हर वारी अपना होकर भी अपना ना रिया। मैं हर वारी अपना होकर भी अपना ना रिया, मेरी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई। मेरी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई, मैं सब दे विच भी तनहा ही रिया।
0: क्या बात।
1: मैं सब दे विच तनहा ही रिया, एक कुर्सी ता कुछ किताबा, एक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे, एक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे, कुछ नाल चाह दी चुस्कियां दा वी रिया। गुमा हाई शजर को मेडे होवण दा, गुमा हाई शजर को मेडे होवण दा, मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया, मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया, हवावां दी तस्वीर कहनी होंदी।
0: सही।
1: हवावां दी तस्वीर कहनी होंदी, उस दा वजूद हर सांसा विच दिखिया, मेरी बेबाकी दा असर कुछ इस कदर हाई, मैं सब दे विच भी तनहा ही रिया, मैं सब दे विच

0: इंदनाली में थोड़ा सारे दा नवीन छोटा सा कुछ उन्हें बनो ना सब दा धन्यवाद करना
1: जी
0: तो धन्यवाद आल इंडिया रेडियो वाले दा भी सब दा धन्यवाद
1: जी
0: ते बल जल्दी ही दोबारा मिलसू मैं प्रमोद चोपड़ा श्री सुंदरलाल छाबड़ा जी बल्लभगढ़ तो आए ते सोनिया दोबा बहन जी हल्द्वानी तो आए उन्होंने नाल तुहाडा सभा दा स्वागत करना धन्यवाद
2: धन्यवाद
1: शुक्रिया
2: बहुत बहुत
1: बहुत बहुत शुक्रिया ते हुण प्रोग्राम दा समा खत्म थींदा है घरां को जुलदे हां हरजीत कौर को इजाजत देवो अगले प्रोग्राम विच फिर मिलवा
3: ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਕ ਮਾਹਿਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਕ ਮਾਹਿਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 5:30 ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 6:30 होए ने। पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
1: ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਣ ਕਰ ਦੂਗੀ ਹੈਲਮੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ
0: ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਟਪਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਅ। ਇਹ ਲਾਅ ਵਿਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी श्री दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ

करेंगे। यह अभियान 23 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज, रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को राम राम।
1: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर आ जाए। देखिए, किसी भी फसल का महत्व हमारे किसान भाइयों के लिए काफी होता है, और खरीफ फसलों की बात करें तो इनका भी खेती में काफी महत्व है। और खरीफ फसल मुख्य रूप से वर्षा ऋतु यानी मानसून की फसलें इनको माना जाता है, जिसकी बुआई जून जुलाई से और भाई कटाई की बात करें मुख्य रूप से सितंबर से अक्टूबर के महीनों में की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और खरीफ अभियान 2026 की तैयारियों की अगर बात करें तो खरीफ अभियान 2026 की तैयारियों, रणनीतियों और लक्ष्यों को तय करने के लिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में खरीफ की बेहतर पैदावार और कृषि तकनीकों पर केंद्रित कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। तो आइए सुनते हैं इसी सम्मेलन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दिनांक 28 और 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 आयोजित किया गया। इस आयोजन में उपस्थित किसानों और कृषि अधिकारियों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आइए आपको सुनवाते हैं इस आयोजन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट।
3: नमस्कार, मेरा नाम सुखबीर है। मैं राजगढ़ एग्रो मैरिन प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर कंपनी यानी चूरू जिले के एफपीओ का डायरेक्टर हूँ। हमारे वहाँ पे मुख्यतः जो खेती होती है मूंग की, बाजरा, मोठ और ग्वार की खेती होती है। टोटल की टोटल बिरयानी खेती होती है, यानी मतलब कि वहाँ पे सिर्फ बरसात पे निर्भर रहती है पूरी खेती। पानी लगाने का कोई भी सोच है वो हमारे वहाँ पे नहीं है। अभी पिछले 2 दिन से मैं इस इवेंट में शामिल हूँ। सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी है 2 दिन में महसूस हुई है वो ये है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तुरंत किसान के प्रति समर्पित है। प्रत्येक मोड पे हम देख रहे हैं कृषि मंत्री जी को, प्रत्येक स्टेट के अधिकारियों को, वहाँ के कृषि मंत्री जी को बार बार निवेदन करें, क्लियरली आदेश दे रहे हैं कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी के रिगार्डिंग हमें जो योजनाएं वो बनानी होगी। जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको हमें जानकारी नहीं थी, कैसे उनमें कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजों का यहाँ पे आने के बाद 2 दिन में हमें पता

0: होती नहीं है। डिपार्टमेंट में जाते थे, हॉर्टिकल्चर अलग देखता था, एग्रीकल्चर का अलग देखते थे अपने। यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हमारे वहाँ पे मुख्य जो उत्पाद है वो मूंग और चने की होती है, लेकिन वो पीएम आत्मा में शामिल नहीं थी। इसलिए कल हमने अधिकारी जी को वहाँ पे लिख के दिया तो उन्होंने तुरंत वहीं पे हमारे सामने, जब हमारे स्टेट राजस्थान का बोलने का नंबर आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उस चीज को वहीं पे रख दिया। उन्होंने हमारे सामने वहीं पे बात रखी है। उम्मीद हमें पूर्णतः है कि हमारी ये जो दोनों क्रॉप है उसको आत्मा में शामिल कर दी है। उसके अलावा हमने आज भी सुबह की बात की है कि जो भी किसान उत्पादक संगठन है राजस्थान में, उनके सामने एक समस्या ये भी है कि उन्होंने जो एमएसपी के जो खरीद केंद्र है वो अभी उनको एफसीओ को नहीं है, क्रय विक्रय सहकारी समितियां चल रही है उनको मिले हुए। तो हमने हमारी बातें अधिकारी जी के सामने भी रखी है। हो सकता है और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि ये बात हमारी पूरी भी होगी और आने वाले समय में जो भी क्रय विक्रय सहकारी समिति जिस तरीके से काम कर रही है प्रोक्योरमेंट सेक्टर का, वही काम हमारे एफपीओ भी करेंगे। उससे किसानों को उचित मूल्य अपनी फसल का मिलेगा। और मैं प्रसन्न कुमार चूरू राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट आदमी तहसील से अपना मूंग चने की अच्छी तरह से फसल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये तारीख 2026 का जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा है और मैं ये आशा करता हूँ कि आगे भी सरकार इस तरह के आयोजन करती रहे। जो है उनको जो एक तो लाइसेंटर नहीं दिया गया है अभी, तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को मिलकर के तुलाई के लिए वो बाबत किया जाए ताकि किसानों को भी फायदा हो और जो बीच में बिचौलिए वगैरह है ये भी खत्म किए जा सके। समय समय में जो एमएसपी है इसमें थोड़ा इंक्रीज किया जाए ताकि किसान को फायदा हो और वो दलहन की तरफ ज्यादा मन लगा करके खेती करे। मैं राकेश रोही जिला पंचायत इस इवेंट में आने से मुझे लग रहा है कि हमारे भारत के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक अच्छा कदम उठाया जिससे हमारे किसान बहुत ही ज्यादा लाभान्वित, बहुत बारीकी से तारीख की बातें बताई और कृषि मंत्री से जो आग्रह किया है कि वो देश में सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है धरातल से उतारा जाए। मिनी किट्स वाली योजनाएं चलाई जा रही है जो सरकार अब तक लगभग 70% से 80% वितरण कर चुकी है। निश्चित है नए तरीके अपनाने क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। दूसरे जो क्योंकि प्रमाण निर्भरता है वो खत्म हो और हमारे चलन चलन की मात्रा बढ़ाई जाए।
1: मेरा नाम सजीव पांडे है। जहाँ इवेंट में बहुत सारी अच्छी बातें हुई, जहाँ मतलब हमारे देश के किसानों के बेनिफिट के लिए बातें हो रही है, लेकिन हम एक और चीज चाहेंगे कि यहाँ पे हो एफपीओ को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। इसको प्रमोट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से लाइसेंसिंग से जीडीपी में भी इजाफा हो और जहाँ किसान जागरूक हो सके सबका अटेंड कर रहे हैं और यहाँ से जो हमें सीखने को मिलेगा वो हम चाहें कि अपने किसानों में इम्प्लीमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चीज यहाँ से सीख के जाए। हम यहाँ अपनी बातें भी माननीय मंत्री जी आए हुए हैं सारे स्टेट पे उनके सामने रखे हैं। सरकार और किसान दोनों एक मंच पे हैं। किसान और सरकार जो भी मतलब चाहते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, जो है पेपर्स में न रख के किसानों तक पहुँच रहे हैं।
2: मेरा नाम स्वर्णिम प्रत्यन है और मैं संभव स्वर्णिम एफपीओ का, जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम मीटिंग में आए हुए हैं, वो भी उनका भी यही कहना है कि किसानों को जो फायदा सीधे डायरेक्ट मिलना चाहिए, जो मंडी में होता है कि 7% आड़त है वो किसानों में नहीं जाना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे एफपीओ ने क्या किया है जो मॉडर्न तरीके सारी कंपनीज है ब्लिंकिट है जैप्टो है इनको डायरेक्ट हम वेजिटेबल सप्लाई करते हैं और डायरेक्ट किसानों से लेते हैं। और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है आज इसमें बहुत सारी बातों पर विशेष चर्चाएं हुई है, जैसे कि फर्टिलाइजर है, ये मैं भी एक मतलब मानता हूँ कि बहुत बड़ी इशू आने वाला है क्योंकि जैसे स्टेट ऑफ फार्मर्स क्लोज किया हुआ है, क्योंकि जैसे अगर हम देखें वहां से फर्टिलाइजर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ग्राउंड में जाके देखें तो वहां पर फार्मर्स को बिल्कुल इस बात की भी नॉलेज नहीं है। हमें जमीन को भी देखना होगा कि वो क्या चीज मांग रही है, क्या चीज उसको जरूरत है, उसको पोटेशियम की जरूरत है, उसको सल्फर की जरूरत है, उसको कार्बन की जरूरत है, उसको बोरोन की जरूरत है, पर नहीं किसान से फर्टिलाइजर्स लेते हैं। मोस्टली जब पोटेटो हम लगाते हैं तो और उसको इतनी मात्रा में उसमें डाल दिया जाता है जिससे कि खेती का जो उपजाऊ करना जो खेती की फर्टिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उस पर सरकार को बहुत ज्यादा नियंत्रण करना चाहिए। और एक चीज और है जहां पर वाटर लेवल कम होता जा रहा है, मतलब बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी का स्तर गिरता ही जा रहा है, वहां पर सरकार को जैसे कि जो फसल ज्यादा पानी लेती है उसको कम कर देना चाहिए जिससे कि वहां पे पानी वाटर लेवल ज्यादा नीचे गिरे।
3: मेरा नाम दीपक शर्मा है, उत्तर प्रदेश के संबंध

0: समझते हैं हो सकते हैं, तो उसके लिए हम भी किसानों को जागरूक करेंगे। अमरीकी ने कहा कि जो सीड है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो किसानों तक समय से नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, जिसकी वजह से किसान की जो पैदावार है वो प्रभावित होती है, समय से वो नहीं पाता। किसान को बिना किसी लाइन में लगे खाद मिले, ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ये हमारे लिए जो है एक बहुत अच्छा साधन है, जिससे कि हमारी निर्भरता जो फर्टिलाइजर्स हम विदेशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको कम हो जाएगी। उसके 25% पर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसमें जब आपको सही लगे तो फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, जिससे कि हमारी जमीन भी बची रहेगी। फसल बीमा की हकीकत ये भी है कि फसल बीमा जितना कंपनियां प्रीमियम ले रही हैं अभी उतना फसल बीमा नहीं दे रही है, वो माननीय मंत्री जी के नॉलेज में है। उन्होंने कृषि ऋण के लिए भी बोला है कि कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाए किसान को, और इसके अलावा जो और भी जरूरत पड़ती है किसी ऋण की तो वो भी आसानी से उपलब्ध किसान को होना चाहिए।
1: मेरा नाम ज्ञान सिंह, गांव कासमपुरा, और इस प्रोग्राम में मुझे कुछ बहुत देखने को मिला। और मैं नेचुरल खेती करता हूँ, काफी टाइम से प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती करने का मेरा ध्येय है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और जमीन की उर्वरा शक्ति हमारी बढ़ती रहेगी। और इस वजह से हम सभी किसान भाइयों को कहते, जो मंत्री साहब भी कहते कि प्राकृतिक खेती करने से हमें लाभ मिलेगा और हमारी आयु में वृद्धि होगी और खर्च भी कम होगा और श्रम करेंगे। और मैं बीजों की उत्पत्ति करता हूँ, अपने जो पुराने बीज है जो लुप्त हो गए थे, जैसे हमारे बीज हैं एक मटरी होता था, काला धान होता था और गेहूं होते, जो प्राचीन बीज थे हमारे, उनको ढूंढ ढूंढ कर अपनी खेती में लगा रहे हैं और उनसे हम पैदावार अच्छी ले रहे हैं। कुछ बीज वैरायटी ऐसी हमारी है जो हम पानी भी नहीं दे पाते, उनको बिना पानी के तैयार करते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है और स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हम सब अनुरोध भी करें कि आप थोड़ी नेचुरल खेती करें, फर्टिलाइजर से बचें, एडवांस में रखें। जितनी जरूरत हो अपनी जमीन आपका 10 बीघे है तो उसमें 2 या 3 बीघे नेचुरल खेती करें और उसमें देसी खाद भी, गाय का गोबर और जीवामृत बनाकर गाय के पेशाब, इनसे हमें खेती करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। किसानों से ये अनुरोध है, जल संरक्षण का है, यदि हम ज्यादा पानी चढ़ाएं खेतों में तो हमारा पानी खत्म हो जाएगा, पीने से भी निकल जाएंगे। और यदि हम ऐसी खेती करेंगे जो प्राकृतिक खेती, उसमें हमें पानी कम मात्रा लगानी पड़ेगी, उसमें देसी खाद, हरी खाद, वास्प गोबरी खाद, इनसे हम उसमें रोटेशन बनाकर और उसमें घास कबाड़ उसके अंदर जो पानी कम जरूरत पड़ता है। प्रोग्राम था मंत्री साहब का, मैं आया एक दो बार पहला, ये बहुत अच्छे ऐसे प्रोग्राम होने जरूरी है क्योंकि यदि देश का किसान होगा सही स्थिति में वो सही उसे निर्देश मिलेंगे, हमारी सरकार को निर्देश दिया जिसे मंत्री साहब ने बताया, तो हम सही रास्ते पर आएंगे। अन्य एक दिन वो किसान उस स्थिति पर किसान भी नहीं खाया जाना क्योंकि खेत में खून गिर गए तो खून के नुकतार है, उसे फसल चाहिए क्योंकि जो हम नेचुरल खेती करते हैं उसके हमें दाम नहीं मिल पा रहे सही। ये एक सामूहिक प्रोग्राम है।
2: मेरा नाम मनाजिर है, मैं कमिश्नर एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश से। ये इस बार जो खरीफ कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ सारे स्टेट से मिनिस्टर्स आए हुए, सेक्रेटरीज आए हुए, डायरेक्टर्स आए हुए, बाकी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स भी जो आए हुए हैं, चलिए काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ने इस बार लिया हुआ है। इससे ये है कि ओवरऑल कंट्री में कहाँ कहाँ, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, गुड प्रैक्टिसेस कहाँ क्या क्या हो रही है, बाकी स्टेट्स को भी पता चल रहा है, एक तो वो है और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी मिलता है चीजों का कि एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट अपने किस डायरेक्शन में लेना चाह रही है, उसमें स्टेट्स का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इनिशिएशन इस बार लिया है मिनिस्ट्री ने, ये काफी अच्छा है। खरीफ सीजन आने वाला है, फर्टिलाइजर का भी थोड़ा जियो पोलिटिकल इश्यूज की वजह से उसका भी थोड़ा अप्रेंशन है, फार्मर्स में एलिनो का भी थोड़ा अप्रेंशन है। तो ये मानता हूँ ओवरऑल जो प्रिपेयरनेस, ओवरऑल कंट्री लेवल पे जो प्रिपेयरनेस होनी चाहिए एज टीम एग्रीकल्चर की, ये उस डायरेक्शन में काफी अच्छा एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, इसको तो कंटिन्यू करना ही करना चाहिए, स्टेट्स को भी करना चाहिए अपने अपने लेवल पे, जैसे जिले के जो भी अधिकारी हैं या ऑफिसर्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, उनको बुला के भी अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज रोड मैप या उसके नीचे ब्लॉक वाइज रोड मैप बना बना के कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक यूनिफाइड डायरेक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर को लिया जाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग बाहर न आए और बास्केट बनाने की भी कोशिश हो रही है। ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रोडक्शन वाइज प्रोटीन्स का ऑल्सेस का जो प्रोडक्शन हुआ है काफी रिकॉर्ड हुआ है अक्रॉस द कंट्री, तो उस डायरेक्शन में भी कैसे एरिया को बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और पल्सेस की तरफ से और तिलंग की तरफ से कैसे डायरेक्शन लिया। बटन का भी अभी मिशन में शुरू हो रहा है कई राज्य में, आंध्र प्रदेश में बटन का काफी अच्छा खासा एरिया, तो ये काफी उसमें मदद करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थिंकिंग। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी अभी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो कैसे फार्मर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, जैसे आधार आया कंट्री में, उसके बाद UPI आया, तो अभी फार्मर ID आ रहा है, बेनिफिट जो है लीकेज का स्कीम ना हो और उसमें मतलब जिस

0: आना चाहिए, ये सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स में मदद करेंगे।
1: फार्मिंग का काम मुझे एनएचपी के थ्रू सब्सिडी मिली थी पॉली हाउस लगाने पे, जिसके अंदर मैंने कचरोज लगा रखा है। और फिलहाल मैं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 दिल्ली में आया हुआ हूँ, इसमें भाग लेने के लिए। और इसके अंदर हमें नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग संबोधन मिला है। इसके अलावा हमें यूरिया, डीएपी जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को कम यूज करने पे, और हमारे प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स को जैसे कि संजीव अमृत हो गया, जीव अमृत हो गया, उनका अधिक उपयोग करने पे सलाह दी गई। एक जो नया सुझाव इसके अंदर माननीय मंत्री जी ने दिया हुआ है मित्र की कथा, जो कि हमारी पेस्टिसाइड के उपयोग को भी कम कर सकते हैं। फसलों में अगर जहर का अंश कम होगा तो वह सभी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और किसान की सेहत पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, जैसे हमारा खर्चा कम होगा। अभी बाजार में जैसे नकली पेस्टिसाइड वगैरह भी खूब है, माननीय मंत्री जी किरोड़ी लाल जी ने भी राजस्थान के अंदर खूब जगह पे इन सब चीजों के ऊपर रेड करी है, उनको बंद करवाया है। यह किसान के फायदे में है, जो नदी का उपयोग करके किसान का पैसा भी बर्बाद होता है और उसका फसल में कोई उपयोग भी नहीं हो पाता है, तो उससे अगर हमें बचाव मिल सके, जैसे मित्र की है, और अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने बताया था कि उनका उपयोग करके हम वर्षभर शत्रु कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं, कम खर्चे में कर सकते हैं और वह जहर को भी फसल के अंदर कम करेगा, तो ये सभी चीजें फायदेमंद है। और बाकी जो उर्वरक के उपयोग की है, वह माननीय लाल जी ने अभी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था कि जो हमारा सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है उसको देखते हुए हम ग्रीन मैन्योरिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, काउडन मैन्योर का उपयोग बढ़ाना चाहिए, और उससे हमारा जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज है वो 100% कम होगा और हमारी फसल की उपज भी बढ़ेगी और हमारे मिट्टी का उपजाऊपन भी ऊपर खड़ा रहेगा। सम्मेलन में प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि जो योजनाएं किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है कागजी कार्रवाईयों की वजह से रुक जाती है और कहीं पे उनमें प्रभाव गलत पड़ता है किसानों के ऊपर। कुछ लोग इसकी वजह से अपने जो फसल चक्र है उसको भी नुकसान में झेलना पड़ता है। तो मंत्री जी ने कहा है कि इसका जो प्रक्रिया है इसको सरल बनाया जाए, किसानों को ऑन ग्राउंड मदद पहुंचाई जाए और जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जाए, ताकि जो भी योजनाएं बनी गई है उनका सही प्रभाव किसानों को मिल सके।
2: दिनांक 28 और 29 मई 2026 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद पूसा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब यहीं संपन्न होती है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: तो किसान बहनों और भाइयों, ये तो थी खरीफ अभियान 2026 की तैयारियों, रणनीतियों और लक्ष्यों को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन जो कि एनएएससी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, इसमें स्वर था संध्या और प्रस्तुति थी तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल। और ऐसा ही एक और अभियान कल से मध्य प्रदेश के रायसेन से शुरू होगा और जिसमें धरती मां को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प जो कि 1 जून से रायसेन जो कि मैं बता ही रहा हूं वहां से शुरू होने वाला है, और इसका जो उद्देश्य है वो है खेत बचाओ अभियान। और इसमें जो है इसका शुभारंभ जो है कल 1 जून से हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों तथा किसान हित में कार्यरत साथियों से वर्चुअल संवाद भी किया। और इस अभियान में जन भागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय दायित्व के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया है।
4: इस अवसर पर जो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देखिए अपने प्रेरक संबोधन में कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि धरती मां को बचाने, खेती का भविष्य सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और बदलते जलवायु संकट खेती के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं, इसलिए समय रहते व्यापक जागरूकता और व्यावहारिक संकेत जरूरी है।
3: और इसमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अभियान का बहुउद्देश्य स्वरूप देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, मिनी

0: बीज किट, दलहन तिलहन मिशन तथा कृषि यंत्रिका जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाए। इसमें खेत बचाने के साथ साथ किसान की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता को भी मजबूत किया जा सकेगा।
1: इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खेत स्तर पर डेमो, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से किसानों का विश्वास मजबूत करना होगा। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश भर में 30 जून तक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें यह स्पष्ट हो सकेगा भाई कौन अधिकारी, वैज्ञानिक संस्था या टीम किस स्थिति को किस गांव में जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले का कार्यक्रम पूर्व नियोजित और डैशबोर्ड पर आधारित मॉनिटरिंग हो, स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो और अभियान के आचरण में प्रभावी समन्वय दिखाई दे।
0: इसी मौके पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि जैसे पूर्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान ने व्यापक प्रभाव छोड़ा, उसी प्रकार खेत बचाओ अभियान भी देशव्यापी जनजागरण और कृषि सुधार का सफल अध्याय बनेगा। उन्होंने सभी साथियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, तैयारी और संवेदनशीलता के साथ साथ गांव गांव पहुंचकर किसानों को सही जानकारी दें और धरती मां के संरक्षण का ये संकल्प जन आंदोलन में बदले। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने स्वयं इस अभियान के दौरान विभिन्न राज्यों में गांव में जाकर किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे, मतलब वो गांव में जाएंगे और किसानों से मिलेंगे और वहां पर किस किस तरह की योजनाएं हैं, कैसे कैसे वो कृषि संबंधी और व्यापकता को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी वो डायरेक्ट किसानों से बातचीत करेंगे। तो ये तो बात हुई, ये महत्वपूर्ण बात हुई। अब सुन लेते हैं एक उपदेश दिनेश गिरी की आवाज में।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने उपदेश सुना दिनेश गिरी से, और अब कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लौ करंजनी का आनंद ले सकेंगे।
1: और वहीं अगला कार्यक्रम जो रहेगा ग्राम संसार, उसमें बातचीत सुनेंगे हमारे साथी, दूध की शुद्धता जांचने के आसान घरेलू तरीके। वहीं
0: 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे धान की नर्सरी के बारे में, और साथ ही भाई जो बाजार भावों के बारे जो जानकारी भी देंगे। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय ही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाशा
1: और संयोजक थे शिवनंदन लाल।
0: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हो चुके हैं और जो लफ्ज है शाम, वो शाम होती है दिन के ढल जाने के बाद, और दिन का ढलना ही शाम है। और ये इतना खूबसूरत लम्हा होता है कि जब आपका मूड, आपका मिजाज जरा कुछ गजलों और कव्वाली की तरफ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस खूबसूरत सी गजल से पहले एक मशहूर शायर जो अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, जनाब बशीर बद्र साहब, उनका एक शेर आपको जरूर सुनाऊं कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से तेरी सूरत, इतनी मिलती है तेरी मेरी गजलों से तेरी सूरत, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हैं।

कभी जिस तरह अल्फाज जज्बात का साथ नहीं देते, ऐसे ही कभी कभी हमारे कंप्यूटर साहब नाराज हो जाते हैं। तो उनकी ख्वाहिश नहीं है कि ये गजल मैं आपको सुनाऊं, तो पेशे खिदमत है दूसरी गजल।

जी, बात जो है वो दूर तलक चली जाती है बिना उसके पैर हुए, वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है, और जब वो कोई मकाम पाती है तो कभी तो आपको वो खुश कर देती है, कभी आपको वो हैरान कर देती है, और कभी-कभी आपके लिए बहुत सारी परेशानियों का सबब बन जाती है।

पर ये जो वक्त है ये एडवांस है, डिजिटल है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द आपके पैगाम एक से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और बहुत आसानी से भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दौर जब खत व किताबत का था तो बहुत हसीन वक्त रहा, और उसकी जो अहमियत है मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। और अभी भी मुझे लगता है कि ख़त जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत एक तरीका है अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने का। ये जहन में ख्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पंकज उदास साहब की खूबसूरत सी गज़ल सुनाऊँ जिसमें उन्होंने ख़त के जवाब की बात कही है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने गजल और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम सुना और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ठीक 8 बजे समय होगा कवि गोष्ठी का और 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: देखा, और मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दो?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालर्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं मिली हैं।
11: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
11: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी

0: अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति केवल आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में नहीं बल्कि उसकी समृद्ध सभ्यतागत चेतना और नैतिक मूल्यों में निहित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम सिंधु कुंभ नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की विरासत का संरक्षण देश निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा तक आसान पहुंच हर बेटी का अधिकार है और ऐसी पहल छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और जनहितकारी परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का निर्माण मजबूत स्थानीय बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी से ही संभव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पक्षियों के लिए जल पात्र स्थापित किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अंतिम मील कनेक्टिविटी पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने जब बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
2: प्राइवेट अपने व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आइए, क्योंकि लगातार सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, मेट्रो पे काम कर रही है। मेट्रो में आज की डेट में 65 लाख लोग रोजाना चल रहे हैं।
1: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम दक्षिणी जोन के उपायुक्त ने यह जानकारी दी। उपायुक्त की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को इमारत के निरीक्षण में हुई चूक के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव सहायता देने और मामले की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बिल्डर, अधिकारी या प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है और नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में भर्ती घायलों के स्वास्थ्य

0: की जानकारी ली और सभी घायलों को निशुल्क और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्रीमती गुप्ता के निर्देश पर मैरोली पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और दक्षिण जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इस मामले की एक मजिस्ट्रियल जाँच के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सदुलाजाब और आसपास के इलाकों में जर्जर खतरनाक और अवैध भवनों का तत्काल सर्वे और निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कई एजेंसियों का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी सभी जरूरी मेडिकल मदद और तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास चार मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना को भ्रष्टाचार का मामला बताया। उन्होंने कहा कि यह इमारत मूल रूप से तीन मंजिला थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में आज सड़क नंबर 320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। एक रिपोर्ट।
2: मध्य उत्तर जिला के जिलाधिकारी एसएस परिहार ने बताया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि अधिग्रहित सरकारी भूमि है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क के रूप में चिन्हित है। उन्होंने कहा कि सड़क की वर्तमान चौड़ाई अतिक्रमण के कारण प्रभावित है, जिससे नियमित यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण के पूरे होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं के सुगम आवाजाही तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
1: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि ये सीमा पार बैठे अपराधियों के निर्देश पर काम कर रहे थे और इन्हें दिल्ली और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास चार मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो।

0: nei lights
1: nahare kaleyo usi se
0: loan lege ka milega samay se emi chuka credit score badhao aur agla loan aasani se pao
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
0: पहले बचत
1: झूठे
0: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: झूठों का क्या
0: चाहते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कवि गोष्ठी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्रीमती संध्या सेठ, श्रीमती पूनम सागर, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, श्रीमती माधुरी स्वर्णाकर और डॉक्टर उपमा शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर उपमा।
2: आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। शब्दों की इस महफिल में आपका स्वागत है। आज की इस काव्य गोष्ठी में हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा कवित्व की चुनिंदा रचनाएं। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्रीमती संध्या सेठ को, जो दो बार गोल्डन अवार्ड के साथ कई अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हैं।
3: नमस्कार। जिंदगी हम तेरे अजब ढंग देखते रहे, पल पल बदलते तेरे नए रंग देखते रहे। कभी खुशियाँ मिली बहुत तो कभी मायूस किया तूने, गिरते संभलते हम बहती जल तरंग देखते रहे। जिंदगी हम तेरे नए रंग देखते रहे, कभी अपनी सी लगी हमें तो कभी हुई पराई। रोते रोते हंसने लगे तो कभी हंसते हंसते आंख भर आई। कभी अपनी सी लगी हमें तो कभी हुई पराई, रोते रोते हंसने लगे तो कभी हंसते हंसते आंख भर आई। जब भी सुनाया हाल अपना खुद अपना उपहास दंग देखते रहे। जिंदगी हम तेरे नए रंग देखते रहे, यादों के झरोके खोल जब भी तुझसे की बातें, यादों के झरोके खोल जब भी तुझसे की बातें। प्यार वफा नफे नुकसान के खोल डाले सारे बड़े खाते। संभाल रखा था मेरे जीवन का सारा लेखा जोखा, संभाल रखा था मेरे जीवन का सारा लेखा झोंका। परत दर परत जीवन के प्रसंग देखते रहे, जिंदगी हम तेरे अजब ढंग देखते रहे, पल पल बदलते नए रंग देखते रहे। एक निराशा में आशा को जीवंत करती हुई कुछ पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है, कुछ खोना है कुछ पाना है यही जीवन की रीत है। सुख दुख तो आते जाते हैं, गम में भी जो मुस्काते हैं मंजिल वही पा जाते हैं, जो होते ना भयभीत हैं। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है, कुछ खोना है कुछ पाना है यही जीवन की रीत है। जो बीत गया सो बीत गया, अब उससे कैसी प्रीत है। जो बीत गया सो बीत गया, अब उससे कैसी प्रीत है। यह जीवन पल पल बदले काया और बिन अल्फाज का गीत है। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है, दिल की बात हमेशा सुनते वो अपने मन के मीत है। गम और खुशी में भी जो गाते मधुर गीत हैं। ना हो दिल उदास, तेरी हार में भी जीत है, कुछ खोना है कुछ पाना है यही जीवन की रीत है। धन्यवाद।
4: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: धन्यवाद।
2: बहुत सुंदर पंक्तियाँ संध्या जी।
3: अंतर मन के ऊपर कुछ पंक्तियाँ रख रही हैं।
5: स्वागत है।
3: पूछते हो तुम मुझसे, पूछते हो तुम मुझसे कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों खुश रहकर भी आंसुओं में गुम। शब्द कहीं खो गए हैं क्योंकि जब खुशियाँ दर पर दस्तक देती थी मैं उन्हें अनसुना कर देती थी।
2: क्या बात।
3: जब खुशियाँ दर पर दस्तक देती थी मैं उन्हें अनसुना कर देती थी। सपने आंखों में आते ना थे, नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर किसी को मुस्कान देना चाहती थी, दूसरे के दर्द को अपनाना चाहती थी।
2: बहुत सुंदर।
3: शायद इस तरह खुश होना चाहती थी। पूछते हो मुझसे कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों खुश रहकर भी आंसुओं में गुम। हर चाह को मन में दबाया था, ना चाहते हुए भी अपने मन को समझाया था। उदासी आंसू दोस्त से लगते थे, अपने भी अब तो पराए से लगते थे। जिंदगी आगे बढ़ती गई, जिंदगी आगे बढ़ती गई।
5: बहुत बढ़िया।
3: और मैं कुंद सी होती गई।
2: क्या बात।
3: और मैं कुंद सी होती गई, पर आज इस मकाम पर एक एक लम्हा चुराया है। देर से ही सही खुशी का पल तो आया है।
2: क्या बात।
3: पर आज इस मकाम पर एक एक लम्हा चुराया है, देर से ही सही खुशी का पल तो आया है। अनजाने में ही सही दिल की खुशी को पाया है, अपने अंतर्मन को अपना दोस्त बनाकर भीड़ से अलग खुद को देखा तो मोह माया से ऊपर पाया है। पूछते हो तुम मुझसे कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों उदास रहकर भी आंसुओं में गुम हूँ।
5: बहुत सुंदर।
2: हार्दिक आभार संध्या जी, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचनाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूनम सागर जी को, जो स्टेट टीचर्स अवार्ड से सम्मानित हैं। आपके नाम अनेक उपलब्धियां हैं, जिनमें 28 देशों के कवियों के साथ सबसे लंबे ऑनलाइन काव्य सत्र का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है।
3: स्वागत है।
5: शुक्रिया उपमा जी, मैं एक गजल रखती हूँ आपके सामने। हो

0: कम
1: वाह
0: रुखवा का फेरा हुआ कंपन।
2: शुक्रिया।

0: वंदन
1: शुक्रिया
0: यहुआ ये बनी बड़ा बंधन। और एक शेर यूं हुआ।

0: रब वहाँ नहीं होता। और प्यार के संग मसला ये है।
1: क्या बात है।

0: सुंदर,
1: शुक्रिया,
2: शानदार गजल है, शानदार प्रस्तुति पूनम जी,
1: शुक्रिया शुक्रिया।
2: अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी को। आप लिटो फेस्ट मुंबई का बेस्ट पांडुलिपि अवार्ड सहित अनेक सम्मान से सम्मानित हैं। आपकी कई किताबें आ चुकी हैं जिसमें कितरा और तलब को बहुत प्यार मिल रहा है। सुषमा जी
3: नमस्कार। उपमा जी, मैं अपनी शुरुआत कुछ शनिकाओं से करना चाहती हूँ। सुनिएगा, पहली शनिका है नया जमाना। सीख तो सकते थे हम भी इस नए जमाने का चलन, सीख तो सकते थे हम भी इस नए जमाने का चलन, पर ये हमसे हो ना पाया। अब लोग जमीन नहीं इंसानों को बिछाते हैं पैर जमाने के लिए, अब लोग जमीन नहीं इंसानों को बिछाते हैं पैर जमाने के लिए, और सीढ़ियों की कोई अहमियत नहीं, बस चंद लोग चाहिए गिरा के खुद को ऊंचा उठाने के लिए। शुक्रिया। अगली शनिका है रहनुमा। चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये न समझना कि रास्ता मेरा रोशन ना होगा, चंद चिराग मेरी मंजिल के रहनुमा ना हुए तो ये न समझना कि रास्ता मेरा रोशन ना होगा। मैं वो सूरज हूँ जो रोज आसमां का सीना फाड़ के निकलता है, चार बादलों के छाने से मेरा हौसला कम ना होगा। शुक्रिया। अगली शनिका है रिवायत। रिवायत ये जमाने की ऐसी है कुछ कि औरों के किस्से में हर कोई रस ढूंढता है, रिवायत ही जमाने की ऐसी है कुछ कि औरों के किस्से में हर कोई रस ढूंढता है, बस अपनी ही असलियत से सबको परहेज है, तमाम नजरों में बाकी फरेब ढूंढता है। एक बार जरा खुद से मिलके घर से निकला कीजिए हजूर, एक बार जरा खुद से मिलके घर से निकला कीजिए हजूर, फिर देखेंगे कैसे किसी में कोई नुक्स ढूंढता है।
1: बहुत बढ़िया,
3: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और अगली शनिका है पायदान। हम वो लोग हैं जो तन को रखते हैं साफ सजावटी और खुशबूदार, हम वो लोग हैं जो तन को रखते हैं साफ सजावटी और खुशबूदार, पर भूल जाते हैं मन की देखभाल करना, और होना तो यह चाहिए कि घर के बाहर पैरों के साथ दिल पोछने के पायदान भी होने चाहिए।
0: क्या बात है।
3: कि होना तो यह चाहिए घर के बाहर पैरों के साथ दिल पोछने के पायदान भी होने चाहिए, बाहर से आओ तो जाने किस किस के कीचड़ का बोझ साथ चलाता है, और इंसान की देह को तन से ज्यादा मन का प्रदूषण मार देता है।
0: बहुत।
3: अगली शनिका है बुलंदी। थोड़ी सी बुलंदी क्या हुई आसपास शोर सा मच गया, थोड़ी सी बुलंदी क्या हुई आसपास शोर सा मच गया, जी हाँ कामयाबी के तो संगी बहुत हैं, जी हाँ कामयाबी के तो संगी बहुत हैं, पर अपनी शिकस्त का एक टुकड़ा जेब में रखा कीजिए कि पैर टिके रहें, पर अपनी शिकस्त का एक टुकड़ा जेब में रखा कीजिए कि पैर टिके रहें, जो हवा में उड़ते हैं उनके तो किरदार हल्के बहुत हैं।
0: अरे वाह,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
3: शुक्रिया। और अगली शनिका है तंग दिली। जमाने की तंग दिली का क्या खूब है मंजर, जमाने की तंग दिली का क्या खूब है मंजर, जो ऐश में है उनका पूछते हैं हाल, और जरूरतमंद को देख आंखें मूंद लेते हैं, जो ऐश में है उनका पूछते हैं हाल, और जरूरतमंद को देख आंखें मूंद लेते हैं। गजब का ये तमाशा है अजब सा खेल है भैया, गजब का ये तमाशा है अजब सा खेल है भैया, जिंदा आदमी की कीमत है दो कौड़ी की, और मरे पीछे मुआवजों में तोल देते हैं।
1: बहुत
3: शुक्रिया। एक छोटी सी कविता रखती हूँ, पुरानी डायरिया। मुझे याद है उन दिनों मैंने एक कागज पर लिखा था, घर में सबसे छोटा होना बहुत बुरा है, या तो दुलार मिलता है या दुत्कार, सम्मान कभी नहीं मिलता। फिर अरसे बाद मैंने उसी डायरी के पीले पड़ चुके कागज पर लिखा, घर में सबसे बड़ा होना सबसे बुरा है, अपेक्षाओं का बोझ और निर्वाह की चूक, अपेक्षाओं का बोझ और निर्वाह में चूक का दंड कंधे और मन दोनों तोड़ देता है। कुछ समय पहले मैंने दोनों पन्ने फाड़ दिए, कुछ समय पहले मैंने दोनों पन्ने फाड़ दिए, सबसे बुरा है सीने में मन का होना, और डायरियों को छुपा दिया कि पुरानी डायरियां दुख नए करती हैं।
0: क्या बात
3: है। एक कविता है सबक।
0: स्वागत।
3: बचपन में जब पिता सिखाते थे दोस्ती रिश्ता मन बराबर वालों के साथ जोड़ना, बचपन में जब पिता सिखाते थे दोस्ती रिश्ता मन बराबर वालों के साथ जोड़ना, तब नहीं की थी उन्होंने हैसियत की बात, उनका अर्थ था इंसान की देह में दिखने वाला इंसान ही हो यह जरूरी नहीं है, उनका अर्थ था इंसान की देह में दिखने वाला इंसान ही हो यह जरूरी नहीं है। मैंने सही लोगों से सही सबक सीखने में गलती की, और गलत लोगों ने सिखाए सबक दंड सहित, और गलत लोगों ने सिखाए

0: सबक दंड सहित और अफसोस वो सब सही थे। हम अपने साथ सख्त क्यों नहीं होते, हम अपने साथ सख्त क्यों नहीं होते, हम अपने साथ सख्त नहीं होते इसलिए समय हमारे साथ सख्त होता चला जाता है।
1: बहुत
0: बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। एक छोटी सी प्रेम कविता सुनाती हूँ आपको। हम उदास होते हुए मुस्कुराने के बहाने तलाशते प्रेमी हैं। हम उदास होते हुए मुस्कुराने के बहाने तलाशते प्रेमी हैं। हम लड़ते लड़ते रोने लगते, रोते रोते थक जाते, कसमें खाते कि अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। रोते रोते थक जाते, कसमें खाते कि अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। कभी आवाज नहीं सुनेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। फिर विरह के भय में प्रेम टूट कर बरसता, पर दूर होने में दूर होना इतना ज्यादा हुआ कि प्रेम के लिए प्रेम से ही झगड़ते गए। ये रहस्य क्या कभी कोई समझ पाया है? प्रेम को बचाने में हम खुद को खोते जाते हैं या खुद को बचाने में प्रेम छूटता जाता है? भविष्य संदिग्ध रहे प्रेमियों के, भविष्य संदिग्ध रहे प्रेमियों के। वर्तमान को खा गया प्रेम का हिसाब किताब और इतिहास ने मोहर लगाई है इस बात पर, प्रेम में साथ कभी मुकम्मल ना हो सके और जो मुकम्मल हुए उनमें प्रेम ही ना रहा।
2: शुक्रिया,
3: बहुत सुंदर। सुषमा जी, बहुत संवेदनशील झटकाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती माधुरी सोनकर जी को। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में एक काव्य संग्रह और बहुचर्चित गजल संग्रह कौन आहटों में है। माधुरी जी,
4: सभी को मेरा नमस्कार। मैं गजल रखती हूँ। गजल का मतलब कुछ यूं है कि ऐसी वैसी सजा नहीं देते, कि ऐसी वैसी सजा नहीं देते, वो कभी फैसला नहीं देते। बस बताते हैं रुख हवाओं का, बस बताते हैं रुख हवाओं का, जर्द पत्ते हवा नहीं देते। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि मैं चलूं आगे जिद भी करते हो, कि मैं चलूं आगे जिद भी करते हो और फिर रास्ता नहीं देते। मैं चलूं आगे जिद भी करते हो और फिर रास्ता नहीं देते। आप आएंगे ये खबर ही न थी, आप आएंगे ये खबर ही न थी, वरना पलके बिछा नहीं देते। शुक्रिया। आप सबको समर्पित था। आप आएंगे ये खबर ही न थी, वरना पलके बिछा नहीं देते। और लुत्फ देते हैं आईने भी मगर, कि लुत्फ देते हैं आईने भी मगर, तेरी तस्वीर सा नहीं देते। ऐसी वैसी सजा नहीं देते, वो कभी फैसला नहीं देते। अगली कविता का जी, कविता का शीर्षक है कविता में मेरी कब चलती है। कि मैंने लिखा पाँव तो रास्ते कुनमुना उठे, मैंने लिखा पाँव तो रास्ते कुनमुना उठे, धूप मछली उठी सौंधी खुशबू, तभी दिखा एक चरवाहा घर लौटता अपनी भेड़ों के साथ, भूख प्यास दाल भात और दिखा शाम का सूरज विदा कहता जमीन को, दूर जंगल में फैली हरियाली भी दिखी। सबको लिखना पड़ा कविता में, मुड़ के देखना भी जरूरी था, एक चिड़िया चहचहाती हुई कह रही थी, मुझे नहीं लिखोगी क्या, तुम ही बताओ उसे कैसे मना करती, कविता में मेरी कब चलती है।
1: बहुत
4: बहुत शुक्रिया।
1: कविता में मेरी कब
4: चलती। एक और कविता रखती हूँ मैं। मेरी कविता का शीर्षक है औरत और डर। मासूम बच्ची लहराती थी हवा में हाथ, किसकी सत्ता किसका भय, कौन राजा कौन मालिक, मैं कर्मयोगी मैं ही शक्ति मैं अपनी नियंता, फिर कैसा डर। लेकिन उम्र ने सिखा दिया उसे डरना, अब उसे लड़ना भी सीखना होगा। तो ये मेरी कविता थी औरत और डर।
0: बहुत शानदार,
3: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविताएं,
4: बहुत
3: सुंदर कविताएं। बहुत
4: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: और अभी आप सुन रहे थे हम सबको, और जो हम सबको सुनवा रही थी डॉक्टर उपमा जी, अब मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। उपमा जी।
3: आभार पूनम जी। मेरी कविता है रीढ़ वाली स्त्री। वो सुंदर थी पर सिर्फ चेहरे से नहीं विचारों से भी, बुद्धिमान थी इसलिए तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही, तुम्हारे हर अधूरे वाक्य में जोड़ती रही अर्थ, तुम्हारे हर लड़खड़ाते कदम के नीचे रखती रही अपनी हथेलियों की जमीन, लेकिन छोड़ नहीं पाई तुम्हारी अंधी हाँ में अपना विवेक। वो तुम्हारे लिए समर्पित थी, उसकी चाहतें सिर्फ तुम्हारे लिए थी, उसने प्रेम किया पर प्रश्न भी किए, सही को सही कहा पर गलत पर चुप नहीं रही, तुम्हारी छाया नहीं साथी बनना चाहा, फिर एक दिन

0: तुमने उसे छोड़ दिया एक अति साधारण स्त्री के लिए। उसकी आंखों के आंसू वे आवाज गिरते रहे। बहुत सोचा उसने, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब रातों की सिलवटों में जवाब ढूंढती रही और फिर समझ आया, तुम्हें सुंदरता नहीं चाहिए थी, न बुद्धि न बराबरी, तुम्हें चाहिए थी एक रिमोट से चलती गुड़िया जो मिलाती रहे तुम्हारी हाँ में हाँ, पोषित करे तुम्हारे अहंकार को और ना करे तुमसे कोई भी सवाल।
1: क्या बात
0: है? तुम्हें चाहिए थी एक बिना रीढ़ की हड्डी की औरत जो झुक सके मुड़ सके पर सीधी खड़ी ना हो। और वो तो रीढ़ लगती है, सीधी सख्त अडिग, वो टूट सकती है प्रेम में पर झुकती नहीं तुम्हारी बेबुनियादी बातों पर। तुम्हारा जाना उसका हारना नहीं था, यह तो तुम्हारा डर था एक सीधी खड़ी औरत से। और जब देखती हूँ उसे तो अनायास ही तिर जाती है होठों पर मुस्कान, इतने झंझा बातों के बाद भी सीधी खड़ी है वो।
2: बहुत बढ़िया।
0: अब मैं कुछ माया रखती हूँ।
2: स्वागत है।
0: सब भाग्य कहाँ पाते, सब भाग्य कहाँ पाते, जग तारन बाले केवट से सकुचाते, जग तार

0: वाह वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आवाज सुनी ली, बहुत सुंदर सुनाया आपने।
1: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्रीमती संध्या सेठ, श्रीमती पूनम सागर, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, श्रीमती माधुरी स्वर्णागर और डॉक्टर उपमा शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर उपमा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:37 हुए हैं।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म क्रांति से। इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र

0: एस चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:44:45 हुए हैं। अब से कुछ ही दिन में यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे प्रसारित किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। फिलहाल अब से कुछ ही दिन में प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल

0: सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता दिल्ली कांग्रेस टॉप लाइन नंबर 1444 और वेबसाइट www.delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें

0: कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुहा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में

0: खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in the Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure on-mark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रूपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
1: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kul.

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से 9:15 हुए हैं। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस का अब आगाज होता है, लीजिए सुनिए उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। अब से कुछ ही देर में यानी 9:20 पर प्रोग्राम एक फनकार सुनिएगा, जिसमें आज आप सुनेंगे जगदीश सिंह की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। खबरों का वक्त रहेगा 9:45।

हेल्थ टिप्स आप सुन सकते हैं रात 9:55 पर, शब के 10 बजे सुनिएगा एक स्टूडियो मुशायरा, 10:30 पर सामयीन की फरमाइशी मेल्स पर मबनी प्रोग्राम तमिल इरशाद पेश किया जाएगा। ये प्रोग्राम जारी रहेगा रात 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम खबरें बरी सगीर से नशर की जाएंगी।

11:45 पर सुर्खियों में प्रोग्राम सुनिएगा और 11:45 पर नवा साबरी कव्वाल और हम नवाओं से कव्वाली सुनिएगा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए एक फनकार प्रोग्राम में जितिन सिंह।

0: जी सुनिए खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। वैनमा के नामकम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इक़दामात और हुसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वालशेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिश का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर्ड टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों के बहबूद के तहत उनके तआवुन को भी सराहा। खेलकूद के मैदान में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरेंद्र वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरेंद्र वीर सिंह और एमेश खजूर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पांडव वंशी सल्तनत के महारिषि बालार्जुन से मुतालिक 6वीं और 7वीं सदी की 3 नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन तांबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूम फराहम होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का भी जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई। मुल्क में जारी शदीद गर्मी पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से जोर देकर कहा कि वह महफूज रहने के लिए सरकारी हिदायत पर अमल करें और एहतियात से काम लें। आमों का जिक्र करते हुए, जो मौसम गर्मा का एक पसंदीदा फल है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किसानों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अब भारत के आम मुल्क के मुख्तलिफ गांवों से आलमी मंडियों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने काशी के लंगड़े, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और मगरबी बंगाल के हिमसागर जैसे आमों की मकबूल किस्मों का जिक्र किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سرومنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختلاس سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا. ملک کے نئے سی ڈی ایس کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سرومنی نے مسلح فوجوں، صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں. سابقہ فوجیوں

0: वीर नारियों की बहबूद के तहत मुसल्ला फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्ला फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमत अंजाम देती रहेंगी। आज सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सोवानी को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जाजार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाके रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। यह तजुर्बा जामे हिफाजती इंतजाम के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सारी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निजाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किसी तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई। वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। म्यांमार के शुमाली मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तला'आत के मुताबिक इमारत में कानकली में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नामखम टाउनशिप के कांगटुप गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जनूब में वाक है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। एक मुसलह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जब हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर पामू एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। हंगरी के बुडापेस्ट में हुए चैंपियंस लीग फाइनल में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की जीत के बाद फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबेन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 780 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वजारत दाखिला का कहना है कि हिफाजती दस्ते सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-16 से शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़ मकामी मुश्किलात को हल करने और दीगर समाजी मकासद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के और मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमा के नामखाम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और समय ने अब कुछ बातें करते हैं आपकी और हमारी सेहत के हवाले से। कहते हैं कदर सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इंसानी जिस्म अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी का बेहतरीन शाहकार है और वो खड़ियों यानी सेल्स पर मुश्तमिल ये जिस्म अपने पेचीदा निजाम के साथ मामलात की अंजामदही करता है। जिस्म मशीन की मानिंद है, मशीन जब तक दुरुस्त हालत में हो चलती रहती है। जैसे ही किसी पुर्जे में कोई नुक्स या खराबी पैदा होती है तो मशीन काम करना छोड़ देती है। आज हम आपको बहुत सी छोटी छोटी बातें बताएंगे जो सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, मगर हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। जैसे अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर लें। बहुत ज्यादा सोना या कम नींद लेना दोनों ही सेहत पर गलत असर डालते हैं। अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पांव के तलुओं पर तेल की मालिश करें। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाने से मैदा मुतासिर होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से कुछ वक्त बाद मैदे पर और दूसरे आज़ा पर मुज़िर असरात जाहिर होने लगते हैं। अगर आप जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो बाजारी खाने से और फास्ट फूड खाने से परहेज करें। नींबू तो हम सब जानते ही हैं कि विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। एक खास मकदार में हमेशा इसका इस्तेमाल करें। ये दूसरी बीमारियों के साथ साथ अपेंडिक्स से बचाता है। काली मिर्च का इस्तेमाल आपको गले की बीमारियों से महफूज रखता है। अपने दिल का ख्याल दिल से रखें। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए समय, अब सुनिए एक स्टूडियो मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। उर्दू सर्विस की जानिब से मुनक्किदा आज के इस स्टूडियो में जो शोरा इकराम शरीक हैं उनके इस्माई ग्रामीण जनाब सैफुद्दीन।

0: रात में
1: हिस्सा
0: तमाम करना था। और शेर समाप्त फरमाएं, बदन को चाह थी दुनिया को जीत लें।

घर की खिड़की से झांक कर देखूं, घर की खिड़की से झांक कर देखूं, आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज मौसम बड़ा सुहाना है। चार मिस्र और पेश करता हूँ। करवटें भी अजाब थी हम पर, नींद किस्तों में हमने बांटी थी, करवटें भी अजाब थी हम पर, नींद किस्तों

0: तुम तो जी भर के सोए थे लेकिन हमने आंखों में रात काटी हमने आंखों में रात काटी थी। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब पेश करता हूँ। रुख से जुल्फों का पहरा हटा दीजिए,
1: रुख से जुल्फों का पहरा हटा दीजिए,
0: रुख से जुल्फों

0: ज़ुल्फ़ों का पहरा हटा दीजिए, इन फ़ज़ाओं को अब जगमगा दीजिए, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर
1: शेर पेश करता हूँ।
2: मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर

0: दीजिए, ये भी शेर पेश करता हूँ।
1: अच्छा,
0: जिन परिंदों का कोई ठिकाना नहीं,
1: जिन परिंदों का कोई ठिकाना नहीं,
0: जिन पर

0: भी नहीं। ये भी शेर पेश करता हूँ बतौर
1: इरशाद, इससे बेहतर सजा और
0: इससे बेहतर सजा और कुछ भी नहीं। दुश्मनों को भी दिल से दुआ दीजिए, रुख से जुल्फों का पहरा हटा दीजिए। ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ। ये भी मौसम क्या यूं ही गुजर जाएगा,
2: ये भी
1: मौसम,
0: ये भी मौसम क्या यूं ही गुजर जाएगा।

0: दिया रास्ता दिया आपकी
1: आपको
0: दूसरों को भी अब रास्ता दीजिए
2: मुख
0: से जुल्फों का पहरा हटा दीजिए इन फजाओं को अब जगमग

आप नाराज, खुदा खैर करे, नाज़ो अंदाज खुदा खैर करे, आप नाराज खुदा खैर करे, नाज़ो अंदाज।

अच्छे लगे मुझको हुजूर, मेरे दिल का है बस यही कसूर, इसके लिए न लीजिए मेरी जान, आप तो ही सजा।

0: खुदा खैर करे, नाजो अंदाज खुदा खैर करे।
1: जी दोस्तों, हमारे सभी सामयिन की फरमाइशी मेल्स में सलाम व आदाब होता है, नमस्कार होता है और बहुत सारा प्यार भी होता है। आप सबकी मोहब्बतों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी फरमाइशी नगमे आपको सुनवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये नगमा जो भी आपने सुना, ये था फिल्म प्यार मोहब्बत का। आवाज मोहम्मद रफी की थी, नगमा निगार थे शैलेंद्र और मौसिकार थे शंकर जयकिशन। सुनने की फरमाइश की थी आप सबने। आप हैं सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और विनोदपुरी। अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है कोल सिटी बरखा खाना से फजल अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और सोनू तस्नीम और इनके बहुत सारे साथी। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक और निहारिका और इनके साथी। रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से मनमोहन रजावत, मधु रजावत और राशि रजावत। छत्तीसगढ़

डोगरा गांव से राष्ट्रपाल गजभाई, राधिका गजभाई और तन्मय गजभाई, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, मौलाना इस्लामपुर महाराज से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेद कुमार दामोदर, रजाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खान का फरमाइशी मेल आया है हनुमानगढ़ राजस्थान से, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और वर्षा सुमन का ई मेल हम तक पहुंचा है किशनगंज बिहार से। इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की थी मुताला बाजार बबलू ठेके, मुताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख शगीर, शेख वजीर और सुहेल से सुहेल शेख और इनके साथी, कस्बा अगरवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिका अली खान, और ये अगला मेल हम तक पहुंचा है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा, और कौशिक वर्मा भी इनके साथ हैं। धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, यह है फिल्म जिंदगी और ख्वाब का, आवाज है सुमन कल्याणपुर की, मौसीकार हैं दाताराम। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। मेरठ से दिग्दर्शन कविता, करण और शक्ति। और मुताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर। गुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज और नवाजिश शेख। भाटापारा से हरमिंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा। अनारकली बाजार जलगांव से कमल पाठक, सुनील पाठक और गव्या मल्होत्रा। उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश, कमला रानी, बोधराज खोरवाल। यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। पटियाली रोड गंडनवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा हबीबा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा और पूजा परिहार। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराज से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। तो मुझे समय सुनिए अपनी पसंद पर ये नगमा, फिल्म का नाम है जिंदगी और ख्वाब, आवाज सुमन कल्याणपुर की।

और समाईन अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म का नाम है हम मत वाले नौजवान। आवाजें हैं मुकेश और गीता दत्त की, मौसीकार हैं चित्रगुप्त। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, और भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा की फरमाइश आई है फाजिल का पंजाब से। और अगली फरमाइश आई है कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। बलानपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। अलीकडवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। मुजफ्फर जय विहार से शाहरुख फारूक और शबनम शहनाज। और नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्या बाठे। और लेक सिटी उदयपुर से हिमांशु गौड़, नरोत्तम गौड़ और यश गौड़। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टीके, यशोधरा राम टीके और श्रव्य राम टीके। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और हार्दिक बत्ता। उत्तम नगर दिल्ली से भानु पिशकाश, कमरा रानी बोधराज खोरवाल और फातिमा मंसूरी, फहीम मंसूरी और इनके साथी। और इन्होंने ये कहां से मेल भेजा है, नाम नहीं लिखा है। और अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है शास्त्री नगर बीच शहर से किसन सबकाल, आशा सबकाल और सोनिया सबकाल। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक अल्ताफ। बाडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू तोमस, टोमस और पिंकी अरोड़ा। और गणेशपुर गंजुनवारा एटा उत्तर प्रदेश से शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख, बेबी मुस्कान। और अगली फरमाइश आई है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। और ऊपरकोट मोहल्ला चौक खूंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का है ये अगला नगमा।

और मोहम्मद रफी और साथियों को अब आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र, मौसीकी तरतीब दी है एन दत्ता ने, सुनने की फरमाइश की है आप सबने। बिलराम गेट कासगंज से है मसलम सैफी, जाहिद अली सैफी और आबाद खान, और जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, बेबी हिमांशु और मोहिनी, अहमद भाई पूल वाले, सदफ आरजू पूल वाले, लखनऊ निया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद पूल वाले, इमरान अहमद पूल वाले और उनके अहले खाना, छोटी बुलिया मुंबई करजत से ये मैसेज हमें मिला था। और अगली फरमाइश जो हम तक पहुंची है वो आई है बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्य कुमारी और इनके साथी, मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अर्जुन नारंग और मोहिनी मोहित नारंग, और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इनका फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है। और ये अगला फरमाइशी मेल आया है वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां और मास्टर अजहर खान, और छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री, गुजरात गांधी ग्राम

परवीन सोनी, कलावती सोनी कुंडरा बंदर कच्छ से, बदर कच्छ से, जगदी जौहरी पूजा और पायल जौहरी, संभल से छोटे अंसारी की फरमाइश आई है, और मेन रोड तेलहरा से प्रकाश पोहारकर पोहारकर नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर। और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। और किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोडानी की फरमाइश आई है। तो लीजिए सामने सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा, फिल्म धर्मपुत्र, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की।

और सामान्य नकल नगवा आप सुनेंगे फिल्म वासना का। आवाज मोहम्मद रफी, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। चंडीगढ़ से सतीश नेजा और बिमला नेजा, राजधानी रायपुर से नीलम मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, बनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशा सलमानी और बीबी आलिया, बाटापारा से बच कामल, डॉक्टर बसंत बुर्ग और मोतीलाल यादव, गुंडलवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अदनान शेख, कस्बा अग्रवाल मंडी टटी री बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिका अली, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू,

कृष्णा कॉलोनी हांसी से जुबाश योगी, राजू मिगलानी, डब्बू बब्बू, गांव नाई वाला, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिद्दाल का मिद्दा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्या मस्कीन, कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकमुद्दीन मंठा, शब्बीर बनाहट्टी, आसिफ इकबाल और इनके साथ ही, और गांव जाखूद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक और पूजा खटक। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये अगला नगमा फिल्म वासना का, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

हैं 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। मायामा के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबैन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं। भारत के सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। दोनों के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासद के तहत उनके गैर मामूली ताउन पर तारीफ की। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले अकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई में मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बालकृष्ण अय्यर की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर्ड टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके ताउन को भी सराहा। खेलकूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरेंद्र वीर सिंह, विशाल टी के, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरेंद्र वीर सिंह और अनिमेश कुजुर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मुकाम पर पांडव वंशी संतनत के महर्षि बालार्जुन से मुतालिक छठी और सातवीं सदी की तीन नायाब तांबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का जिक्र किया। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खास तौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोशो जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन तांबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिले कद्र गहरी मालूमात फराहम होती है। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई। मुल्क में जारी शदीद गर्मी पर तश्वीश का इजहार करते हुए वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो महफूज रहने के लिए सरकारी हिदायत पर अमल करें और एहतियात से काम लें। आमों का जिक्र करते हुए, जो मौसम गर्मा का एक पसंदीदा फल है, वजीर आजम मोदी ने किसानों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अब भारत के आम मुल्क के मुख्तलिफ गांवों से आलमी मंडियों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने काशी के लंगड़े, महाराष्ट्र के अल्फोंसो, गुजरात के केसर और मगरबी बंगाल के हिमसागर जैसे आमों की मकबूल किस्मों का जिक्र किया। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट को दोबारा जांचने के लिए इसके
ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निजाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किसी तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी

0: आसानी से नशर की जा रही हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्को और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद के तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में साबिका टीएमसी सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन बीएसएफ के हवाले नहीं की थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैयाहों को लेकर जा रही गाड़ी जो कि एक गहरी खाई में गिर गई थी उसमें सवार तमाम 8 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया है। यह हादसा बैरागढ़ सच पास किलर रोड के चौरा सब डिवीजन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक सैयाहों को ले जाती हुई कार 29 मई की आधी रात को एक गहरी खाई में गिर गई। एक बड़े राहत और बचाव कार्रवाई के बाद हुक्काम ने तमाम 8 लाशें जाए हादसा से बरामद कर ली हैं। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउलिंग टुप गांव में दोपहर में हुए धमाके के में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। यह इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाकई है जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्ला ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाज आ रहा है। जाए हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान ने उस मतन से इत्तेफाक कर लिया है जिसमें उसे एटमी हथियार तैयार करने या हासिल करने से रोकने की बात कही गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य प्रदेश, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटा पड़ने और ज्वालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। हंगरी के बुडापेस्ट में हुए चैंपियन लीग में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मैन पीएसजी की जीत के बाद फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबैन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 780 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने फितरत के तहफ्फुज, मुकामी मुश्किलात को हल करने और दीगर समाजी मकासद के तंग अफराद की कोशिशों को सराहा। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। और फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबैन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मैडम विवेक हजारी 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन।

मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की आवाजों में यह नगमा था फिल्म प्यार का सागर का। मौसीकी तरतीब दी थी रवि ने, सुनने की फरमाइश की थी आप सबने। राम रतन टाकीज कुंडलवाड़ी से, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और महनगर उमर खेलमाडा से, अभिजीत गोहानकर राई, श्रीमती सरिता और अर्जुन गोहानकर, बुद्धानी और गणेश कामले, रमेश कामले की फरमाइश आई है अकोला महाराष्ट्र से और रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से, जावेद अख्तर राही, शमजुल कमर राही और बेगम रुखसार, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया, नूर महल महसूस सीतामणि बिहार से मसर्रत जहां, तलत जहां नाज और फरज जहां। और ये अगली फरमाइश आई है सिटी सेंटर खंडवा से मनोज भाई सेन, पूनम सेन, दीपक सेन और इनके साथ ही, वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगारकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी, करनौर से नरेंद्र शर्मा जेटली और मयंक और नितिन जेटली, शाहरोड राजकोट गुजरात से जुबैदा लखानी, विहान लखानी और

और नेहरू चौक पैटर्न से सुरेश यादव, अनीता जाधव और सुनील यादव, बहनों का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, अनिलूषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री बुरांडे, पंडर कावड़ा जिला यवतमाल से। और अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है बड़ा आदमी। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, मौसीकार हैं चित्रगुप्त। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। और हम ये हैं राजकुमारी वार, साधु शहर से, राजस्थान से राजकुमारी वार, चंद्रकला रेवाड़ और उनके साथी मोहम्मद दिलकर, उत्तर प्रदेश से नूर सिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह और इनके साथी। और जय मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है ये आयश, फरक्काबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा, यूपी से श्रीमती सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया। और हिना साबरी आयजल इमाम, मोहम्मद हुसैन निजाम झारखंड से, इनकी फरमाइश आई है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रिचिता खुराना और रिधान खुराना। और झुमरी तलैया से महेंद्र चौरसिया, शशि चौरसिया। और ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पंडर कावड़ा से अनिलूषा बुरांडे। नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब और अब्दुल हक डावर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गोहानकर, सिद्धांत गोहानकर और लाडला टुक टुक गोहानकर। मंडी हरजीराम मलोट से नथुराम शर्मा, ललिता शर्मा और इंद्रराज शर्मा, सुरेश शर्मा और इनके बहुत सारे साथी। तो मुझे समय सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा, फिल्म का नाम है बड़ा आदमी। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

फरमाइश है आप सबकी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा। और ये फरमाइश है ये गंजुनवारा कासगंज से नजमा बेगम नास, मोहम्मद कलीम जख्मी और इनके साथ ही फातिमा गाजी भी इनके साथ हैं। आसिफ अली, हसनैन अली और इनके साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है। नई दिल्ली उत्तम नगर से जॉन सीना, बी आर टेलर और सुमन सरिता। विलियम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश कुमार भावसार। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है मनोज जेठवानी की, कल्याणपुर से। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून। सुरेश चौरसिया की फरमाइश हम तक पहुंची है, ये आई है फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। और लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। तो नीचे सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

और समाइन अगला नगमा आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गंगा जमुना, आवाज है लता मंगेशकर की, नामा निगार हैं शकील बदायूनी और मौसीकार हैं नौशाद। सुनने की

माँ निखिल वर्मा और यशवी वर्मा, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बिल्लू निषाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुमित शर्मा, परवीन सूफियान इमाम और अर्शी सुल्तान अगेडी झारखंड से, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा और तनुश्री गुप्ता और इनके बहुत सारे साथी, घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। और ये फरमाइश आई है अमीर खुसरूर गंजनवारा से, शबनम अनवर, डॉक्टर दबीरुल हसन और भुवन प्रकाश गौतम की जवाहरनगर उदयपुर से, सुब्रत चौधरी कोलकाता से और आदर्श नगर, अहमद खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और इनके साथी, मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा, बोरा विनगर श्री रामपुर से। और डीजे सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: سمعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تعمیلی ارشاد، یہ آکاشواڑی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، اور لیجیے اب سنیے پروگرام سرخیوں میں۔
1: یہ آکاشواڑی ہے، प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
3: महीने के आखिरी रविवार

0: प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो होती मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और उसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेयजल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्र पत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए फिर, तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा, लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की, काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
1: और सबसे पहले खेलों की भी बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों के हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
0: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं। और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आए तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में, जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने वरिंदर वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो वरिंदर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो है वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। कल्याण भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली।

0: हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं, लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर है, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
2: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है, जहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है, तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।

0: लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
2: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची और फिर बहुत सावधानी से बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
0: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव है। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए नवाज साबरी कव्वाल और साथियों से कव्वाली।

अब मैं नहीं बैरी किसी से रखना, मेरे दुश्मन से ये तस्वीर करा ली जाए। अदब शनास तमन्ना।

0: आवाज सबरे कव्वाल और साथियों से अभी आप कव्वाली सुन रहे थे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। शब के 12 बजने को है, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल हफीज से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दीगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबाइन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं। और भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शहरियों की समाजी

0: आसिफ कहते हैं उनके गैर मामूली तआवुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों से तहरीक देने वाले इकदाम और वसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग पूल चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णा अय्या की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर्ड टीचर हैं, जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहत उनके ताउन को भी सराहा। खेलकूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वीन शंकर, दिवमीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पांडव वंशी सल्तनत के महर्षि बालार्जुन से मुतालिक छठी और सातवीं सदी की तीन नायाब ताबा प्लेटों की हालिया दरियाफ्त का जिक्र किया। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चौल आदि की कदीम ताबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश व जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समुद्री ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती है। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई। मुल्क में जारी शदीद गर्मी पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो महफूज रहने के लिए सरकारी हिदायत पर अमल करें और एहतियात से काम लें। आमों का जिक्र करते हुए, जो मौसम गर्मा का एक पसंदीदा फल है, वजीर आजम मोदी ने किसानों की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अब भारत के आम मुल्क के मुख्तलिफ गांवों से आलमी मंडियों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने काशी के लंगड़े, महाराष्ट्र के अल्फोंसो, गुजरात के कैसर और मगरबी बंगाल के हिमसागर जैसे आमों की मकबूल किस्मों का जिक्र किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान ने उस मतन से इत्तफाक कर लिया है जिसमें उसे एटमी हथियार तैयार करने या हासिल करने से रोकने की बात कही गई है। म्यांमार के शिमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंटुप गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। यह इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाके है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। यह एक मुसल्ला ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाज आ रहा है। जहां हादसे पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया है। भारत और नेपाल ने कल नेपाल के सुबह गंडकी के जिले मनांग के नेसन दिही बंदिया में एक नए अस्पताल की इमारत का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के लिए भारत 5 करोड़ 60 लाख नेपाली रूपये फराहम करेगा। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के नायब सरवाह डॉक्टर राकेश पांडे और एहसान देही बल्दिया के चेयरमैन धन बहादुर गुरुंग ने मुश्तका तौर पर संग बुनियाद रखा। इस मंसूबे से इलाके में सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी और मकामी आबादी को मियारी तिबी खिदमात तक रिसाई हासिल होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि ने कल भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद के तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में सबका टीएमसी सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन बीएसएफ के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हसास जिले मुतासिर हो रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बंगलुरु मुसलसल दूसरी बार आईपीएल चैंपियंस बन गया है। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में आरसीबी के गेंदबाजों ने पहले गुजरात को 155 रन तक महदूद कर दिया। इसके बाद टीम ने हदफ हासिल किया और ट्रॉफी जीत ली। विराट कोहली और आसिफ सलाम जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में हुए चैंपियन लीग फाइनल में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन की जीत के बाद फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबेन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 780 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वजारत दाखिला का कहना है कि सलामती दस्ते सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोहेबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने दो साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने फितरत के तहफ्फुज, मुकामी मुश्किलात को हल करने और दीगर समाजी मकासद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। म्यांमार के नाम खंग कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। फ्रांस में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के माबेन झड़पों में 219 अफराद जख्मी हुए हैं और भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में लीजिए सुनिए वीसी राणा डे का वॉयलिन पर बजाया राग जोग।

0: गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UPT 4, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ew Myint Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar, on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Prime Minister Narendra Modi lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social issues, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi today. The Minister of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, that affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. In Jammu and Kashmir, the self-enumeration phase of the house listing and housing census has concluded and the main field exercise is set to begin today. Enumerators and supervisors will conduct door-to-door visits across the Union Territory from today until the 30th of this month to collect detailed information on housing and population. The authorities have appealed to residents to cooperate fully with the field teams to ensure smooth, accurate and timely collection of data. Renowned singer Suman Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai. She was 89. The veteran singer was known for her work in Hindi, Marathi and several other Indian languages during the golden era of film music from the 1950s to the 1970s. Maharashtra Governor Vishnu Dev Sharma, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Sunetra Pawar and Union Minister Nitin Gadkari have expressed grief over the passing of Suman Kalyanpur. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जाते रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना सर, ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है।

0: क्यों फूलमती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: फूलमती काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
2: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।
3: देखो देखो

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वाला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी बुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति वो मिन आउंग लाइन के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 23 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. Our correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's neighborhood first, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian institutes of technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Sonan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The polling took place on 17th of this month. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, the affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. Agriculture and farmers

0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं लाइव न्यूज 24/7 रात के 2:10 और पूरे 20 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गीत सुनहरे जिसको आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत।
1: शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप बताइए कौन है हीरो और कौन है जीरो।

0: Hi, Judy. Aren't you trying this?
1: It's very nice. Have more. Hi, Sherman.
2: Hi.
3: आप खड़े भी नहीं खड़े
4: जी नहीं मैं डाइटिंग कर रही हूँ
1: डाइटिंग
5: लगता तो नहीं

इस देश का बचपन भूलता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से तिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें

ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। वे निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देवमीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में

0: तेईस मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनकी सेना ने दक्षिण लेबनान में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान के ज़हरानी नदी के दशों में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi last evening. The Myanmar president arrived in Gaya, Bihar on a 5-day visit to India on Saturday. A correspondent reports that Myanmar lies at the confluence of India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies. The official visit of Myanmar president to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers Dialogue in New Delhi today. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has instructed district administrations, the Relief Commissioner's Office and concerned departments to maintain continuous monitoring and ensure immediate action in the event of any disaster following incidents of storms, rainfall and severe weather in several districts. The Chief Minister has directed that in districts where there has been a loss of human life or livestock due to strong winds, rain, hailstorms or other natural calamities, the affected families should be provided with the prescribed relief assistance without delay. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance has finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and the Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Aghadi, MVA, had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena, UBT,

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। मैं हूं अब आपके साथ चेतन कुमार शर्मा और कार्यक्रम है अब गीत गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गजल। कलाकार हैं विनोद सहगल। गुरुकार यानी कि जो गजल रचना है वो है दलीप ताहिर साहब की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।
1: यंगर जनरेशन के कुछ नाम मेरे जहन में उभरते हैं।

0: अच्छा दोस्तों, विनोद सहगल के स्वर में बहुत ही खूबसूरत गजल आपने अभी सुनी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल जिसके बोल हैं कभी नहीं पढ़ सकता। गायक कलाकार हैं पंकज उदास। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। नजर फरमाएं।

एरिया लाइव न्यूज 24x7 पर आप बने हुए हैं चेतन के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं शोभना रॉय।

या लाइव न्यूज 24x7 पर बने हुए हैं आप चेतन के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं मिताली और भूपेंद्र सिंह।

0: कोहराब जान में बेला सुलाखे के इसी गीत के साथ अब ये गजल गीत का आइटम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बजने को हमें अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। बस इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 23 मई से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे

0: कार्य को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नामदेव सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 155 रन का लक्ष्य दिया 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, माही, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड डिस्कशंस विद म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिन ऑंग हलाई। Relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitaries.
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आप सुनेंगे भगवान
1: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अभी ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं सीरा गांधी एस गोविंदराजन का गायन, राग है कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सीरा गांधी एस गोविंद राजन का बयान, राग था कल्याणी।

यही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि तदनुसार 1 जून 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

तो आइए अब हम आपको कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा तिथि अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा। प्रस्तुतकर्ता होंगे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन पाएंगे। 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे अमरापाली का गायन राग ललित में।

संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसमें आप सुनेंगे परिणीता नरोला के भजन। 7:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव के जी महाराज के गायन, राग होगा गुजरी तोड़ी।

मार्च का 3 मिनट पर पंजाबी कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक, और दिन में 10:30 से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे भारत में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के 90 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत भक्त रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनिया का पहला भाग। सर्वस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10, 11:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन।

0: दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजे को है कुछ ही पलों में अब पहले हिंदी और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: हठिया जपिया कपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता इना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया दे चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाहे इना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पृथ्वी

Yeah.

0: ब्राह्मण पूरे नाग उना प्यावे पूरी रास कुड़ा व्यापार कूर बोल कर आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती खाई हाथ छिजक कसाई नील वस्त्र पैरों में प्राण मिले स्थल पूजे प्राण अपाख्या का पठा बकरा खाना चौंके पर किसी ना जाना देखे चमका कड़ी कार पर बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे न साडा फिटे तन फिटे फेट क्रीन मन जूठे छली प्रेन कहो नान सत्याई सच भविता सच पाई पौड़ी चित सबको नगरी में चलाएगा दुनिया ही कर्म कराएगा
1: सबको एक नगरी हिट चलाएगा आपे देवड़िया पे ही कर्म कराएगा वड्डो वड्डा वड में निश्रे सरकंधे लाएगा नदर पट्टी दे करे सुल्ताना का हुक राएगा धर्मगन पेखना पाएगा धर्मगन पेखना पाएगा।